印度的李光普电台，这次普通话节目播送到这里，谢谢大家收听，再会。

श्री रामचरित मानस का एक अत्यंत मार्मिक प्रसंग है अहल्या उद्धार का। जनकपुर से सीता स्वयंवर का निमंत्रण पाकर मुनि विश्वामित्र दोनों कुमारों को राजा जनक का धनुष यज्ञ दिखाने ले चले। मार्ग में एक सूना आश्रम दिखाई पड़ा जहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। वहां एक शिलाखंड पड़ा था जिसके विषय में श्री राम की जिज्ञासा सुनकर ऋषिवर ने उन्हें गौतम पत्नी अहल्या के अभिशप्त होने की कथा सुनाई और बोले, ये पत्थर की देह धारण किए युगों से बड़े धीरज के साथ आपके चरणों की धूलि की प्रतीक्षा कर रही है। हे रघुवर, इस पर कृपा कीजिए। श्री राम के चरण का स्पर्श पाते ही तपोमूर्ति अहल्या अपने सुंदर नारी रूप में हाथ जोड़े प्रकट हो गई। अत्यंत प्रेमवश उसका शरीर पुलकित था और आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी।

सिप एम एल आर डरी डायरा पेमिलियान राजनगर अरविंद पटेरिया तुरुत हाडी डाला आचारा तर सबूत सात भर विचारा कपाडा मीडिया मंत्री प्रताप राव जाधव मंगाता कान बाबा योगा महोत्सव डुआरी बुडुआ पुलो आनाम मनांडाई तोंगा पंथिंग डालाम परसियापान नेशनल नेशनल मैयाम्बु थारी योगा इंटरनेशनल ई डे वाई का डुआ ब्लास ताहुन डुआरी बुडुआ पुलो आनाम डन मन चेयरमिन कान कमिटमेंट पमनिता उनतुक मम पलवास जांकावान योगा डिसलुरु नगरी बलिया मैया पे कान बाबा कमंत्रियान आयु सडांग मलाक्षाना कान कंपनी हितुंग मुंडू नेशनल सलामा सरातुस हारी यंग बकरजा सामा डिंगा सरातुस इंस्टीट्यूशी डी सरातुस लोकासी गुना मनिकात कान का साडारान डन मंडोरोंग पार्टिसिपासी मासराकात यंग लवी लुआस मंजलांग ई डे वाई डुआरी बुडुआ पुलो आनाम सांग मंत्री मंचातात बाबा योगा यंग मरुपकान बागियंता तरपिसाकान डरी वारिसान बुडाया डन स्पिरिचुअल इंडिया सतला बरकम्बांग मंजडी ग्राकान ग्लोबल उन्तुक का सेहतान डन का सजाते रान होलिस्टिक सतला पेबेबे मनतापकान हारी योगा इंटरनेशनल पाडा ताहुन डुआरी अम्पदलास मयूसुल इनिशियाटिव डरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बलियाओ लवी लांजुत मैयाता कान बाबा डी बाबा इनिशियाटिव योगा तीगा रातुस आनाम पुलु लिमा हारी एम डे एन ई वाई बकरजा सामा डेगान का मंत्रियान आयुष डान हाबिल्ड सडांग मंजालान कान कंपनी पलातिहान योगा ग्राथी सलामा सरातुस हारी हिंगा दुआ पुलु सातु जूनी डेगान लवी डरी डुआ रातुस रिबु पसरता यंग तला मंडाफ्तार सवाग योगा मित्रा मयूरोती पंतिंगिया सचारतर सबूत प्रताप राव जाधव मंगाता मियाता कान योगा आडला अनुग्रह ता तरनी ले डरी ट्रेडिसी का विजाक्षानान कुनो इंडिया यंग तलाह मनुजुकान कपाड़ा दुनिया जालान मनुजु गाया हिडुप यंग सा इम्बांग होलिस्टिक डान सेहा डी तंगा मनिकातिया तांतंगान तरकाइट गाया हिडुप योगा मुंचुल सवागे सोलूसी यंग इफेक्टिव डान ममिलिकी लांडासान इल्मिया खजुराहो बडरी सवागे सिंबल हिडुप डरी वारिसान बुडाया इंडिया यंग काया डन पये लिंगारा आन फेस्टिवल योगा डी सितुस बरसजारा इनी मंचरमिन कान हारमोनी यंग इंडा अंतरा ट्रेडिसी इंडिया डन का बुगारान मॉडर्न बलिया मैयाता कान का याकिनानिया बाबा फेस्टिवल इनी बर प्राण पंथिंग डालम सामाकिन मनिकात कान पनरिमान ग्लोबल तरहाडाप योगा सत्ता मम्पलुआस जांकावानिया डी कालांगान मासराकात हितुंग मुंडूर मनुजु हारी योगा इंटरनेशनल डी परिंगाती सत्याप ताहुन सवागे ताहाप सुल सोशियलिसासी पंथिंग उन्तुक मंबांगुन का साधारण डन मंडोरोंग पार्टिसिपासी पब्लिक मलालुई डेमोस्ट्रासी योगा कंपनी का साधारण डन का ज्ञातान बरवासिस कम्युनिटास यंग डी सलंगारा कान डी सलुरु नगरी प्रोग्राम ini dimulai pada pukul 6 pagi dan diikuti dengan antusias oleh para praktisi yoga, pelajar, pejabat serta penggemar kebugaran dari berbagai penjuru negeri yang secara bersama-sama melakukan Common Yoga Protocol CYP. Acara ini dihadiri oleh Menteri Pemerintah Pusat Pratap Rao Jadhav bersama dengan Inder Singh Parmar, Menteri Negara dengan Kewenangan Mandiri untuk Departemen Ayush di Pemerintah Madhya Pradesh. Pejabat gabungan Sekretaris Kementerian Ayush Ibu Monalisa Das, Direktur Institut Nasional Yoga Morarji Desai Profesor Kasinath Samagandi, Pejabat Senior Kementerian Pakar Yoga Perwakilan dari Sistem Ayush dan Kedokteran Modern serta praktisi yoga dari berbagai wilayah di negara ini juga turut berpartisipasi dalam program tersebut sebagai bagian dari acara Ayush Ahara yaitu makanan sehat berbasis prinsip Ayush juga dibagikan kepada para peserta terkenal di seluruh dunia karena arsitektur kuilnya yang megah dan lingkungannya yang tenang. Khajuraho menjadi latar yang tepat untuk Yoga Mahotsav 2026. Acara ini menyoroti hubungan antara tradisi kuno India dan kebugaran holistik sekaligus memperkuat momentum menuju Hari Yoga Internasional IDY 2026. Sekian. Itu tadi komentar saudara-saudara pendengar di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India. Kini ikutilah acara lagu rakyat India. Dalam acara ini kami menghibur Anda dengan sebuah lagu dari daerah Bengala Barat.

0: Indonesia dan luar negeri Akaswari, Seksi Bahasa Indonesia India, saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, penyiar Anda Anita Das dengan semua staf dari Seksi Bahasa Indonesia mengucapkan selamat pagi, selamat tinggal, sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih banyak.
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। मौसम विभाग ने 9 जून तक केरल के उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
4: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
3: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
4: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
3: इससे पहले श्री मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250 गीगावाट में गुजरात का योगदान 50 गीगावाट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। एक रिपोर्ट।
5: नई व्यवस्था के तहत जनरल रूट से निवेश करने वाले FPI को अधिक लचीलापन मिलेगा क्योंकि कुछ निवेश संबंधी प्रतिबंध हटाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में निवेश के लिए लागू जनरल और लॉन्ग टर्म श्रेणियों को मिलाकर एक एकीकृत निवेश सीमा भी निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश सीमा 4,62,490 करोड़ और दूसरी छमाही के लिए 4,77,006 करोड़ तय की गई है। राज्य विकास ऋणों के लिए ये सीमा पहली छमाही में 1,53,043 करोड़ और दूसरी छमाही में 1,64,242 करोड़ निर्धारित की गई है। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
3: वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।
6: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7,00,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1,50,000 से अधिक प्रतिभागियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
3: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
7: With Nepal, we have an expansive agenda.
8: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
7: Partnership that we have with Nepal.
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
9: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
10: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
9: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
11: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
12: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
3: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को

0: संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांति दूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अमरीका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमरीका ने कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। इससे अमरीका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ताओं पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इसराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इसराइल की सेना की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इसराइल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इसराइल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीणा।
0: केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मलप्पुरम, कोझिकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट रहेगा। अन्य 6 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विसेंट क्रीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। नॉर्वे शतरंज में प्रज्ञानानंद ने विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इससे पहले 2018 में अफगानिस्तान ने भारत के साथ पहला टेस्ट मैच खेला था। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: भारत की आर्थिक वृद्धि में बढ़त की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, संकट के बीच भारत की जीडीपी में उछाल, चौथी तिमाही में 7.8% रही। पत्र के अनुसार मजबूत मांग और उत्पादन के कारण रफ्तार तेज रही। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और आर्थिक सुधारों का नतीजा है। पत्र के अनुसार विदेशी पूंजी के लिए टैक्स फ्री राहत तैयार, आरबीआई ने बिना सीमा विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाया। देशबंधु के अनुसार लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। दैनिक भास्कर ने ऐतिहासिक शीर्षक से लिखा है, एआई का ग्लोबल हब बनेंगे हम। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी देश में 3,00,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी एयर ट्रंक। जनसत्ता ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, अमेरिका के 96 यूनिकॉर्न में भारतीय मूल के उद्यमियों का योगदान, इनमें कृत्रिम मेधा आधारित सर्च इंजन परप्लेक्सिटी भी शामिल। पत्र के अनुसार नव उद्यमों में 59% की स्थापना प्रवासी उद्यमियों ने की। वीर अर्जुन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लिखा है, मेरे मोदी अच्छे मित्र हैं, व्यापार समझौता हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार समझौता का पहला चरण जुलाई तक संभव। दैनिक जागरण लिखता है, भारत संघ SU-57 बनाने को रूस तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की 5वीं पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, लापरवाह अफसरों पर सीधे FIR। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को और प्रभावी बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया। जनसत्ता ने अनदेखी की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि कोई हादसा एक मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर वो गलती बनी रही तो उन्हें आपराधिक लापरवाही से कम नहीं माना जा सकता।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने सरकार

0: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे बयानिए फैलाने के लिए अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की अपनी आर्जी रुकनियत का गलत इस्तेमाल कर रहा है और उसे चाहिए कि वह अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रखे। भारत के मुस्तकिल नुमाइंदा पी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान की महज लफाजी और खोखले दावे इस बुनियादी हकीकत को नहीं बदल सकते कि जम्मू और कश्मीर भारत का एक अटूट और अलग न हो सकने वाला हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुनाफरत फैलाने वाले अपने सियासी मफादात के लिए बहुत सी गलत मालूमात फैलाकर और गुमराहकुन बातें करके कौंसिल में अपनी मौजूदगी का गलत इस्तेमाल कर रहा है। वो जनरल असेंबली को दी गई कौंसिल की सालाना रिपोर्ट पर एक मुबाहिसे के दौरान मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इस इलाके के बारे में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदा आसिम इफ्तिखार अहमद की तरफ से जिक्र किए जाने का जवाब दे रहे थे। अमरीकी फ़ौजों ने ईरान के उन चार ड्रोन्स को मार गिराने के बाद जिन्होंने इलाकाई समंदरी ट्रैफिक को निशाना बनाया था, आबनाए हुरमुस के करीब ईरान की साहिली निगरान रडार तंसीबात पर हमला किया है। अमरीकी मरकजी कमान ने बताया कि उसने मजीद हमलों से बचने के लिए ग्रुप और किशम जजीरे पर ईरान के साहिली निगरान रडार मकामात पर हमला किया है। यह हमला 3 महीने से जारी इस जंग में ताज़ा तरीन हमला है, जिसकी वजह से अमरीका और ईरान के दरमियान अमन बातचीत में जारी तातुल में और भी शिद्दत आ गई है। तफसील हमारे नामानिगार से।
1: यह हमला ऐसे वक्त में किया गया है जब अमेरिका और ईरान के दरमियान सिफारती कोशिशें रुकी हुई हैं। इन कोशिशों में जिस बात की वजह से तातुल आ गया है वह है ईरान के बैरून मुल्क मुंजमद असासों में से अरबों डॉलर जारी करने का ईरान का मुतालबा। ईरान के असरार ने किसी अबूरी समझौते पर पेशरफ्त को फंड्स के इंजमात को खत्म करने से जोड़ दिया है, जबकि अमरीका मुजाकरात में इस मामले पर पीछे हटने से हिचकिचाता रहा है क्योंकि वो इस मामले को मुजाकरात का एक अहम पहलू समझता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: अब जबकि केरल में जुनूब मगरबी मानसून सरगर्म हो चुका है, भारत के महकमे मौसमियात ने रियासत के शिमाली ज़िलों में 9 जून तक नहायत शदीद बारिश की पेशगोई की है। मल्लापुरम, कोईकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगाड अजला में आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। अलबत्त कोईकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट बरकरार रहेगा। शतरंज के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ऐसे पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर तारीख रकम की है। उन्होंने जर्मनी के विंसेंट कैमर आखिरी मरहले में हराकर ये जीत हासिल की है। नॉर्वे शतरंज के मुकाबले में सिर्फ दूसरी बार हिस्सा लेने वाले प्रज्ञानंद ने इस मुकाबले का बेहतरीन अंदाज में इख्तिताम किया है। इन मुकाबलों के दौरान उन्होंने आलमी नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को 2 मरतबा हराया है। गोवा के शहर मारगांव में जारी सैफ फुटबॉल खवातीन चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। इससे पहले सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर भारत फाइनल में पहुंचा है। भारत अब तक 5 बार इस खिताब को जीत चुका है। ये थी खबरें, अब अखबार के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
2: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप ने गुजरात के शहर सूरत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के एक अवामी रैली से खिताब को अपनी शह सुर्खी बनाया है। इस सिलसिले में अखबार की शह सुर्खी है, भारतीय मईशत की बुनियाद गैर मामूली तौर पर मजबूत है और आलमी सतह पर इकतसादी बहरान के बावजूद मुल्क में माली साल 2025-26 के दौरान 7.7% की ज़बरदस्त शरह तरक्की रिकॉर्ड की गई। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, दिल्ली में 18 नमो पार्कों की शुरुआत, इसी साल लगेंगे 15 लाख पौधे। अखबार इंकलाब ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत के इस बयान को नुमाया किया है कि इंसानियत और इंसाफ के सामने AI सबसे बड़ा चैलेंज, मसनूई ज़हानत की जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल पर जोर। अखबारात ने सनअती हल्के के इस रद्द अमल को अहमियत दी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एरानात सरमायाकारी बढ़ाने वाले। इसके अलावा अखबारात ने मीनाक्षी मदन राय की पटना हाई कोर्ट की नई चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ लेने की खबर को भी सफ़े अव्वल पर जगह दी है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि भारतीय मईशत आलमी इकतसादी बहरान के बावजूद गैर मामूली तौर पर मजबूत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरमाए को रागिब करने के लिए सरकारी तमस्सुकात में गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों के लिए जाब्तों में नरमी की है। कीमियावी खादों के मुतवाजिन इस्तेमाल और पायदार ज़राअत के लिए 9,42,000 से ज्यादा किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए।

0: भारत ने पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे बयानिए फैलाने के मकसद से अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की आर्जी रुकनियत का गलत इस्तेमाल करने पर उसकी मजम्मत की है। भारत के महकमा मौसमियात ने केरलम के शिमाली जिलों में 9 जून तक इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने तारीख रकम की है, वो नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत।
2: आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। स्वीकार करें अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, स्वास्थ्य केवल रोगों से मुक्ति का नाम नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहने की एक अवस्था है। आज के इस विशेष अंक में पर्यावरण संरक्षण, बच्चों के पोषण तथा गर्मी की छुट्टियों में स्वास्थ्य संवर्धन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर हम आपको जानकारी देंगे। स्वस्थ जीवन की कल्पना एक स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण के बिना नहीं की जा सकती। शुद्ध वायु, स्वच्छ जल, हरियाली और संतुलित प्राकृतिक संसाधन हमारे अच्छे स्वास्थ्य की आधारशिला है। यही संदेश लेकर हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आज का बढ़ता प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक कचरा और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन न केवल पर्यावरण बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। सांस संबंधी रोग, हृदय रोग, गर्मी से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं और जल जनित बीमारियां कहीं न कहीं पर्यावरणीय असंतुलन से जुड़ी हैं। आइए सुनते हैं विश्व पर्यावरण दिवस पर ये विशेष संदेश।
3: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा, दिल्ली विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में कम्युनिटी मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपके साथ जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर एवं चिंताजनक विषय पर कुछ चर्चा करूँगा। दोस्तों, हर वर्ष 5 जून को संयुक्त राष्ट्र संगठन के तत्वाधान में हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। पर्यावरण यानी हमारी पृथ्वी पर उपस्थित मनुष्य सहित सभी जीव जंतुओं और एवं पेड़ पौधों के जीवन का आधार। पृथ्वी का पर्यावरण ही इसे हमारे सौरमंडल में उपस्थित अन्य ग्रहों से अलग बनाता है और इसी वजह से यहाँ जीवन संभव हुआ है। लाखों वर्षों से पृथ्वी के पर्यावरण ने जीवन को संभाल कर रखा है, परंतु मानव सभ्यता के विकास की प्रक्रिया में पिछले एक शतक में हमने पृथ्वी के जीवनदायी पर्यावरण को इस प्रकार से चुनौती दी है कि इसकी प्राकृतिक क्षमताएं निरंतर कमजोर होती जा रही हैं। इसी पर्यावरण का एक अंश है जलवायु। जलवायु यानी हमारे वातावरण का तापमान, बरसात, आर्द्रता, हवा की गति और सौर्य विकिरण। हमारी पृथ्वी जलवायु परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। जलवायु परिवर्तन यानी पृथ्वी एवं समुद्र का बढ़ता तापमान, बेमौसम बरसात, अत्यधिक गर्मी और शीतलहर की बढ़ती हुई घटनाएं। दोस्तों, औद्योगिकरण, शहरीकरण और निरंतर बढ़ते यातायात के बोझ से कार्बन उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा में बढ़ोतरी, ओजोन की परत में सुराख और धरती के सतह पर ओजोन की मात्रा के बढ़ने जैसी घटनाएं जीवन के लिए विभिन्न रूप में हानिकारक साबित हो रही हैं। मसलन, पृथ्वी एवं समुद्र के तापमान का बढ़ना एवं परिणाम स्वरूप जलवायु में दीर्घकालिक परिवर्तन एवं आकस्मिक प्राकृतिक आपदाओं से जैसे बाढ़, भूस्खलन, तूफान और बवंडर जैसी घटनाओं में तेजी से वृद्धि होना। इसी तरह से मौसम की आवृत्ति में बदलाव जैसे असामयिक बारिश का होना, ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा ठंडे दिनों की वजह से फसलों पर कुप्रभाव, बीमारियों और असामयिक मृत्यु की दरों में वृद्धि जैसी अवांछनीय घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यह परिवर्तन हानिकारक है और सभी जीवों के लिए एक चुनौती बनकर उभर रहा है। प्रकृति के विरुद्ध

0: सिर्फ रोकना ही नहीं है बल्कि इसे विपरीत दिशा में मोड़कर पृथ्वी को आने वाली पीढ़ियों के लिए फिर से सुरक्षित एवं जीवन योग्य बनाना है। साथ ही वर्तमान में वो सभी उपाय करने होंगे जो जलवायु परिवर्तन को रोकने के साथ साथ हमें भी इसके कुप्रभावों से बचा कर रख सकें, और ये जिम्मेदारी हम में से हर एक को व्यक्तिगत रूप से उठानी होगी। हमारे व्यक्तिगत प्रयास ही देश के और विश्व के संस्थागत प्रयासों को मजबूत बनाएंगे और हम सामूहिक रूप से इस त्रासदी का सामना कर पाएंगे। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी जीवन शैली में ये परिवर्तन लाएं जो जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से आपको सुरक्षित रखेंगे और जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया को रोकने में मददगार होंगे। इस मुहिम में सबसे पहला कदम हमारा, हम पैदल चलें, साइकिल चलाएं और सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल को प्राथमिकता दें। खनिज ईंधन के उपयोग को कम करना जलवायु संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे कार्बन और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आएगी। पैदल चलने और साइकिल चलाने से शारीरिक व्यायाम होगा और हम स्वस्थ रहेंगे, साथ ही साथ शहरों में लगातार बढ़ते प्रदूषण पर भी रोक लगेगी। बिजली का इस्तेमाल कम करें, एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करें, सूर्य की रोशनी से घर में उजाला रखें, एयर कंडीशनर के बजाय ताज़ी हवा से घर को ठंडा रखें, ठंडे पानी में कपड़े धोएं और प्राकृतिक हवा में सुखाएं। जितनी बिजली की खपत ज़्यादा होती है उतनी ही बिजली उत्पादन करने में खनिज तेल का उपयोग होता है, मशीनें चलती हैं और वातावरण में तापमान बढ़ता है। छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़ा बदलाव लाती हैं, ये हमारी संस्कृति में एक प्रचलित पुरानी कहावत है। कंप्यूटर, मोबाइल फोन, टेलीविजन तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल जलवायु को प्रतिकूल बनाता है। यह सभी उपकरण आज जिंदगी के अभिन्न अंग हैं, परंतु इनके उपयोग को आवश्यकता अनुसार सीमित किया जा सकता है। सभी उपकरणों का इस्तेमाल ऊर्जा पर आधारित होता है और जितनी ऊर्जा हम खर्च करते हैं उतनी ऊर्जा पैदा करने की प्रक्रिया में जलवायु पर कुप्रभाव पड़ता है। चौथी बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में खाने पीने की वस्तुओं का चुनाव महत्वपूर्ण साबित होगा। पेड़ और पौधों से मिलने वाला खाना जैसे सब्जियां, फल, साबुत अनाज, दालें और मेवा इत्यादि को उगाने और इनको प्रोसेस करने में कम पानी और जमीन की जरूरत होती है। वहीं जंतुओं से प्राप्त होने वाले भोजन को पकाने में ज्यादा ईंधन और पानी की जरूरत होती है। इसलिए अपने भोजन की शैली को बदलना, अधिक से अधिक पेड़ पौधों से मिलने वाला खाना खाना और प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड के इस्तेमाल को कम करना जलवायु परिवर्तन रोकने में मददगार साबित होगा। आखिर में दोस्तों, दुनिया भर में जितना भोजन पकाया जाता है उसका एक बड़ा हिस्सा खाया नहीं जाता, कंज्यूम नहीं किया जाता और इससे भोजन बर्बाद होता है। इसलिए ज़रूरत से अधिक भोजन बनाना और फिर उसका उचित सेवन न कर पाना भी पानी और ऊर्जा की बर्बादी है। जितनी ऊर्जा हम बचाएंगे, जितना पानी हम कम खर्च करेंगे, प्रकृति एवं जलवायु उतने ही सुरक्षित रहेंगे। हमारा ये भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने आसपास की हरियाली को सुरक्षित रखें, जंगलों को काटने ना दें ताकि प्रकृति अपने संसाधनों से अपने आप को अक्षुण्ण रख सके। शहर की हरियाली और ग्रामीण इलाकों के जंगल पृथ्वी के फेफड़े हैं, इन्हीं की बदौलत हमें ऑक्सीजन मिलती है जो हमारी जिंदगी का आधार है। उत्पादित सामग्री का उपयोग हम कम करने का प्रयास करें, हम कम खरीदें और उनका इस्तेमाल जहां तक संभव हो सके लंबे समय तक करें। जल्दी जल्दी चीज़ों को बदलना यानी नई चीज़ें खरीदना उत्पादन बढ़ाती है और उत्पादन बढ़ाने के लिए ज़्यादा ऊर्जा, ज़्यादा पानी और प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत, इसलिए वहां पे संयम बरतना हमारे लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। वायु प्रदूषण एक जटिल समस्या है। शहरों में, खास करके हमारे देश के बड़े शहरों में प्रदूषण बहुत बढ़ा हुआ है और यह प्रदूषण भी जलवायु परिवर्तन की नकारात्मक घटनाओं को बढ़ाता है। हमारा हर कदम जो ऊर्जा बचाता है, पानी को संरक्षित करता है, प्रकृति को सुरक्षित रखता है, वह जलवायु परिवर्तन को भी रोकता है। हमारे व्यक्तिगत स्तर पर उठाए गए यही छोटे छोटे कदम सामूहिक स्तर पर क्रांतिकारी साबित होंगे। धरती फिर से जीवंत होगी, जलवायु अनुकूल होगी, जीवन की खुशहाली लौटेगी, हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहेगी, हम हमारे जीवन की सार्थकता को महसूस कर पाएंगे। धन्यवाद।
1: अभी आप विश्व पर्यावरण दिवस पर डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा, प्रोफेसर

0: डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन UCMS और GTB अस्पताल नई दिल्ली का ये विशेष संदेश सुन रहे थे। आइए विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम सभी ये संकल्प लें कि पर्यावरण संरक्षण को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएंगे, अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, प्लास्टिक के उपयोग को कम करेंगे, जल और ऊर्जा का संरक्षण करेंगे और स्वच्छता को बढ़ावा देंगे। याद रखिए, स्वस्थ पर्यावरण ही स्वस्थ समाज और स्वस्थ भविष्य की कुंजी है। श्रोताओं, पर्यावरण और स्वास्थ्य का संबंध जितना गहरा है उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जीवन के प्रारंभिक वर्षों में सही पोषण। कहा जाता है कि स्वस्थ बचपन ही स्वस्थ जीवन की नींव है और इस स्वस्थ बचपन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है उचित पोषण। बच्चों को सही समय पर सही आहार मिले तो न केवल शारीरिक रूप से सशक्त बनते हैं बल्कि उनका मानसिक और बौद्धिक विकास भी बेहतर होता है। आइए सुनते हैं बच्चों में सही पोषण विषय पर भेंटवार्ता, जिसमें विश्व कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग डे के संदर्भ में भी जानकारी शामिल है। हमारी विशेषज्ञ हैं वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ और IAP वेस्ट दिल्ली की प्रेसिडेंट इलेक्ट डॉक्टर राधिका सचदेव। भेंट करता है रश्मि गुप्ता।
1: मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: मैम, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पोषण क्या है और बैलेंस डाइट से हमारे लिसनर्स क्या समझें।
2: पोषण या फिर बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें सही मात्रा में एज के हिसाब से हर चीज होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट में, जिससे बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट एडिक्वेटली पूरी हो सके और बच्चे की ग्रोथ
1: जी,
2: फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, उस पे सब कुछ का कंट्रीब्यूशन होता है, तो वो अच्छे से हो सके
1: जी, जी।
2: इतनी मात्रा में कितनी चीज कैसे दी जाए।
1: तो किस उम्र से बच्चों को सही पोषण मिलना चाहिए और किस उम्र तक माता पिता को पोषण का खास ख्याल रखना चाहिए?
2: सही पोषण तो एक गर्भवती स्त्री से ही स्टार्ट हो जाता है
1: जी, जी।
2: क्योंकि अगर बच्चा अच्छा पैदा होगा तो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत अच्छी होगी। और हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं शुरू के 1000 दिन,
1: अच्छा,
2: मतलब जो प्रेगनेंसी के 9 महीने हुए
1: जी,
2: प्लस 2 साल, वो पोषण अगर सबसे अच्छा हुआ, माँ ने आयरन कैल्शियम की गोली ली, अच्छा आहार लिया, अच्छी नींद ली, और फिर बच्चा अच्छा होगा, सही टाइम पे होगा, बच्चे का वेट अच्छा होगा, फिर 6 महीने तक बच्चे ने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग किया
1: जी,
2: सिर्फ माँ का दूध पिया, कुछ भी और नहीं, उसके बाद जैसे जैसे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, वहां से लेके बच्चे की नींव जो बनती है वो इसी टाइम पे बनती है, उससे लेके एडोलेसेंट तक, एडल्ट तक, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि जो बच्चे खाते हैं, हम शुरू में बोलते हैं कि पहले 1 साल नमक नहीं देना, चीनी नहीं देनी, 2 साल तक चीनी नहीं देनी, क्योंकि आगे देखा जा रहा है कि जो पहले हमारी जनरेशन में जब डायबिटीज और हाइपरटेंशन होता था, ओबेसिटी होती थी, वो आजकल जल्दी हो रहा है। तो बैलेंस डाइट का कंसेप्ट तो प्रेगनेंसी से ही शुरू हो जाता
1: है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि प्रेगनेंसी से ही बच्चे का जो पोषण है वो स्टार्ट हो जाता है, जब नवजात शिशु की यदि हम बात करते हैं तो उसको पोषण के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, और खास तौर पे जो शुरुआत के 6 महीने आपने बताए कि माँ का जो दूध होता है वो संपूर्ण आहार की तरह काम करता है, ऐसा किस लिए?
2: क्योंकि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, बच्चा माँ के अंदर इतना सुरक्षित होता है, तो बाहर निकल के भी उसको ऐसी चीज मिलनी चाहिए जो वो सुरक्षित रहे आगे भी। माँ के दूध में ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसमें एंटीबॉडीज होती हैं, नेचुरली की बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है, उसमें ऐसे एंटीबॉडीज, ऐसे एंजाइम्स, ऐसे तत्व होते हैं जिनसे ये सब बच्चा फाइट कर सकता है और लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है। प्लस उसमें इतना पानी होता है, इतना फैट, इतना कार्बोहाइड्रेट, वो अपने में ही एक बैलेंस डाइट है। तो पैदा होते ही चाहे बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हो, चाहे ऑपरेशन से हो, 1 से 4 घंटे के अंदर माँ की छाती पे लगाकर इसको बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान शुरू करा देना चाहिए। और उसके लिए कुछ चीजें याद रखनी चाहिए। बहुत सारे लोग शहद चटाते हैं या पानी पिला देते हैं, घुट्टी दे देते हैं, ग्राइप वाटर दे देते हैं, तो प्लीज याद रखें, पहले 6 महीने में माँ के दूध में इतना पानी होता है, इतनी पौष्टिक तत्व होते हैं कि उसे और किसी चीज की जरूरत नहीं होती। जो माँ के दूध में शुरू में आता है उसको बोलते हैं 4 मिल्क,
1: अच्छा।
2: उसमें होता है पानी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सब कुछ होता है,
1: अच्छा।
2: तो वो बच्चे की थर्स्ट को पूरा कर देता है, और अगर गर्मी है, बच्चा बार बार प्यासा हो रहा है, तो वो बार बार दूध पिएगा तो 4 मिल्क ज्यादा जाएगा, और लास्ट के कुछ मिनट में जो मिल्क आता है वो हाइंड मिल्क होता है, उसमें फैट होता है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, गर्मियों में पानी ना शुरू करें 6 महीने तक।

0: दूसरा प्री लैक्टियल फीड्स वो नहीं दे, तीसरा एक बार में एक तरफ से पिलाए, फिर 2 से 3 घंटे बाद या बच्चा दब डिमांड करता है तो दूसरी ब्रेस्ट से पिलाए।
1: 6 महीने के बाद बच्चे के आहार में क्या बदलाव करना चाहिए और किस तरह का ठोस आहार देना चाहिए?
0: आज लकीली मैं बहुत अच्छे दिन आई हूँ, आज कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग डे है, इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग डे मनाती है। तो पहले कंसेप्ट था वीनिंग का कि आप बच्चे को ब्रेस्ट से वीन ऑफ कर दीजिए और ऊपर का खिलाना शुरू करिए। अब कंसेप्ट है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का कि आप ऐसा आहार शुरू करें जो ब्रेस्ट मिल्क को कॉम्प्लीमेंट करे। ब्रेस्ट मिल्क आप स्तनपान 2 साल तक चला सकते हैं और उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही 6ठा महीना खत्म हो, अब 6ठा महीना क्यों चुना? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बच्चे की गर्दन संभल जाती है, बच्चा बैठने को तैयार हो जाता है, सपोर्ट से या बिना सपोर्ट के बैठना शुरू कर देता है, बच्चे की जो जीभ के मसल्स हैं वो अच्छे से डेवलप हो जाते हैं, जो जबड़े के मसल्स हैं वो भी अच्छे से डेवलप हो जाते हैं, तो बच्चा थोड़ा सा स्वॉलो करना सेमी सॉलिड चीजों को और निगलना थोड़ा, दांत आने शुरू हो जाते हैं 6 महीने से, चबाने की प्रक्रिया ये सब सीखना शुरू कर देता है। तो इसलिए हम शुरू करते हैं 6 महीने से। अब क्या शुरू करें? घर की चीजों से शुरू करें, बाहर के सामान से नहीं शुरू करें, अनलेस आप ट्रेवल कर रहे हैं या ट्रेन में है। अब घर का क्या सामान, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि दाल का पानी, चावल का पानी, दूध में बिस्किट डाल के या रोटी को दूध में गला के या छनी हुई चीजें,
1: अच्छा
0: फल के जूस छान के, सब्जियों को मिक्सी में पीस के, ये ना दें।
1: अच्छा, ये नहीं देना?
0: बिल्कुल नहीं देना। तो पहले बात करी जो नहीं देनी, अब देना क्या है? पूरी दाल दीजिए, मूंग दाल दीजिए, खिचड़ी दीजिए, दलिया दीजिए। दलिये को आप ग्राइंड करके रख सकते हैं, दाल और सब्जी के साथ बना सकते हैं। जैसे 6 से 8 महीने का बच्चा है तो 2 बार खाना, 1 बार सीजनल फल।
1: अच्छा,
0: 9-10 महीने का बच्चा है, 3 बार खाना, 1 बार फल। 11 और 12 महीने पे 4 बार खाना, 1 बार फल। मतलब 1 साल का बच्चा जितना हम खाते हैं उससे अप्रोक्सीमेटली आधा खा सकता है। एक ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना, रात का खाना और बीच में स्नैक। अब स्नैक में आप उबला हुआ आलू दे सकते हैं, उबली हुई शकरकंदी मैश करके दे सकते हैं, सीजनल फल खिलाएं, केला बहुत अच्छा है, सेब को मैश करके घिस के खिला सकते हैं, पपीता खिला सकते हैं, चीकू है, सूजी है, सूजी की खीर बना सकते हैं, देन दलिया दाल के साथ जैसे मैंने बनाया, उसमें थोड़ा सा न्यूट्रिशन इम्प्रूव करने के लिए आप फैट डाल सकते हैं। बट प्लीज ये याद रखें, ऊपर से नमक नहीं डालना 1 साल तक, और चीनी का प्रयोग 2 साल तक नहीं करना। जो नेचुरल शुगर्स हैं, जैसे फलों में मिल रहा है या जैसे खजूर है, वो जिस नेचुरल शुगर्स आप दे सकते हैं, बट एडेड शुगर चीनी ना डालें। जिन बच्चों को चीनी जल्दी शुरू करी जाती है, आगे जाके तकलीफ होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। बच्चे का नेचुरल टेंडेंसी हो जाती है सिर्फ मीठा खाने की, वो बाकी चीजें नहीं खा पाता आराम से, उसकी प्रेफरेंस वो हो जाती है। और नमक से ये होता है कि हमारे बच्चे, यही बच्चे आगे जाके हाइपरटेंशन इनको जल्दी होगी।
1: जी, मेरा अगला सवाल यही था कि यदि बच्चों को सही पोषण ना मिले तो कौन कौन सी समस्याएं उनमें हो सकती हैं, किस तरह की बीमारियों से वो ग्रसित हो सकते हैं?
0: मैल न्यूट्रिशन, जिसमें कि बच्चों का वजन नहीं ठीक से बढ़ रहा, मतलब बच्चा कमजोर है, उसमें प्रोटीन की कमी है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो रही है, वो बहुत दुबला पतला, उसके साथ साथ एनीमिया भी हो जाता है, खून की कमी आयरन की वजह से, फॉलिक एसिड या B12 की वजह से, देन विटामिन डी की कमी, रिकेट्स हो जाता है, हड्डियां इफेक्ट हो जाती है। तो ये तो हो गया पोषण बहुत कम मिलने से। और एक है ओबेसिटी। ओबेसिटी भी आज का मेल न्यूट्रिशन है, क्योंकि इसमें भी पोषक खाना तो जा नहीं रहा
1: बिल्कुल।
0: तो ओबेसिटी एज वेल एज मेल न्यूट्रिशन, ये दोनों बैलेंस डाइट नहीं होने की वजह से होते हैं।
1: अच्छा, माता पिता कैसे पहचाने कि बच्चे में पोषण की कमी है?
0: अधिकतर ऐसा देखा गया है कि जो मेल न्यूट्रिश बच्चे होते हैं वो उतने खुशमिजाज नहीं होते।
1: अच्छा,
0: वो थोड़े से चिड़चिड़े होते हैं, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ कमी होती है।
1: बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए खान पान किस तरह से योगदान देता है?
0: हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चे की हम थाली बना रहे हैं उसमें सब तरह का समान हो। जैसे गो फूड्स, जिनसे एनर्जी मिलती है, जैसे कि चावल है, रोटी है, मिलेट्स हैं, रागी ज्वार बाजरा है, फिर ग्रो फूड्स जैसे कि दूध, दही, छाछ, प्रोटीन वाली चीजें, राजमा, दालें, चने, सोया, पनीर, और तीसरा होता है ग्लो फूड जिसमें सब्जियां, हरी सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सलाद की चीजें और फल आते हैं। तो ये तीनों चीजों की एडिक्वेट अमाउंट में मात्रा होनी चाहिए, मतलब हमारी थाली पूरी रंगीन होनी चाहिए, दाल भी हो, चावल भी हो, हरी सब्जियां भी हो, फल भी हो, सब कुछ हो।
1: बहुत ही अच्छी चीज आपने बताई, गो, ग्रो एंड ग्लो।
0: बिल्कुल।
1: तो कुल

0: लाके यदि हमें बच्चों को स्वस्थ बनाना है और अपने समाज के का निर्माण स्वस्थ बच्चों के साथ करना है तो हमें उनके पोषण का बहुत खास ख्याल रखना पड़ेगा। मैम आज आपने इतनी सारी बातें बताई, लेकिन चलते चलते उन पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगी आप जो अपने बच्चों को शुरुआत से कम उम्र से ही अच्छा पोषण देना चाहते हैं, उनके लिए बेसिकली क्या सुझाव आप देना चाहेंगे?
1: अच्छा खाना और एक निमोनिक बना है जंक्स, JUNCS, जंक्स मतलब जे से जंक फूड जिसमें कि बहुत फैट शुगर और सॉल्ट होते हैं, यू से अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जैसे बर्गर पैटी पिज्जा पास्ता, एन से नॉन न्यूट्रिशियस चीजें इनअप्रोप्रिएट चीजें जिसमें न्यूट्रिशन ना हो, सी से कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कैफिनेटेड ड्रिंक्स मीठी चीजें, और एस से एक्सेस शुगरी, ये सारी चीजें ये अवॉइड करें तो आपका बच्चा अपने आप एक हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बच्चा हो जाएगा।
0: जी आप यहाँ आई, आपने इतना कीमती समय दिया और आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर।
1: थैंक यू सो मच।
2: बच्चों में सही पोषण, अभी आप इस विषय पर भेंट वार्ता सुन रहे थे। हमारी विशेषज्ञ थी वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राधिका सचदेव, आपसे बात कर रही थी रश्मि गुप्ता। निश्चित रूप से जीवन के प्रारंभिक वर्षों में संतुलित पोषण बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। गर्मियों की छुट्टियों में स्वास्थ्य पुनर्जीवन पर ध्यान केंद्रित करना बेहद आवश्यक है। इस समय का उपयोग न केवल विश्राम और मनोरंजन के लिए किया जा सकता है बल्कि ये आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का अवसर भी है। आज की वार्ता में हम आपके लिए कुछ सुझाव लेकर आए हैं। छुट्टियों में स्वास्थ्य पुनर्जीवन यानी हेल्थ रेजुनुवेशन इन समर वेकेशंस। हमारी वार्ताकार हैं साइकोलॉजिस्ट स्मिता मीना।
3: आज का समय बहुत तेजी से बदल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल कंपटीशन, सोशल मीडिया, करियर अनसर्टेनिटी, इन सब का असर सिर्फ पढ़ाई पर नहीं बल्कि बच्चों के मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर भी पड़ रहा है। कई बच्चे वेकेशंस में भी मेंटली स्ट्रेस रहते हैं। कुछ बच्चों को लगता है कि हर समय प्रोडक्टिव नहीं रहे तो वो पीछे रह जाएंगे। इस लगातार प्रेशर का असर ओवरऑल हेल्थ पर पड़ता है, जैसे स्लीप साइकिल, ईटिंग हैबिट्स, इमोशनल बैलेंस और कंसंट्रेशन। ऐसे समय में समर वेकेशन सिर्फ छुट्टियां नहीं है बल्कि बच्चों के लिए रिकवरी, इमोशनल ग्रोथ, स्किल डेवलपमेंट और हेल्थ इम्प्रूवमेंट का एक सुनहरा अवसर है। आज के स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन रिच है लेकिन इमोशनली ओवरलोडेड भी है। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं कॉग्निटिव ओवरलोड, यानी दिमाग पर लगातार इन्फॉर्मेशन, एक्सपेक्टेशंस और कंपैरिजन का दबाव। जब ब्रेन को लगातार स्ट्रेस मिलता है तो बॉडी में कॉर्टिसोल्स यानी स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ता है, स्लीप डिस्टरबेंस होती है, इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है और एंजाइटी बढ़ सकती है। यानी मानसिक दबाव केवल इमोशंस तक नहीं सीमित रहता बल्कि फिजिकल हेल्थ को भी प्रभावित करता है। इसीलिए आज WHO और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स बार बार यह कह रहे हैं कि स्टूडेंट वेलबींग इज एन इम्पॉर्टेंट एज एकेडमिक अचीवमेंट। समर वेकेशंस बच्चों के लिए एक साइकोलॉजिकल रिकवरी पीरियड और साथ ही साथ मेंटल रिस्टोरेशन फेज हो सकते हैं। पूरे एकेडमिक ईयर के दौरान लंबे स्टडी हार, स्क्रीन एक्सपोजर, एग्जाम प्रेशर और इरेगुलर रूटीन से बच्चों के नर्वस सिस्टम और बॉडी दोनों को थका देते हैं। इसीलिए वेकेशंस के दौरान प्रॉपर स्लीप, इमोशनल रिलैक्सेशन, फिजिकल मोमेंट और फैमिली बॉन्डिंग बहुत ही जरूरी हो जाती है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल रेगुलेशन, यानी आपकी इमोशंस और स्ट्रेस को हेल्दी तरीके से मैनेज करना। आज CBSE और NEP भी फोकस कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट और ब्रेन ग्रोथ, जिसमें शामिल है AI लिटरेसी, इंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल्स। लेकिन फ्यूचर रेडी बनने का मतलब सिर्फ सर्टिफिकेट कलेक्ट करना नहीं है। रिसर्च ये कहती है कि बच्चों में क्रिएटिविटी, अडेप्टेबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इमोशनल इंटेलिजेंस भी इम्पोर्टेंट है। क्रिएटिविटी बच्चों को नए आइडिया सोचने और अलग तरीके से प्रॉब्लम को देखने में मदद करती है। यह इनोवेशन और सेल्फ एक्सप्रेशन दोनों को बढ़ाती है जो फ्यूचर करियर में बहुत जरूरी है। आज की बदलती दुनिया में अडेप्टेबिलिटी यानी परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता बहुत महत्वपूर्ण है। जो बच्चे बदलाव को एक्सेप्ट करना सीखते हैं वे स्ट्रेस को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बच्चों को चैलेंजेस से घबराने की बजाय सॉल्यूशंस ढूंढना सिखाती है, कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को मजबूत बनाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस अपनी

0: दूसरों की भावनाओं को समझना और सही तरीके से मैनेज करना, यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। मेंटल फिटनेस उतनी ही जरूरी है जितनी फिजिकल फिटनेस। कुछ हेल्दी समर हैबिट्स जैसे माइंडफुल ब्रीदिंग, जर्नलिंग, नेचर वॉक, योगा एंड स्ट्रेचिंग और लिमिटेड टाइम स्क्रीन, ये एक्टिविटीज नर्वस सिस्टम को काम कर देती हैं। माइंडफुल ब्रीदिंग में रोज कुछ मिनट डीप ब्रीदिंग करने से माइंड शांत होता है और एंजाइटी कम होती है। यह कंसंट्रेशन और इमोशनल रेगुलेशन को इम्प्रूव करता है। जर्नलिंग में आपको अपने थॉट्स और फीलिंग्स लिखने से इमोशनल क्लैरिटी मिलती है। यह स्ट्रेस को रिलीज करने और सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने का एक हेल्दी तरीका है। प्रकृति के बीच समय बिताने से ब्रेन रिलैक्स होता है और मूड बेहतर होता है। नेचर एक्सपोजर मेंटल फटिगनेस को कम करने में मदद करता है। योगा और स्ट्रेचिंग की बात करें तो बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ मेंटल कामनेस भी बढ़ाते हैं। यह स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करते हैं। लिमिटेड स्क्रीन टाइम, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम एक्सपोजर अटेंशन स्पैन और स्लीप दोनों को प्रभावित करता है, तो स्क्रीन टाइम लिमिट करने से फोकस, मूड और सोशल इंटरेक्शन बेहतर होते हैं। जब बॉडी रिलैक्स होती है तभी ब्रेन इफेक्टिवली लर्न कर पाता है। साथ ही साथ हेल्दी ब्रेन के लिए हेल्दी न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। समर में बच्चों को हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए, सीजनल फ्रूट लेने चाहिए और एक्सेसिव जंक फूड कम करना चाहिए। न्यूट्रिशन डायरेक्टली इफेक्ट करता है आपके मेमोरी, मूड, कंसंट्रेशन, एनर्जी लेवल और ब्रेन को भी, तो प्रॉपर फ्यूल चाहिए ना। कई स्टडीज यह दिखाती है कि पुअर स्लीप और अनहेल्दी फूड मिलकर स्ट्रेस और इरिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ पेरेंट्स का यह समझना भी बहुत जरूरी है कि वेकेशंस केवल एक्स्ट्रा ट्यूशंस का समय नहीं है। बच्चों को चाहिए रेस्ट, इमोशनल कनेक्शन, हॉबीज, फिजिकल एक्टिविटीज और सेल्फ एक्सप्लोरेशन। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सपोर्टिव इमोशनल एनवायरनमेंट, ऐसा माहौल जहां बच्चा प्रेशर नहीं बैलेंस महसूस करे। आज भी भारत के कई हिस्सों में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस लिमिटेड है, काउंसलिंग सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, पेरेंट्स और स्टूडेंट गाइडेंस ढूंढ रहे हैं। ऐसे में आकाशवाणी जैसे प्लेटफॉर्म बहुत पावरफुल है क्योंकि ये मीनिंगफुल हेल्थ और साइकोलॉजिकल गाइडेंस देश के हर कोने तक पहुंचाते हैं। कई स्टूडेंट्स पहली बार ऐसे प्रोग्राम सुनकर समझते हैं कि स्ट्रेस होना नॉर्मल है, मेंटल हेल्थ भी हेल्थ का हिस्सा है, हेल्प लेना कमजोरी नहीं है। याद रखिए, हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी और हेल्दी इमोशंस, यही है ट्रू फ्यूचर रेडीनेस। नमस्कार।
1: इन सुझावों का पालन करके आप गर्मियों की छुट्टियों का सही उपयोग कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को पुनर्जीवित कर सकते हैं। स्वस्थ रहना आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अभी आप सुन रहे थे वार्ता हेल्थ रेजुनोवेशन इन समर वेकेशंस, यानी छुट्टियों में स्वास्थ्य पुनर्जीवन। वार्ताकार थी साइकोलॉजिस्ट स्मिता मीना। दोस्तों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है? इस कार्यक्रम में और आप क्या सुनना चाहते हैं? आप हमें लिख सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, हमारे कार्यक्रम में कोई सुझाव देना चाहें, अपनी प्रतिक्रिया देना चाहें तो आप हमें मेल कर सकते हैं। नोट कर लीजिए हमारी मेल आईडी healthairdelhi@gmail.com। इसके अलावा भी अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई विषय के बारे में अतिरिक्त जानकारी चाहते हैं तो हमें अवश्य लिखिए। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत अब यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करिए हमारा नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है।

0: और अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम धरती आकाश।
1: नमस्कार, धरती आकाश के इस अंक में आप सबका स्वागत।

0: स्वागत है।
1: आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर आर के कोटनाला। आप चेयरमैन हैं न्यू साइंस क्रिएटर्स इंस्टीट्यूट के। आपने रिन्यूएबल एनर्जी पर बहुत काम किया है और सिलिकॉन सोलर सेल पर IIT दिल्ली से सबसे पहले PhD करने वाले आप ही हैं। प्रोफेसर कोटनाला, आपका स्वागत करते हैं। प्रोफेसर कोटनाला, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो सिलिकॉन सोलर सेल पर आपने रिसर्च किया था, ये क्या था?
2: हमने जब सोलर सेल बना रहे थे, क्योंकि हम पहले ये बन चुका था, तो हम उसको एक तरह से नए ढंग से बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने जो सोलर सेल बनाया था, वो P+N+ करके एक स्ट्रक्चर बनाया है, जिसमें बोलते थे BSF इफेक्ट, मतलब बैक सरफेस फील्ड, जो आजकल पर्क सोलर सेल इसका मॉडिफाइड फॉर्म है आज की डेट में। ये हमारा काम है 1985 का। तो 1985 से जो था वो देखिए कि अभी पर्क सोलर सेल को आए हुए 8-10 साल हुए हैं। तो पर्क सोलर सेल इसमें हाईली एफिशिएंट है। उस समय हमने क्या किया कि एक छोटा सेल 10 mm का साइज से लेकर के हम उसको 2 इंच डायमीटर, मतलब बेसिकली 2 इंच 5 सेंटीमीटर का बनाते रहे, और उससे हमने छोटी सी एक मतलब मोटर चलाई, थोड़ा सा लाइट जला लेते थे, एक बड़ी पैनल बना ली थी, और उसके बाद हम उस पे आगे कार्य करते रहे।
1: ये बताएं कि ये जो आपने सोलर सेल पर काम किया, ये आजकल के जो सोलर सेल है उनसे कितने अलग थे?
2: मूल रूप से सोलर सेल आज भी वही है, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में भी गई थी, उन्होंने ये काम भी किया, इस पे भी किया। और अभी मैंने आपसे कहा कि पर्क सोलर सेल इसका ही एक नया रूप दिया गया है, जो इस समय 22% एफिशिएंसी पे दिखाता है। उस समय हम इसको 12% बना रहे थे 1990 में।
1: प्रोफेसर कोटनाला, सौर ऊर्जा पर सरकार का भी बहुत ध्यान है, और इसमें अच्छी बात यह कि हमारे देश के अधिकांश हिस्सों में कुछ समय को छोड़ दें तो धूप रहती रहती है, और खासतौर पर उत्तर भारत में बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं जब धूप अच्छी खिली रहती है, तो इसको लेकर हमारे यहाँ पर बहुत संभावनाएं हैं। लेकिन इसमें कुछ चीजें कही जाती है कि एक तो हमारे यहाँ सोलर सेल और सोलर सेल की जो टेक्नोलॉजी, उस पर बहुत ज्यादा काम नहीं है, और सोलर सेल्स भी जो है वो बाहर से बनकर आते हैं विदेशों से। इन बातों में एक तो कितनी सच्चाई है, और क्या सोलर एनर्जी को लेकर हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं?
2: जब हम सोलर सेल यहाँ पे बना रहे थे देश में, मैं राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में कार्य कर रहा था दिल्ली में, फिर IIT दिल्ली भी, तो अब उस समय हम अपने आप सोलर सेल बना रहे थे। सिलिकॉन हम बाहर से खरीदते थे तब भी, और कुछ केमिकल भी। लेकिन आज की जो स्थिति है, हम जितने भी सोलर के बड़े बड़े मतलब हमने पावर स्टेशन बनाए एक तरह से, तो वो जो पावर स्टेशन है मतलब वो सारे के सारे बाहर से खरीदे जाते हैं। तो इसमें आत्मनिर्भरता तो चाहिए। आज की डेट में ये हो रहा है कि वो सोलर सेल ही पूरा बन के आता है, इवन कि पैनल भी बन के आते हैं, और ये बहुत महंगा है, ऐसा भी नहीं है, और हम आयात करते जा रहे हैं। तो इतना आयात करते हैं कि यदि हम मोटा मोटा आइडिया लगाएं सरकार और बाहर, तो $6 बिलियन का हम आयात करते हैं आज भी। तो इसके लिए आपका ये सवाल बहुत अच्छा है कि आत्मनिर्भरता हो, उसके लिए सरकार को कुछ कदम उठाने पड़ते हैं, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है वो ऐसे कदम नहीं उठाती है। या तो सरकार उनके ऊपर कुछ जोर देगी तब होता है, लेकिन तरीका ये है कि इसको सरकार पे कदम उठाना चाहिए था। जब हम बात करते हैं ग्रीन एनर्जी, तो ग्रीन एनर्जी का जो सबसे बड़ा महत्व है वो ये है कि जो ये जो एनर्जी निकल रही है, इसके प्रोसेस में जब मतलब ये एनर्जी के लिए जो डिवाइस बनाया, ये फाइनली हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके अंदर ऐसे केमिकल का इस्तेमाल ना हो जो हमारी सेहत के लिए खराब है या मिट्टी पानी के लिए खराब है। तो हमें उसके लिए एक नया रास्ता देखना था। तो ग्रीन एनर्जी इसीलिए कहा गया कि इसके सारे स्टेप्स, प्रोसेस के स्टेप्स भी हैं, वो कैसे हों कि उसमें कोई भी ऐसी हमारी सेहत के लिए, अर्थ की सेहत के लिए ना हो खराब।
1: तो कौन कौन सी एनर्जी ग्रीन एनर्जी हुई?
2: ग्रीन एनर्जी में जब बात करते हैं तो आमतौर पे सोलर सेल का भी नाम लिया जाता है। वैसे तो देखा जाए विंड एनर्जी भी है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड जगह ही होती है। और विंड एनर्जी के साथ साथ लोगों ने कोशिश करते हैं कि और कोई हम ग्रीन एनर्जी के लिए विकल्प ढूंढते रहे, तो उसमें जैसे हाइड्रोजन प्रोडक्शन का था, तो इसमें आज की तारीख में पूरी दुनिया में एक अद्भुत आविष्कार है जो हमने और हमारे स्टूडेंट ने डॉक्टर ज्योति सार ने किया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल, जिसके प्रोसेस में कहीं पर भी हम ऐसे केमिकल इस्तेमाल नहीं कर रहे, सब देश का ही है, और उससे हम हाइड्रोजन भी जनरेट कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर रहे हैं।
1: इसीलिए इसका नाम है हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल।
2: हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल तो इसलिए किया गया कि पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा जी। और ये सेल स्ट्रक्चर में है, तो इसलिए इसका हाइड्रो सेल रखा। लेकिन ये जो प्रोसेस है कि इसमें से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रोजन ऑल्सो दूसरे फॉर्म में, तो ये दोनों की दोनों बहुत ही वो क्लीन है, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी हमने इस्तेमाल नहीं किए कोई केमिकल। उधर से जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो आपको मालूम ही है कि जब हाइड्रोजन इससे प्रोड्यूस कर दी, पानी डाला डिवाइस पे और आपको हाइड्रोजन मिल गई। जैसे हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स है, तो हाइड्रो डैम्स में हम क्या करते हैं, पानी रोकते हैं ऊंचाई पे, फिर पानी गिराते हैं टरबाइन्स पे, तो टरबाइन पे पानी गिरता है, तो उसको भी हम

0: बहुत अच्छा रिन्यूअल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी भी मानते हैं, बशर्ते कि आसपास में हमने वहाँ पेड़ न काटे हों लाखों करोड़ों में, जो कि जब कोई भी डैम बनता है तो ये होता है। तो अदरवाइज ये भी एक बहुत अच्छा रिन्यूअल सोर्स है, लेकिन वो लिमिटेड है, जहाँ पानी होगा और कुछ ऊंचाई आप करनी है। लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल है जिसको हम कहीं पर भी कैसे भी इस्तेमाल करेंगे, लैब में बनाते हैं अभी हम इसको इंडस्ट्री की तरफ भी ले जा रहे हैं।
1: प्रोफेसर कोटनाला, ये सबसे पहले आपको विचार कब और कैसे आया कि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल भी बनाया जा सकता है और इससे एनर्जी जनरेट की जा सकती है?
0: देखिए, हाइड्रो सेल यदि मैं इसका श्रेय दूं तो पहला श्रेय यही जाता है कि जब हमने उस पर काम कर रहे थे सोलर सेल पे, तो हम चाह रहे थे कि एक बहुत बेहतर सोलर सेल बनाएंगे, लेकिन हमें दिखाई दिया कि हम पश्चिम देशों पे, मतलब वेस्ट की तरफ से जितने उनका इक्विपमेंट थे, जितना फंड थे, उसके हिसाब से हम उतनी फैसिलिटी नहीं बना पा रहे थे। और इसके अंदर हमने कोशिश करने के बाद देखा कि ये हम इस पे नहीं कर पा रहे और सब कुछ बाहर का है, मटेरियल भी ये। तो फिर हम उस समय से बड़ी खोज में थे शुरू से, यंग एज से, कि एक ऐसा डिवाइस बनाए। तो फिर हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल तब किया शुरू जब 2001 में हमने नैनो मटेरियल्स पे काम शुरू किया, और हमने ये नैनो मटेरियल ली जो है ऑक्सीजन डिफिशियंट नैनो पोरस मैग्नीशियम फेराइट बनाया, जो पानी को बिना किसी एनर्जी के स्प्लिट करता है H+NOH में, तो आपको बिजली भी मिलती है और हाइड्रोजन भी मिलती है।
1: ये बताएं कि फिर इस पर आपने कब शोध शुरू किया और कब इसका रिजल्ट मिला?
0: शोध हमने इस पर एक्चुअल में हमने 2002 में कॉन्सेप्ट बना लिया रियलाइज करने के लिए ये होगा, और हम इस पर काम करने लग गए। तो 2002 से हम लगातार चलते रहे, और वो 2016 में हमने पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल, छोटा सा जिसमें बहुत कम करंट और वोल्टेज थी, वो हमने पब्लिश किया एक एनर्जी के जर्नल में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जर्नल है एनर्जी में। और उससे पहले ही हमने, जब ये तैयार हो चुका था हाइड्रो सेल, तो हमने क्या किया, उसके ऊपर एक इंडियन पेटेंट डाला और एक US पेटेंट डाला, दोनों हमें मिल गए और वो पेपर पब्लिश हो गया। तो हमारी जो आविष्कार थी वो दुनिया के एक्सपर्ट्स जो भी हैं उस एरिया में, उन्होंने वैलिडेट कर दिया कि नहीं, इसको आप पब्लिश कर सकते हैं। तो जब पब्लिश हो गया, हमारा आविष्कार 2016 से वो हो गया।
1: प्रोफेसर कोटनाला, ये सुनने में तो बहुत छोटा लगता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक आगे सेल भी आ रहा है, लेकिन शोध में फिर इतना समय कैसे लग गया?
0: ये बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स है जो थॉट प्रोसेस है, मतलब पानी को कैसे आप H+NOH में तोड़ेंगे, ऐसा कौन सा जादू होगा। तो इसलिए हम जब मटेरियल पे काम कर रहे थे और नैनो मटेरियल से, हमने देखा कि हम कुछ कोशिश करेंगे। किसी ने भी आज तक दुनिया में ऐसा मटेरियल नहीं खोज पाए कि जो मटेरियल पे पानी गिरे और वो H+NOH में टूट जाए। तो ये इसको करने के लिए, सोचने के लिए, फिर उसको फाइनली कैसे डिवाइस फॉर्म में करेंगे, तो हम जबकि रात दिन एक काम करते हैं, मतलब हमारा ये है कि हम लैब में 12 घंटे पिछले 25 साल से आते हैं लैब में, और रात को भी घर में जाके 2 घंटे काम करते हैं, और मंडे टू सैटरडे, तब भी आप देखिए हमें 14 साल लग ही गए उसको एक फाइनल शेप देने में, कि ये डिवाइस है, वर्केबल है ना, अब इसको कोई मना नहीं कर सकता।
1: ये बताएं कि जब ये डिवाइस आपका बन गया तो आपको कितनी संतुष्टि मिली, और आप क्या आशान्वित हैं कि भविष्य में इसके जरिए भारत में भी मास स्केल पर एनर्जी डेवलप की जा सकती है?
0: जैसे ये हाइड्रो सेल वो हुआ, तो हमें दो चीजें ध्यान में आई, एक ये आई कि हमने अपना वैज्ञानिक होने का रोल पूरा अदा किया, दूसरा हमें ये हुआ कि देश से पिछले 108 साल में कोई भी बड़ी इतनी आविष्कार नहीं बना, इतनी बड़ी रिसर्च नहीं हुई जो नोबेल प्राइज के लिए बिल्कुल रेडी है, क्योंकि इस पे नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। तो ये दो हुए कि एक तो देश की, देश ने ये कह सकता है कि देखिए हमने एक ग्रीन एनर्जी डिवाइस बनाया है हाइड्रोजन सेल, जो हाइड्रोजन भी देता है और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी भी देता है। और मुझे लगा कि वाकई मैंने जो अपनी पढ़ाई करी या एज ए वैज्ञानिक के पद पे मैं बहुत ऊपर ऊपर भी जाता रहा, वो हमने उसको एक तरह से अहम रूप दे दिया।
1: शोध एक चीज होती है और उसके बाद उसका प्रोडक्शन या उसका एक तरह से रियलिटी में आना या अमल में आना एक अलग चीज होती है। एडिसन ने बल्ब बना दिया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे फिर बाद में उसमें क्या क्या चीजें हुई, किन किन लोगों ने बल्ब उत्पादन शुरू किया, अभी तक लोग बल्ब बना रहे हैं। तो आपका जो ये उत्पाद है, बाद में इसका कमर्शियल क्या क्या उपयोग कब से हो सकता है, कब चालू हो सकता है, और उसके बाद उसके रिजल्ट कब तक आ सकते हैं?
0: जब आपने ये बात करी कि सर एडिसन ने जब बल्ब बनाया, सबको मालूम है कि इतना बड़ा बल्ब था, उसको इतनी बिजली दे के जलना होता था, टिमटिम जलता था। तो उनका एक कॉन्सेप्ट था कि हीटर हीट करेंगे वायर को और आपको बिजली मिलेगी, और वो उन्होंने किया। तो उस बिजली के साथ जो लाइट मिल रही थी, वो उसको भी डेवलप करने में कि वो कई सालों लग गए उनको, कि उसमें वो जल जाता था हीटर जल्दी, जो वायर है हीटिंग रेजिस्टेंस वायर टंगस्टन का था, तो उसको उन्होंने वो भी देखा, कई सारे अलग मटेरियल भी यूज किए थे मेटल, लेकिन फाइनली टंगस्टन में आए और ये देख लिया उन्होंने कि हाँ वाकई ये हो सकता है। तो ऐसा ही जब हमारे उसमें आपने कहा, हम इसका प्रोडक्ट के लिए ये रेडी है, क्योंकि हमने प्रोटोटाइप में 1 इंच सेल से लेके 4x4 इंच का सेल बनाया है हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल, और इसको हम ये चाह रहे हैं कि अब इसकी प्रोडक्शन नंबर्स बढ़े। तो नंबर्स बढ़ने के लिए

0: पायलट प्लांट लगाना होता है, और इसका पायलट प्लांट में कम से कम 8 से 10 करोड़ का खर्चा है। और ये जो आपका दूसरा सवाल था कि ये कहाँ का इस्तेमाल हो सकता है, ये तो एक ऐसा भगवान का, ईश्वर का वरदान है कि ये किसी भी सेल की जगह हटा दो, कोई भी सेल बात कर रहे हैं, सोलर सेल हटाओ, फ्यूल सेल हटाओ, ये सबका एक बहुत अच्छा, सटीक, बेहतर और सस्ता, आप भूल जाइए लिथियम आयन बैटरी, लेड एसिड बैटरी, जो कि हमारे लिए कैंसरस भी है, वैसी भी है, तो ये हमारा वो करने के सारे सारे गुण रखता है।
1: प्रोफेसर आर के कोटनाला, आप स्टूडियो आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका हृदय से आभार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी।
2: भारत सरकार स्वास्थ्य, खेलकूद और फिटनेस को लेकर फिट इंडिया मूवमेंट जैसी योजनाओं पर काफी ध्यान दे रही है। इन सब में विज्ञान किस तरह सहायक हो सकता है, जानकारी दे रहे हैं राष्ट्रीय विज्ञान संचार और सूचना स्रोत संस्थान निस्केयर CSIR के अनिरुद्ध तिवारी।
3: विज्ञान जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नवाचार को बल देता है, या किसी विषय के बारे में जानने और सीखने की प्रक्रिया है। विज्ञान के आविष्कारों से मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। विज्ञान का स्वास्थ्य के साथ अटूट संबंध रहा है। एक स्वस्थ व्यक्ति, एक स्वस्थ समाज, एक स्वस्थ राष्ट्र की आधारशिला होता है। स्वास्थ्य विज्ञान, जिसे हम चिकित्सा विज्ञान भी कहते हैं, ने मानव को स्वस्थ एवं सुखी जीवन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे समाज में पहला सुख निरोगी काया जैसी संकल्पना रही है। मानव के उद्भव के समय से ही स्वास्थ्य विज्ञान हमारे समाज में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहा है। प्राचीन काल में जब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का इतना विकास नहीं हो पाया था, उस समय में भी स्वास्थ्य विज्ञान ने बीमारी, महामारी एवं युद्ध के समय में लोगों के बहुमूल्य जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आचार्य सुश्रुत द्वारा रचित सुश्रुत संहिता तथा महर्षि चरक द्वारा रचित चरक संहिता भारत की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली के प्रामाणिक स्रोत माने जाते हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान अत्यंत समृद्ध है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदत्त कुछ उन्नत डायग्नोस्टिक टेस्ट के माध्यम से शरीर में पनपने वाली बीमारियों का पता पहले ही लगाया जा सकता है, जिसका समय पर इलाज करवाकर एक व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकता है। जीन एडिटिंग जैसी तकनीकों ने चिकित्सा जगत को और अधिक सशक्त किया है। इन सब के बावजूद हमें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने हमारे कार्यों को अत्यंत आसान बना दिया है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने के समय तक हम अनेक उपकरणों, साधनों, मशीनों के उपयोग पर निर्भर रहते हैं, यानी मशीनों पर हमारी निर्भरता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो हमारे स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। हमें विज्ञान द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का सम्यक एवं संतुलित प्रयोग करना चाहिए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का अधिकाधिक प्रयोग हमारी जीवन शैली को प्रभावित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य अनेक बीमारियों का शिकार बनता जा रहा है। दूर संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े संसाधन जैसे मोबाइल और इंटरनेट ने तो मानव जीवन में अपनी जगह कुछ ज्यादा ही बना ली है। टेक्नोलॉजी समर्थित ई कॉमर्स के कारण आप घर बैठे अपनी जरूरत के सामानों का ऑर्डर कर सकते हैं, और उन सामानों की डिलीवरी चंद घंटों में आपके पास हो जाती है। यदि हम गौर करें तो यह देखते हैं कि विज्ञान ने हमारे लिए सुविधाओं का अंबार तो लगा दिया है और हमारे कार्यों को भी आसान बनाया है, लेकिन उनके अधिकाधिक प्रयोग से हमने स्वयं को कमजोर बना लिया है। स्वास्थ्य के इसी संकट से उभरने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 29 अगस्त 2019 को भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस के अवसर पर फिट इंडिया मूवमेंट का शुभारंभ किया। फिट इंडिया मूवमेंट एक राष्ट्रीय लक्ष्य होना चाहिए, इसमें जन जन की भागीदारी आवश्यक है। प्रौद्योगिकी ने हमारी शारीरिक क्षमता को कमजोर बना दिया है तथा हमारे दैनिक फिटनेस रूटीन को भी प्रभावित किया है। हम अपने पारंपरिक अभ्यासों एवं जीवन शैली से अनजान बने हुए हैं, जो हमें स्वस्थ रख सकता है। बदलते समय के साथ हमारे समाज में स्वास्थ्य को कम प्राथमिकता दी जा रही है। पहले व्यक्ति साइकिल से मीलों तक चलता था, लेकिन अब चलते समय कदम की गणना मोबाइल ऐप से करने लगा है। जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां भारत में तीव्र गति से बढ़ रही हैं और इससे युवा भी प्रभावित हो रहे हैं। मधुमेह एवं उच्च रक्तचाप की संख्या निरंतर बढ़ रही है तथा भारत में छोटे बच्चों में यह समस्या आम बात हो चुकी है, लेकिन हमारी जीवन शैली में छोटे बदलाव जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों को रोक सकते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट इसी छोटे बदलाव के लिए एक प्रयास है। किसी भी व्यवसाय से जुड़ा व्यक्ति यदि स्वयं को मानसिक एवं शारीरिक रूप से फिट रखता है, तो वह अपने व्यवसाय को बेहतर ढंग से आगे बढ़ा सकता है। फिटनेस केवल एक शब्द मात्र नहीं है, यह समृद्ध जीवन का एक मुख्य स्तंभ होता है। जब हम अपने शरीर को युद्ध के लिए तैयार करते हैं, तो लोहे की भांति हम राष्ट्र को मजबूत बनाते हैं। फिटनेस हमारी ऐतिहासिक विरासत का एक अभिन्न अंग है। एक स्वस्थ व्यक्ति, एक स्वस्थ परिवार तथा एक स्वस्थ समाज न्यू इंडिया को फिट इंडिया बनाने के लिए आवश्यक है।
4: इसी के साथ धरती आकाश का ये अंक यही संपन्न होता है। वाचन स्वर निशा भारद्वाज और प्रस्तुत करता थे दिलीप झा।

हुनर भी शिकाने इन फिल्म इबारतन धर्मेंद्र तरला मेहता अमी भट्टाचार्य लीला मिश्रा व विजय लक्ष्मी।

0: बात हमारी, जाते हो जाओ गिरधारी, मैं तड़पू सौतन सुख भोगे, ये है छलिया रीत तुम्हारी।
1: राधे
0: जाओ मन के चोर छलिया नंद किशोर।

जन्म बास घर भयो हमारो, काट हमें कोई लायो। टुकड़े टुकड़े करके मोहे, अंग अगन झुलसायो। आठ छेद मोरे तन कीन हो, निठुर प्राण मेरो हर लीन। तन नहीं मेरो, मन नहीं मेरो, और सखी नहीं जीवन मेरो।

0: मैं समझ गई, प्रेम अपने आप को खोकर ही मिलता है।
1: राधे, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हुए। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि संसार में लोग हमारा नाम कभी अकेले नहीं लेंगे, तुम्हारा नाम हमारे साथ लेंगे, और तुम्हें ये भी वरदान देते हैं कि तुम्हारा नाम हमसे भी पहले लेंगे। राधे, बोलो ना राधे, बोलो ना।

Uma. وجعلنا من الماء كل شيء حي.

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का

0: आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लेटिन अमरीकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्योग जगत के अग्रणी और बड़े निवेशक भी आयोजन में हिस्सा लेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोजना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए सत्र आयोजित होंगे। आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए लिंगमनेनी रमेश को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी के आधिकारिक बयान में यह घोषणा की गई। लिंगमनेनी रमेश आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
1: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
2: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: भारत अमेरिका सेना ने अधिकारियों की वार्ता का 29वां चरण हवाई में आयोजित किया गया। इसकी सह अध्यक्षता सेना प्रमुख रणनीति लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और अमेरिकी सेना के उप कमान जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल वेवन ने की। चर्चा में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने, अंतर संचालनीयता बढ़ाने, पेशेवर आदान प्रदान का विस्तार करने और साझा सुरक्षा हितों के समर्थन में सैन्य सहयोग को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों देशों ने सहभागिता के बढ़ते दायरे की सराहना की और भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा या दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। स्थानीय नागरिकों और व्यवसाय करने वाले या छात्र परमिट धारक विदेशी नागरिकों को देश में प्रवेश की अनुमति होगी। हालांकि यदि उन्होंने पिछले 3 हफ्तों में इन देशों में से किसी का भी दौरा किया है तो उन्हें 21 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भोजनावकाश तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 96 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से राजस्थान के ऑलराउंडर मानव सुथार टेस्ट क्रिकेट में पहली बार खेल रहे हैं। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The Reserve Bank of India has simplified the rules governing investments by foreign portfolio investors or FPIs in government securities. Under the revised framework, FPIs investing through the general route will get greater flexibility as certain investment restrictions have been removed. The RBI has also merged the existing general and long-term investment categories into a single limit for government securities and state government securities. The revised framework is aimed at making investments easier and reducing compliance requirements for foreign investors. The revised directions have come into effect immediately. Central Board of Secondary Education or CBSE has extended the last date for submission of applications for verification of marks and re-evaluation till tomorrow. In a social media post, the board said, students can now submit their applications till Sunday midnight. CBSE said that the decision has been taken in the interest of students to provide them with additional time to complete the application process. The earlier deadline for submission of applications was 6th of this month. Delhi police has arrested a hotel cook named Keshav Negi in connection with the Malviya Nagar fire incident. The fire broke out at a hotel in Malviya Nagar on the 3rd of this month and claimed the lives of 21 people while injuring 40 others. Earlier, the police had also arrested the hotel owner under charges of culpable homicide and other relevant sections. The police stated that further interrogation and investigation is underway. The 29th edition of the India-US Army to Army Staff Talks was held in Hawaii, co-chaired by Lieutenant General Rajiv Ghai, Deputy Chief of the Army Staff Strategy and Lieutenant General Joel Vowell, and Deputy Commanding General of the U.S. Army Pacific. The discussions focused on strengthening bilateral defense cooperation, enhancing interoperability, expanding professional exchanges, and deepening military collaboration in support of shared security interests. Mauritius has imposed a temporary entry ban on foreign nationals who have traveled to, transited through, or stayed in Congo, Uganda, or South Sudan over the past 21 days following the latest outbreak of the Ebola virus. Mauritian citizens and foreign residents holding valid work, residence, occupation, business, or student permits will still be allowed to enter the country, but will be subject to a mandatory 21-day quarantine if they have visited any of the three countries within the previous 3 weeks. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today congratulated the newly appointed Foreign Minister of Slovenia, Tone Kaiser, and expressed his desire to work together. Tone Kaiser, a former diplomat with more than 30 years of experience, was officially sworn in under the newly endorsed right-wing coalition led by Prime Minister Janez Janša in Slovenia. In Andhra Pradesh, Jan Sena Party President Pavan Kalyan has announced Lingamaneni Ramesh as the party's candidate for the upcoming Rajya Sabha election. The announcement was made through an official statement issued by the party. L. Ramesh is scheduled to file his nomination papers today. According to party, Ramesh has been associated with Jan Sena and its leadership since 2015. India Meteorological Department or IMD has issued a red alert for very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Keralam and Mahi today. Heavy to very heavy rainfall conditions are also expected over parts of northeast India, Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal for the day. Similar conditions have been predicted over sub-Himalayan West Bengal, Telangana, Konkan, Goa, Madhya Maharashtra, Rayalaseema, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. The weather agency predicted thunderstorm accompanied by lightning and gusty winds over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Uttarakhand, East Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Jharkhand and Jammu and Kashmir today. Indian wicketkeeper and batter K.S. Bharat has announced his retirement from international cricket. He represented India at test level on 7 occasions, with his last appearance coming against England at Vishakhapatnam in February 2024. India will face Bangladesh in the final of the SAF Football Women's Championship at Madgaon in Goa today. The match will be held at 6:30 p.m. onwards. And in hockey, India will face host Japan in the final of the Men's Under-18 Asia Cup 2026 in Japan today. The match will start at 3:30 p.m. IST. Earlier, India beat its arch rival Pakistan 5-3 in the second semi-final in a high-scoring contest. And that is the end of this news bulletin.

0: 당근. घर आंगन कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा यानी प्रतिभा का
1: और मेरा यानी दीपा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होना, स्वयं पर विश्वास करना। स्वामी विवेकानंद द्वारा कहे गए इस विचार का तात्पर्य है कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मविश्वास और उसकी सच्ची पहचान होती है।
0: और जब हम अपने मूल्यों और स्वभाव के प्रति ईमानदार रहते हैं, तब सफलता और संतोष दोनों हमारे जीवन में आते हैं।
1: बिल्कुल
0: जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है घर आंगन और आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल यानी 100.1 MHz पर, और हमारे इंद्रप्रस्थ चैनल के लिसनर्स हमें सुन रहे हैं 366.3 मीटर यानी 819 KHz पर।
1: और प्रतिभा, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, पर सबसे पहले अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं ये मधुर गीत।

0: दोस्तों, अभी आपने गीत सुना मन गाए वो तराना। फिल्म थी चालाक और गायिका थी लता मंगेशकर।
1: और दीपा देखो, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई जी की जन्मतिथि है। वे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्र भारत में असम प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे और इन्होंने प्रगतिशील औद्योगिक और शैक्षिक नीतियां लागू की और गुवाहाटी विश्वविद्यालय सहित कई विश्वविद्यालयों की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा।
0: और असम के राज्यपाल श्री जय राम दास दौलतराम ने उन्हें लोकप्रिय की उपाधि से सम्मानित किया था। गोपीनाथ बोरदोलोई जी को मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। भारत रत्न लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई जी को उनकी जन्म तिथि पर सादर नमन। और प्रतिभा, हमने अभी असम की बात करी और आज मैं अपने दोस्तों को कुछ खास बताना चाह रही हूँ मेखला चादर साड़ी के बारे में।
1: अच्छा
0: दोस्तों, आज मैं आपको असम की खूबसूरत पारंपरिक वेशभूषा मेखला चादर के बारे में बताना चाहूँगी। ये केवल एक परिधान नहीं बल्कि असम की संस्कृति, कला और विरासत की पहचान है। सदियों से ये असम की महिलाओं द्वारा त्योहारों, विवाह समारोहों और अन्य विशेष अवसरों पर पहनी जाती रही है।
1: बिल्कुल दीपा, देखो असम का नाम आते ही चाय के बागान, बीहू और मेखला चादर की छवि मन में उभर आती है और इसकी सुंदरता और गरिमा वास्तव में मन मोह लेती है।
0: बिल्कुल सही कहा प्रतिभा। और इसकी खास बात ये भी है कि ये सामान्य रूप से साड़ी जो है कुछ अलग होती है। ये दो भागों से मिलकर बनी होती है, नीचे का भाग मेखला और ऊपर ओढ़ा जाने वाला भाग चादर कहलाता है।
1: यानी साड़ी जैसी दिखने के बावजूद इसकी जो अपनी एक अलग पहचान और शैली है और यही इसकी विशेषता है। और इसको जो महिलाएं पहनती हैं, ये वेशभूषा उनको एक साथ पारंपरिक सौम्य और आकर्षक रूप प्रदान करती है।
0: हाँ, और मेखला चादर मुख्य रूप से सिल्क जैसे मूंगा, पाट, एरी के साथ साथ कॉटन कपड़ों से भी बनाई जाती है। असम का सुवाल कुची क्षेत्र अपनी उत्कृष्ट रेशम बुनाई के लिए प्रसिद्ध है।
1: बिल्कुल, और देखो एक परिधान के पीछे इतनी समृद्ध कला और परंपरा जुड़े होना अपने आप में अद्भुत है। और इसकी पहचान भी जो है, वो जो शैली है वो इतनी रोचक है। श्रोताओं, मेखला को कमर पर लपेटकर सुंदर प्लीट्स बनाई जाती हैं, फिर चादर को ब्लाउज के ऊपर कंधे पर बड़े ही सलीके से ओढ़ा जाता है।
0: और तभी तो ये परिधान अपनी सादगी और शालीनता के लिए विशेष रूप से पसंद किया जाता है। इसलिए मेखला चादर असम की सांस्कृतिक विरासत, महिलाओं की गरिमा और पारंपरिक शिल्प कला का जीवंत प्रतीक है। और प्रतिभा, तुमने थोड़ी देर पहले असम चाय के बागानों की बात की थी, तो क्यों ना अपने दोस्तों को ये प्यारा सा गीत सुनवाए।

0: लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने ये प्यारा सा गीत सुना, फिल्म थी बरसात की एक रात।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: श्रोताओं, आकाशवाणी हमेशा से ही हमारा साथी रहा है और पिछले कई वर्षों से 90 वर्षों से सतत हमारा साथ निभा रहा है। इसके विकास की यात्रा 90 वर्ष लंबी है।
2: और श्रोताओं, आज़ादी के समय से ऑल इंडिया रेडियो का नेटवर्क मात्र 6 केंद्रों और 18 ट्रांसमीटरों तक ही सीमित था। वर्तमान में आकाशवाणी 231 केंद्रों, 303 चैनलों और 755 ट्रांसमीटरों के विशाल नेटवर्क के साथ देश का सबसे बड़ा प्रसारक है।
0: ये नेटवर्क आज देश के लगभग 92% भौगोलिक क्षेत्र और 98% से अधिक आबादी तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करता है। विविधता को समेटते हुए आकाशवाणी द्वारा देश की 23 भाषाओं और 189 बोलियों में सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।
2: आधुनिक दौर में DTH, न्यूज ऑन एयर ऐप और वेव्स OTT जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से इसकी पहुंच युवाओं तक भी मजबूत हुई है।
0: श्रोताओं, आकाशवाणी का साथ ऐसे ही हमारे साथ बना रहेगा और आकाशवाणी यूं ही गीत संगीत मनोरंजन स्वास्थ्य जानकारियों को हम तक निरंतर पहुंचाता रहेगा।

0: तू जो मेरे सुर में, ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म थी चित्चोर, गायक कलाकार थे हेमलता यशोदास।
1: दीपा, देखो गर्मी की छुट्टियों में घूमने फिरने और अपने प्रियजनों से मिलने का उत्साह हर किसी में दिखाई देता है
0: बिल्कुल,
1: ना?
0: ये तो सही कहा।
1: और ऐसे में भारतीय रेल लाखों यात्रियों की पहली पसंद बन जाती है।
0: बिल्कुल प्रतिभा, और अब यात्रा को और आसान बनाने के लिए भारतीय रेलवे का रेल वन सुपर ऐप यात्रियों के लिए एक ही स्थान पर टिकट, PNR स्टेटस, ट्रेन की लाइव जानकारी, कोच पोजीशन, भोजन ऑर्डर और कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराता है।
1: बिल्कुल, यानी कि यात्रा से जुड़ी लगभग सभी सेवाएं एक ही ऐप में मिल जाती हैं, और ये देखो कितना सुविधाजनक भी है ना?
0: बिल्कुल प्रतिभा, और इसके साथ ही इसमें रेल मदद सुविधा भी शामिल है। यदि यात्रा के दौरान सफाई, पानी, सीट, सुरक्षा, चिकित्सा सहायता या किसी अन्य समस्या का सामना हो तो यात्री तुरंत शिकायत दर्ज करके उसकी प्रगति भी देख सकते हैं। रेल मदद की ऑनलाइन सेवा www.railmadad.indianrailways.gov.in पर भी उपलब्ध है।
1: और दोस्तों, यदि किसी का सामान ट्रेन में छूट जाए तो ऐसी स्थिति में रेल मदद या रेलवे हेल्पलाइन 139 के माध्यम से सूचना दी जा सकती है। और साथ ही रेलवे का ऑपरेशन अमानत अभियान भी यात्रियों के छूटे सामान को उनके वास्तविक स्वामी तक पहुंचाने का प्रयास करता है।
0: और ये जानकारी निश्चित रूप से यात्रियों के लिए बहुत उपयोगी है प्रतिभा। और लेकिन लंबी यात्रा में मनोरंजन भी तो ज़रूरी
1: बिल्कुल,
0: है ना? तो
1: हाँ
0: रेल वन ऐप में प्रसार भारती का ओवर द टॉप OTT डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसके माध्यम से यात्री यात्रा के दौरान रेडियो, टीवी चैनल, समाचार और मनोरंजन कार्यक्रमों का भी आनंद ले सकते हैं।
1: यानी रेल वन केवल यात्रा की जानकारी ही नहीं बल्कि सफर को और भी आनंददायक बनाने में मदद करता है ना? और
0: बिल्कुल
1: देखो,
0: बिल्कुल।
1: जो रेल वन ऐप है उसको हम अपने मोबाइल में प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। और सही जानकारी और सेवाओं के लिए हमेशा हम श्रोताओं से यही कहेंगे कि भारतीय रेलवे की आधिकारिक जो साइट है, जो प्लेटफॉर्म है, उसी का ही उपयोग करें।
0: ये तुमने बहुत अच्छी बात बताई प्रतिभा। तो साथियों, अगली रेल यात्रा से पहले अपने मोबाइल में रेल वन सुपर ऐप अवश्य डाउनलोड करें और रेल वन तथा रेल मदद की सुविधाओं का लाभ उठाकर अपनी यात्रा को सुरक्षित, सुविधाजनक और आनंददायक बनाएं।

0: और श्रोताओं, अभी आपने ये प्यारा सा गीत सुना, फिल्म थी दोस्त और आवाज़ थी किशोर कुमार की।
1: दोस्तों, हमारा घर आंगन कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, इसके बारे में अपने विचार, प्रतिक्रियाएं, सुझाव हमें अवश्य लिखें। आप हमें ईमेल कर सकते हैं और इसके लिए हमारी ईमेल आईडी है, आप नोट कर लें, fmgoldga@gmail.com।
0: जी हाँ, fmgoldga@gmail.com। दीपा, देखो, योग जीवन जीने की कला है और योग
1: बिल्कुल
0: का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना, जो हमें सिखाता है तन मन और आत्मा से जुड़ना, यानी ऐसी चीज के साथ जुड़ना जिसे आप जानना चाहते हैं। उसके लिए उस पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होती है, जो हमें सिर्फ और सिर्फ योग सिखाता है।
1: और योग दोस्तों हमें ये भी सिखाता है कि हर काम को एकाग्रता, निष्ठा और पूर्ण समर्पण से किया जाए, ताकि हर प्रयास सार्थक बने और जीवन में संतुलन और सफलता आए।
0: योग शारीरिक व्यायाम या ध्यान का माध्यम ही नहीं, बल्कि कर्मों में कुशलता लाने का साधन भी है, यानी योगः कर्मसु कौशलम्।
1: जब व्यक्ति अपनी कर्मेंद्रियों तथा अपनी ज्ञानेंद्रियों को साथ लेता है, वही असली योग कहलाता है। यानी सफलता, असफलता, लाभ, हानि, सुख दुख में जब व्यक्ति मन को स्थिर रखना और सम रखना सीख जाता है, तो वो सच्ची योग साधना होती है।
0: बिल्कुल ठीक कहा दीपा आपने। देखो, योग केवल आसन या प्राणायाम तक ही सीमित नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं और आप काम को कैसे कर रहे हैं, उस काम की कुशलता भी योगिक क्रिया है।
1: तो योग धारणा धारण के द्वारा हम अपनी जीवन को सफल बना सकते हैं, जो योग द्वारा ही हम सभी जानते हैं संभव है, क्योंकि आजकल योग हम सभी करते हैं और क्योंकि योग विचार, कर्म, ध्यान की सिद्धि का मार्ग है। क्यों
0: बिल्कुल
1: प्रतिभा, मैंने
0: बिल्कुल,
1: सही कहा
0: हाँ
1: ना? तो
0: बिल्कुल
1: क्यों ना योग को अपनाकर जीवन को एक नई दिशा दी जाए।

0: हमको मन की शक्ति देना, ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म थी गुड्डी और गायिका थी वाणी जयराम।
1: और देखो दीपा, प्राकृतिक संसाधन हमेशा से मानव सभ्यता का कल्याण करते आए हैं, लेकिन विकास के क्रम में हम इन संसाधनों को कहीं भूल रहे थे, क्यों, है ना? और आज तकनीक और विज्ञान ने प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को पहचान कर उन्हें एक नया और कारगर नज़रिया दिया है, और इन संसाधनों का उपयोग कर रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश भी की है।
0: बिल्कुल प्रतिभा, और जिसमें सौर ऊर्जा का इस्तेमाल विशेष है। आज सौर ऊर्जा बिजली आपूर्ति का बेहतर विकल्प है, साथ ही साथ सौर ऊर्जा पूर्ण रूप से प्राकृतिक भी है, तो क्यों ना हम आज बात करें सोलर इन्वर्टर की।
1: बिल्कुल, तो सबसे पहले जानते हैं कि सोलर इन्वर्टर क्या होता है। श्रोताओं, सोलर इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो सोलर पैनल से प्राप्त डीसी यानी डायरेक्ट करंट को एसी यानी अल्टरनेटिव करंट में परिवर्तित करता है।
0: और अल्टरनेटिव करंट का उपयोग घरों, कार्यालयों और उद्योगों में किया जाता है। और अगर आप अपने घरों में सोलर पैनल लगवाते हैं तो इन्वर्टर के बिना सोलर पैनल से प्राप्त ऊर्जा आपके उपकरणों को चलाने में सक्षम नहीं होगी, यानी सोलर पैनल के साथ सोलर इन्वर्टर का होना बहुत ज़रूरी है।
1: बिल्कुल, और सोलर इन्वर्टर सौर ऊर्जा को रोज़मर्रा की ज़रूरत के लिए उपयोगी भी बनाता है। आज मार्केट में सोलर इन्वर्टर के कई प्रकार उपलब्ध हैं। आप अपनी ज़रूरत और इनकी कार्यक्षमता के अनुसार सोलर इन्वर्टर का चुनाव कर सकते हैं।
0: और अब बात सोलर इन्वर्टर के फायदों की भी करें। इससे बिजली बिल में कमी होती है, क्योंकि दिन के समय सीधे सोलर पैनल से आपके घर के उपकरण चलते हैं। सोलर पैनल सूरज की रोशनी से बैटरी को धीरे धीरे और बेहतर तरीके से चार्ज करता है, जिससे बैटरी की लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल ठीक कहा। और देखो दीपा, अगर सोलर इन्वर्टर ग्रिड टाई या हाइब्रिड मोड के हैं तो पैनल द्वारा बनाई गई अतिरिक्त बिजली को नेट मीटर के जरिए ग्रिड में भेज सकते हैं, जिससे बिजली बिल और भी ज़्यादा कम हो जाता है।
0: और दोस्तों, सबसे खास बात ये है कि सौर ऊर्जा उपयोग करने से कार्बन का उत्सर्जन कम होता है और आप पर्यावरण को हरा भरा रखने में योगदान दे सकते हैं।
1: इसमें जो बैटरी सोलर और ग्रिड के बीच तालमेल बिठाने के लिए काफ़ी उन्नत तकनीक होती है, और धूप कम होने पर भी ये अपने आप ग्रिड या बैटरी से पावर ले लेता है, जिससे हमें बिजली की निर्बाध आपूर्ति मिलती है। तो देखा प्राकृतिक ऊर्जा कितने काम की है।
0: बहुत काम की है। और इतने सारे फायदे जानने के बाद प्रतिभा, मुझे लग रहा है कि सोलर इन्वर्टर लगवाने का प्लान करना चाहिए।
1: बिल्कुल।

0: अभी तो जी ले। अभी आपने इस फिल्म से ये गीत सुना, आवाज़ थी किशोर कुमार और आशा भोसले की।
1: प्रतिभा, देखा जाए तो आजकल मौसम भी बड़ा दिलचस्प हो गया है। कभी धूप, कभी उमस, कभी आंधी तूफान और कभी बारिश, जो मौसम को और सुहावना बना देते हैं।
0: बिल्कुल दीपा, इसलिए आज हम लेकर आए हैं एकदम कूल, हेल्दी और रिफ्रेशिंग समर ड्रिंक, जिसका नाम है कैरी कोकोनट पन्ना। कच्चे आम की खटास और नारियल की मिठास, है ना? क्या बात है
1: क्या
0: ना।
1: बात है। और इसके लिए दोस्तों आपको चाहिए जो सामग्री, मैं आपको बताना चाहूंगी। कच्ची कैरी लगभग 200 ग्राम कटी हुई, आधा मध्यम आकार का नारियल कटा हुआ, आधा इंच अदरक, एक छोटी हरी मिर्च, 7 से 8 करी पत्ते, 1/4 कप धनिया कटा हुआ, 5 से 6 कप पानी, स्वादानुसार नमक या काला नमक और स्वादानुसार गुड़ या चीनी।
0: तो अब इसे बनाने के लिए सबसे पहले कैरी को पानी के साथ कुकर में 3-4 सीटी लगाकर उबाल लें और ठंडा होने पर इसका पल्प निकाल लें, और जो उबला हुआ पानी है उसे भी संभाल कर रखें।
1: बिल्कुल, ये सही बताया प्रतिभा। और अब कैरी के पल्प को 1 कप पानी, नारियल, अदरक, हरी मिर्च, करी पत्ते, हरा धनिया और थोड़ा पानी डालकर मिक्सर में ब्लेंड कर लें। ब्लेंड होने के बाद इसे छलनी से छान लें।
0: और अब जो मिश्रण है इसे छान कर जो निकाल लिया, उसमें नमक या काला नमक अपनी पसंद और ज़रूरत के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। जो उबला हुआ पानी संभाल कर रखा था उसे भी आवश्यकता अनुसार इसमें मिला लें। अब इसमें गुड़ या चीनी मिला दें। अगर आपको तुरंत ठंडा ठंडा सर्व करना है तो इसमें आप क्रश आइस भी डाल सकते हैं।
1: और अगर छानने के बाद दोस्तों नारियल के छोटे छोटे टुकड़े रह जाएं तो बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। वही बीच बीच में इस कूल ड्रिंक को हल्का सा क्रंची टेस्ट देंगे, जो इसका मज़ा और भी बढ़ा देता है।
0: और अपनी पसंद के हिसाब से इसे थोड़ा गाढ़ा या पतला भी किया जा सकता है।
1: अब इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, फिर ठंडे ठंडे गिलास में सर्व करें।
0: तो दोस्तों, इस गर्मी आप भी घर पर बनाइए कैरी कोकोनट पन्ना और अपने परिवार के साथ लीजिए इसका भरपूर आनंद।

0: ए बाबू ले लो नारियल पानी, ये फिल्म अपना देश से आपने भी सुना, गायिका थी लता मंगेशकर।
1: और दीपा जी देखिए, हम सभी जानते हैं और मान भी रहे हैं कि प्लास्टिक हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए कितना बड़ा खतरा है। तो क्या प्लास्टिक मुक्त जीवन जीना संभव है? शायद इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है।
0: बिल्कुल सही कहा प्रतिभा। सोचिए हम रोजाना कितनी प्लास्टिक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, पॉलीथिन बैग, पानी की बोतलें, स्ट्रॉ, डिस्पोजेबल कूप और प्लेटें। उपयोग के बाद इनमें से अधिकांश कूड़े के ढेर नालियों, नदियों और समुद्र तक पहुंच जाती हैं, जहां ये नष्ट नहीं होती।
1: बिल्कुल, एक सकारात्मक और दृढ़ कोशिश से मतलब बदलाव लाए जा सकते हैं। तो जब आप घर से बाहर निकलें तो सूती या जूट के जो है थैले लेकर निकलें। पानी के लिए आप प्लास्टिक की बोतल के बदले में स्टील की बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बेहतर भी होंगे। और साथ ही साथ दीपा देखो, रसोई में प्लास्टिक के डिब्बे हटाकर कांच या स्टील के डिब्बों का उपयोग भी किया जा सकता है। और सबसे ज़रूरी कि जब हम बाहर से खाना मंगाते हैं तो नो कटलरी नो प्लास्टिक प्लेट्स का विकल्प चुन सकते हैं।
0: और आज जगह जगह ऐसे स्टोर्स स्थापित किए जा सकते हैं जहां आप शैम्पूज, बॉडी वॉश, किचन क्लीनर, दालें आदि को रिफिल करवा सकें, जिससे बहुत हद तक प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम किया जा सके।
1: और दीपा देखो, अपने श्रोताओं को बता दें कि इस दिशा में मदर डेयरी द्वारा एक सकारात्मक पहल की गई है। कंपनी ने कहा है कि अब वह दूध की पैकिंग पॉली पाउच के बजाय नेचुरली डिग्रेडेबल पाउच में करेंगे।
0: कंपनी ने यह भी कहा है कि इस पाउच से दूध निकलने के बाद यदि इसे फेंक दिया जाए तो 2 से 3 साल में ये खुद गलकर मिट्टी में मिल जाएगा। श्रोताओं आपको ये बता दें कि 5 जून 2026 से दिल्ली एनसीआर में पर्यावरण के प्रति सुरक्षित पॉली पाउच में दूध की पैकिंग की शुरुआत हो चुकी है।
1: बिल्कुल, देखो श्रोताओं, प्लास्टिक मुक्त जीवन का अर्थ केवल प्लास्टिक का विरोध करना नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी के साथ इनका उपयोग करना और जहां तक संभव हो इसको बेहतर बनाने की कोशिश भी की
0: बिल्कुल
1: करनी चाहिए। छोटे छोटे बदलाव और हम अपने खुद में कुछ परिवर्तन ला के अपने पर्यावरण को और अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज स्लोवेनिया के नवनियुक्त विदेश मंत्री टॉन काजर को बधाई दी और उनके साथ मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की। पूर्व राजनयिक टॉन काजर ने स्लोवेनिया में प्रधानमंत्री जिनेश जानशा के नेतृत्व वाली नवगठित दक्षिणपंथी गठबंधन सरकार में आधिकारिक तौर पर शपथ ली। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई थी और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्योग जगत के अग्रणी और बड़े निवेशक भी आयोजन का हिस्सा होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोजना है। भारत अमेरिका सेना के अधिकारियों की वार्ता को 29वां चरण हवाई में आयोजित किया गया। इसकी सह अध्यक्षता सेना प्रमुख रणनीतिक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और अमेरिकी सेना के उप कमान जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल वोवेल ने की। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल में आज भारतीय आम के प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 100 से अधिक प्रमुख भारतीय फल आयातकों ने हिस्सा लिया। इसमें महाराष्ट्र के अल्फांसो और केसर, आंध्र प्रदेश के बंगनपल्ली और हिमायत, उत्तर प्रदेश के लंगड़ा, दशहरी और गुजरात के पके राजपुरी आम शामिल हैं। अमरीका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों की का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही पूरा नहीं करता कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने पिछले वर्ष जुलाई में सिएटल में भारतीय आम की शुरुआत की थी। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, आप सबके मेल्स हम तक पहुंच चुके हैं। आप सब ने बिल्कुल सही गेस किया है। तो इस फिल्म का नाम है साहिब बीबी और गुलाम। जी हाँ, साहिब बीबी और गुलाम 1962 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की एक बेहद प्रतिष्ठित और सदाबहार क्लासिकल हिंदी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन अबरार अलवी ने किया है और निर्माण एवं सह निर्देशन गुरुदत्त ने किया था। इसके साथ साथ गुरुदत्त ने इस फिल्म में अभिनय भी किया है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार मीना कुमारी छोटी बहू के रूप में है, गुरुदत्त भूतनाथ के रूप में है, रहमान छोटे बाबू के रूप में है और वहीदा रहमान जवा के किरदार में शामिल हैं।

श्रोताओं, ये फिल्म साहेब बीबी और गुलाम बॉलीवुड के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई और इसे गुरुदत्त के करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक मानी जाती है। ये फिल्म 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश राज के दौरान बंगाल के सामंतवाद और जमींदारों के पतन को दर्शाती है। ये फिल्म बिमल मिश्रा के मशहूर बंगाली उपन्यास साहेब बीबी गुलाम पर आधारित है। श्रोताओं, आपको बता दें, ये फिल्म 29 जुलाई 1962 में रिलीज हुई। हालांकि ये व्यावसायिक रूप से उतनी ज़्यादा सफल नहीं रही। इस फिल्म ने कुल 84 लाख की कमाई की, फिर भी समीक्षकों ने इसकी सराहना की। कलाकारों के अभिनय, विशेष रूप से मीना कुमारी के अभिनय और वी के मूर्ति के छायांकन की सबसे अधिक प्रशंसा हुई।

श्रोताओं, साहिब बीबी और गुलाम फिल्म का संगीत हेमंत कुमार ने दिया था और गीत शकील बदायूनी ने लिखे थे। फिल्म के कुछ बेहद लोकप्रिय गाने आज भी चाव से सुने जाते हैं। श्रोताओं, इस फिल्म ने कुल 4 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते, जिसमें एक सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए, अबरार अलवी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का, मीना कुमारी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का और वी के मूर्ति को सर्वश्रेष्ठ छायाकार का पुरस्कार मिला।

श्रोताओं, बात करें इस फिल्म की कहानी की तो ग्रामीण पृष्ठभूमि का एक सीधा साधा युवक भूतनाथ काम की तलाश में कलकत्ता आता है और एक बड़ी हवेली में रहने लगता है। वह छोटी बाबू की खूबसूरत लेकिन बेहद अकेली पत्नी छोटी बहू के संपर्क में आता है। छोटे बाबू को शराब पीने और वेश्याओं के कोठे पर जाने की लत होती है, जिससे परेशान होकर छोटी बहू उन्हें घर पर रोकने की हर संभव कोशिश करती है। अपने पति का प्यार पाने और उन्हें रोकने के लिए छोटी बहू भी शराब पीना शुरू कर देती है और धीरे धीरे इसकी आदी हो जाती है। भूतनाथ और छोटी बहू के बीच एक पवित्र और निस्वार्थ रिश्ता पनपता है, जहां भूतनाथ उसका शुभचिंतक या फिर यूं कहें गुलाब बन जाता है। अंततः यह कहानी इस पूरे परिवार और साम्राज्य के दुखद अंत की ओर लिए चलती है।

श्रोताओं, फिल्म कागज के फूल के बाद गुरुदत्त ने यह फैसला लिया था कि वो कभी किसी फिल्म का निर्देशन नहीं करेंगे और यही वजह थी कि साहेब बेबी और गुलाम फिल्म के निर्देशक उनके लेखक दोस्त अबरार अलवी ने किया था। साथ ही वहीदा रहमान इस फिल्म में मीना कुमारी का किरदार यानी छोटी बहू की भूमिका निभाना चाहती थी, पर उनकी कम उम्र को देखते हुए गुरुदत्त ने मना कर दिया था। श्रोताओं, फिर वहीदा रहमान ने अबरार अलवी से कहकर अपने लिए इस फिल्म में रोल लिखवाया और फिल्म का हिस्सा बनी।

0: इस अंतिम गीत के साथ ही संपन्न होता है कार्यक्रम। श्रोताओं, आशा करती हूँ आपको फिल्म से जुड़ी जानकारियाँ पसंद आई होगी। अब अपनी होस्ट और दोस्त रिया प्रकाश को दीजिए अनुमति।
1: नमस्कार,

0: अब मैं किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
1: भारत सरदस्त आम की पैदावार करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जहां 2,60,00,000 मेट्रिक टन सालाना आम की पैदावार होती है और 1,000 से ज्यादा आम की अकसाम पाई जाती हैं। चिराग झा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
2: सकाफत और सैर सियाहत के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि गुज़िश्ता 12 साल के दौरान भारत की शमसी बिजली तैयार करने की सलाहियत 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ क्रिकेट मैचों के लिए 16 रुकनी T20 टीम का ऐलान किया है। श्रियास अय्यर को T20 टीम का कप्तान बनाया गया है। इससे पहले सूर्य कुमार यादव कप्तान थे। तिलक वर्मा टीम के नायब कप्तान होंगे। नौजवान खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को पहली मर्तबा टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में मर्दों के 18 साल से कम उम्र के एशिया कप 2026 के फाइनल मुकाबले में आज भारत का मुकाबला मेजबान जापान से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक 3:30 पर खेला जाएगा। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरमायाकारी में इजाफे की खातिर सरकारी तमस्सुकात में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए जाब्तों को सहल बनाया है। वजीर खारजा और डॉक्टर एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। CBSE ने नंबरों की तस्दीक और पेपर की दोबारा जांच के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख में कल तक तौसी की है। पंजाब में आसुफ फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक गाड़ी और ट्रक के दरमियान टक्कर के बाद कम से कम 9 अफराद हलाक हुए हैं। IMD ने कल तक केरलम और माही में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और क्रिकेट में श्रियास अय्यर को भारतीय T20 टीम का कप्तान बनाया गया है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
3: Good afternoon. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the midday news. The headlines. Reserve Bank of India simplifies rules for foreign portfolio investors in government securities to make investment in India easier. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to hold talks with Nepal Foreign Affairs Minister Shishir Khanal in New Delhi this evening. CBSE extends last date for submission of applications for verification of marks and re-evaluation till tomorrow. In Punjab, at least 9 people killed after a vehicle collides with a truck on Firozpur Fazilka Road this morning. IMD issues red alert for very heavy rainfall over Keralam and Mahi till tomorrow. And in cricket, Shreyas Iyer replaces Surya Kumar Yadav as India's new T20 international captain. Vaibhav Suryavanshi included in squad for first time. And now the news in detail. The Reserve Bank of India has simplified the rules governing investments by foreign portfolio investors or FPIs in government securities. The revised framework is aimed at making investments easier and reducing compliance requirements for foreign investors. More from our correspondent.
4: Under the revised framework, FPIs investing through the general route will get greater flexibility as certain investment restrictions have been removed. The RBI has also merged the existing general and long-term investment categories into a single limit for government securities and state government securities. For financial year 26-27, the investment limit for central government securities has been fixed at 4,62,490 crore for the first half of the year and 4,77,006 crore for the second half. For state government securities, the corresponding limits have been set at 1,53,043 crore and 1,64,242 crore respectively. The revised directions have come into effect immediately. Ankita Apte, Akashvani News, Mumbai.
3: External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will hold talks with Nepal Foreign Affairs Minister Shishir Khanal in New Delhi this evening. The Foreign Affairs Ministry of Nepal said that during the meeting, both sides will discuss matters of mutual interest with a view to enhancing cooperation across key sectors, including trade, investment, connectivity, energy, and people-to-people ties. Meanwhile, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the visit will further strengthen the special partnership between India and Nepal.
5: With Nepal, we have an expansive agenda from the development.

0: the Asian Games in Japan, as well as India A's tour of Sri Lanka multi-day games at the BCCI headquarters in Mumbai today. India will face Bangladesh in the final of the SAF Football Women's Championship at Madgaon, Goa today. The match will be held at 6:30 p.m. Earlier, India secured its place in the final by defeating Bhutan 1-0 in the semi-finals. India has won this title 5 times so far. In hockey, India will face host Japan in the final of the Men's Under-18 Asia Cup 2026 in Kakamigahara in Japan today. The match will start at 3:30 p.m. IST. Earlier, India beat its arch rival Pakistan 5-3 in the second semi-final in a high-scoring contest. An Indian benchmark indices extended their losing streak into the second consecutive week, weighed down by persistent global headwinds. The Reserve Bank of India's supportive liquidity measures and currency stability initiatives provided some support to market sentiment, but a downward revision in growth projections dampened investor confidence. During the week, the 30 share Sensex at BSE lost 533 points to close at 74,243. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi holds meeting with his Economic Advisory Council to further boost India's economic growth. RBI simplifies rules for FPIs in government securities to make investment in India easier. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to hold talks with Nepal Foreign Affairs Minister Shishir Khanal in New Delhi this evening. CBSE extends last date for submission of applications for verification of marks and re-evaluation till tomorrow. In Punjab, at least 9 people killed after a vehicle collides with a truck on Firozpur Fazilka Road this morning. IMD issues red alert for heavy rainfall over Keralam and Mahe till tomorrow. And in cricket, Shreyas Iyer replaces Suryakumar Yadav as India's new T20 captain, Vaibhav Suryavanshi included in squad for first time. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
3: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ

0: नाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। राज्य वित्त आयोगों के लिए डाटा सेट संबंधी समिति की रिपोर्ट 8 जून को जारी की जाएगी। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ वी अनंता नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट का जारी होना राजकोषीय विकेंद्रीकरण के लिए प्रमाण आधार को मजबूत करने की दिशा में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मंत्रालय के अनुसार यह रिपोर्ट राज्य वित्त आयोगों के लिए आवश्यक प्रमुख डाटा सेटों का एक सुव्यवस्थित और व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्यों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
2: With Nepal, we have an expansive agenda.
3: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
2: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
1: भारत के 3 दिन के दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का भी प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास की एक नई

0: युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 अमृत भारत स्टेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस और कई अमृत भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
1: मेट्रो के लिए 60 न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री नड्डा ने बताया कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 60.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने में निरंतर निवेश का परिणाम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, होर्मुज जलटमरू मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का आह्वान किया है। रेजाई ने एक टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
2: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारायकाल में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर में बिजली चमकने और तेज हवाओं का अनुमान है। भारत हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीते दिनों की गर्मी के बाद सुहावने मौसम से जनजीवन को काफी राहत मिली है।
3: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग और कुंजम दर्रों पर बीते रोज हल्का हिमपात तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि, वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने IPL 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन

0: ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चायकाल तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति हैं और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति हैं। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉक्टर मांडविया ने ये बात कही। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल भारतीय आम का प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आज आयोजन किया गया। अमेरिका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही नहीं करता बल्कि ये मजबूत व्यापारिक आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। ऑस्ट्रेलिया सैयर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलो। सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। श्रोताओं, दोपहर के 2:30 हुए हैं और समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार का। एक ही कलाकार में आप सभी श्रोताओं का मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं। श्रोताओं, हिंदी फिल्म का इतिहास जब भी लिखा जाएगा कुछ नाम ऐसे होंगे जिन्हें भुलाया नहीं जा सकेगा। ऐसे ही एक नाम है गीतकार राजेंद्र कृष्णा। एक ऐसे शब्द शिल्पी जिन्होंने प्रेम को शब्द दिए, विरह को स्वर दिया और भावनाओं को ऐसी अभिव्यक्ति दी जो आज भी श्रोताओं के दिलों में गूंजती है। 5 दशकों से अधिक लंबे रचनात्मक सफर में राजेंद्र कृष्ण ने हजारों गीत लिखे। उनके गीतों की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी सहजता। वे कठिन भावों को भी इतनी सरल भाषा में व्यक्त करते थे कि हर श्रोता उन्हें अपना महसूस करता था। आइए आज उनके कुछ सदाबहार और लोकप्रिय गीतों के माध्यम से उनके रचनात्मक संसार की सैर करते हैं और सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत फिल्म अनारकली से, जो भारतीय फिल्म संगीत की अमूल्य धरोहर माना जाता है।

अभी आपने सुना गीत ये जिंदगी उसी की है। ये गीत राजेंद्र कृष्ण की संवेदनशील लेखनी का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रेम और समर्पण की भावना को जिस खूबसूरती से उन्होंने शब्दों में ढाला वह इस गीत को अमर बना देता है। राजेंद्र कृष्ण ने अनेक संगीतकारों के साथ काम किया लेकिन कुछ जोड़ियाँ ऐसी रहीं जिन्होंने संगीत प्रेमियों को अनमोल रचनाएँ दीं। अब सुनते हैं ऐसी ही एक कालजयी प्रस्तुति। फिल्म का नाम है नागिन। ये गीत आज भी उतना लोकप्रिय है जितना अपने रिलीज के समय था। संगीत है हेमंत कुमार का और स्वर है लता मंगेशकर का। गीत के बोल हैं, मेरा दिल ये पुकारे।

श्रोताओं, कहते हैं कि कुछ गीत समय की सीमाओं को पार कर जाते हैं। ये गीत उन्हीं में से एक है और आज भी जब यह गीत बजता है तो श्रोताओं के मन में पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। राजेंद्र कृष्ण की लेखनी में प्रेम की कोमलता और भावनाओं की गहराई सहज रूप से दिखाई देती है। अब सुनते हैं एक ऐसा गीत जो अपनी मधुरता और सरलता के कारण आज भी लोगों की सुबह पर है। फिल्म का नाम है भाई भाई। इस गीत को स्वरबद्ध किया था मदन मोहन ने और आवाज़ दी थी गीता दत्त।

बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आपने सुना गीता दत्त की आवाज़ में। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार और आज हम याद कर रहे हैं गीतकार राजेंद्र कृष्ण को। श्रोताओं, उनके गीतों की खूबी यह थी कि वे सीधे दिलों से निकलते थे और सीधे दिल तक दस्तक देते थे। शायद यही कारण है कि बदलते समय के बावजूद उनकी लोकप्रियता बनी हुई थी। अब बारी है उस गीत की जिसे हिंदी फिल्म के संगीत में खूबसूरत प्रेमों में गिना जाता है, लेकिन साथ ही साथ हम आपको ये बता दें कि राजेंद्र कृष्ण ने अनेक ऐसे गीत लिखे जो समय के साथ अधिक मूल्यवान होते गए। श्रोताओं, राजेंद्र कृष्ण ने प्रेम, विरह, रहस्य और दर्शन हर भाव को अपनी लेखनी में स्थान दिया। ये बहुमुखी प्रतिभा का ही परिचय था कि उन्होंने अपने समय के सबसे लोकप्रिय गीतकारों में शामिल उन्हें कर दिया। अब सुनते हैं उनका एक गीत जिसने शास्त्रीयता और लोकप्रियता के बीच सुंदर संतुलन स्थापित किया। फिल्म का नाम है छाया। इस गीत को स्वरबद्ध किया है सलील चौधरी ने और इसे स्वर दिया है तलत महमूद और लता मंगेशकर ने। गीत के बोल हैं, इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा।

बहुत ही खूबसूरत सा गीत तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज़ में। श्रोताओं, राजेंद्र कृष्ण के गीतों में भावनाओं की गरिमा और भाषा की सादगी का अद्भुत संयोजन अर्थात मेल दिखाई देता है। यही कारण है कि उनके गीत पीढ़ी दर पीढ़ी लोकप्रिय बने रहे। आइए सुनते हैं अगला गीत, जो कि लिया है हमने फिल्म खानदान से। 1965 में प्रदर्शित इस फिल्म को भारतीय फिल्म संगीत के सर्वाधिक लोकप्रिय गीतों में शामिल किया गया था। इस गीत के संगीतकार हैं रवि और इस गीत को अपनी आवाज़ से सजाया है लता मंगेशकर ने।

श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में एक ही कलाकार में हमने हिंदी फिल्म संगीत के महान गीतकार राजेंद्र कृष्ण के कुछ सदाबहार गीतों का आनंद लिया। और चूंकि संदेश भी हमारे पास लगातार आ रहे हैं एक ही कलाकार के संदर्भ में, जिसमें से हमें संदेश भेजा है दिग्दर्शन गौर, गगनदीप ठांडी, बबलेश पवार, स्वर्ण सिंह, मसरूर हसन, धर्मेंद्र छिप्पा, तुलसी मस्कीन, हरजिंदर शिंदे, धर्मेंद्र छिप्पा, अनिल मोहन, देवशंकर टमुरिया, हीरामणि वर्मा, संजय ढींगिया, इशाक मोहम्मद, संदीप मक्कड़, सुदर्शन मुखी, नवी हसन, अजीत भवसार, इनके संदेशों का बहुत बहुत शुक्रिया। और श्रोताओं, चलते चलते आपको बता दें कि राजेंद्र कृष्ण ने अपने शब्दों से भारतीय फिल्म संगीत को समृद्ध बनाया। उनके गीतों में भावनाओं की सच्चाई, भाषा की सरलता और मानवीय संवेदनाओं की गहराई दिखाई देती है। यही कारण है उनके गीत आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने दशकों पहले थे। इसी के साथ मैं एक ही कलाकार कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की इजाज़त चाहूँगा और चलते चलते आपको इस गीत के साथ छोड़े जा रहा हूँ, जो कि बहुत लोकप्रिय गीत है। और इस गीत को हमने लिया है फिल्म पड़ोसन से। गायक कलाकार है किशोर कुमार, मन्ना डे और महमूद। तो आइए सुनते हैं, आनंद लेते हैं इस आखिरी गीत का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 3 बजने को है। अब से कुछ क्षणों में आप सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

0: नृत्य गोपाल जी,
1: जी चंपा जी,
0: देखो अधिक मास को परम पावन पुनीत महीना चल रहा है, और देखो तो सही हमारे ब्रज में ना जो ये अधिक मास को महीना है, यानी कि यह एक महीना में ही जो वर्ष भर के उत्सव हैं उनको उल्लास ऐसा है कि होरी दिवारी एक ही संग मन रही है।
1: जी हाँ चंपा जी, ये जो ब्रज में जाकू लौंद को महीना कहें या में उत्सवन को ऐसो समागम देखो जाए, तनिक देखो तो सही, उत्सव में भक्ति लीलान की छटा नंदगाम बरसाने सहित पूरे ब्रज में ऐसो समुद्र उमड़ो भयो है, जाकू देख देख के सब आनंदित रह रहे हैं।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी, समूचो ब्रज भक्ति में न्यों हो रो है कि आप देखो ना कि नंद बाबा मंदिर जो नंदगाम में है नंदीश्वर पर्वत पे, तो वहां की तो छटा इतनी अद्भुत और अलौकिक है कि जन्माष्टमी, गोपाष्टमी, अन्नकूट, छप्पन भोग, दाल लीला, पालनो उत्सव, ये जो पारंपरिक लीलान के दर्शन है ना वर्ष भर के, ये सब उत्सव ना या एक ही महीना में यानी कि अधिक मास में हो रहे हैं।
1: चंपा तनिक देखो तो सही, नंदगांव के आशीश्वर को क्यों भूल रहे हो, जहाँ पे शिवलीला है रही है और देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यह समय ब्रज में पधार रहे हैं, आ रहे हैं और ब्रज की परिक्रमा कर रहे हैं।
0: हाँ हाँ नृत्य गोपाल जी, आप देखो ना श्रद्धा को और आस्था को सैलाब ऐसो है कि सुबह हो रही तो संजा गुदेवारी मन रही है।
1: ये अद्भुत तरीका है ब्रज को।
0: हाँ और आप देखो कि एक तरफ तो होरी की उमंग है, दूसरी तरफ दिवारी की रोशनी है, और वहीं हम देख रहे हैं कि जन्माष्टमी और जो राधा अष्टमी पे जन्मोत्सव की भव्यता है वो तो देखते ही बन रही है।
1: अजी चंपा तनिक देखो तो सही कि या समय ब्रज में जेठ मास में नौका विहार की झांकी है रही है, झूला महोत्सव मनाए जा रहे हैं, इतनो स्वरूप दिखाई पड़ रहे हो कि वहां में हर रोज नई नई घटान के दर्शन है रहे हैं।
0: देखो नृत्य गोपाल जी, अब ये आप परिक्रमान की बात कह रहे तो देखो कि ब्रज 84 कोस की परिक्रमा होए या गोवर्धन की परिक्रमा होए, उनमें आप देखो कि संकीर्तन हो रहे हैं, जो परिक्रमार्थी इनको लोकमानस है वे हारमोनियम और ढोलक की ताल पे खूब संकीर्तन कर रहे हैं, और जगह जगह देखो रासलीलान के मंचन हो रहे हैं।
1: जी हाँ चंपा जी, बारह बनन की परिक्रमा खूब चल रही है, गहवर वन की परिक्रमा आप देख लो, पिसाई वन की देख लो, वृंदावन की परिक्रमा देख लो,
0: हाँ
1: काम वन की पंचकोशी परिक्रमा है, तो ये विभिन्न परिक्रमा चल रही हैं और यही के संग
0: हाँ
1: जो आप रासलीला

0: की कह रहे हो ना, एक विशेष स्वरूप या समय श्रीमद् भागवत को दिखाई पड़ रहे हो।
1: हाँ बिल्कुल सही बात कही है आपने।
0: जगह जगह श्रीमद् भागवत जी की कथा है रही है।
1: और नृत्य गोपाल जी, टेसु के रंगन के संग केसर के फूल हैं, केसर क्यारी हैं, उनमें होरी मन रही है और हर कोई उन रंगन में और रंग की बौछारन में सराबोर हो ही रहे हो।
0: पौराणिक मान्यता या तरीका की है कि ब्रज में अधिक मास में सबरे देवी देवता निवास कर रहे हैं।
1: हाँ नृत्य गोपाल जी, और यही के काजे तो कहो गयो है, वृंदावन की रेणु में प्रगटे मदन स्वरूप, दीन दुखी को देत हैं भक्ति रूप अनूप।
0: देखो तो सही है कि कविरत्न मुदित मुकुंद ने कितनी बढ़िया बात कही है। ब्रह्मा गयो भूल यहाँ बछरा चुराए आए, विष्णु गयो भूल मांग मांग छाछ खाई है, शिव गयो भूल नारी वेश धर आयो यहाँ, इंद्र गयो भूल मेघ सेना ले चढ़ाई है, मुदित मुकुंद सुर बाला भूली राधा देख, चंद्र भूलो रात्रि छह महीना की बनाई है, ब्रज भूमि मोहिनी है भूले सोई पावे पार, यहाँ भूल होती तो सदासों चली आई है।
2: मालिक पूछे गो।

0: प्यारे भैया बहनाओं, अभी आप ये भक्ति रचना सुन रहे हते तो नृत्य गोपाल जी, अधिक मास को अपनो पौराणिक महत्व तो है ही, पर ब्रजभूमि में जो कृष्ण भक्ति को प्रेम है, माधुर्य है, और बामे भी कृष्ण और गोपीन की जो वार्तालाप है, जो उनकी लीला है, उनके वशीभूत होके भी ना इतने श्रद्धालुगण या वक्त ब्रज में चले आ रहे हैं।
1: अजी चंपा, जो आप रासलीला की बात कह रहे हैं ना, या समय तो ब्रज में जो रासलीला चल रही है उनमें कृष्ण गोपीन की जो आपसी मनोहार है, प्रेम है,
0: जो बतरस है उनको,
1: हाँ, जो ब्रज की लौकिक जो छोटी छोटी सी लीला है, जो बाल कृष्ण की लीला है, उनको ही ज्यादा प्रदर्शन है रे ओए।
0: तो नृत्य गोपाल जी, जब कृष्ण और गोपीन के इतने व्यापक स्वरूप की चर्चा अया बखत अधिक मास में वहाँ देखवे को सुनवे को मिल रही है, आप कहें तो अपने प्यारे भैया बहनान को यही चर्चा की ओर ले चले।
1: जी हाँ चंपा जी, अवश्य ले चलो।
0: तो आओ प्यारे भैया बहनाओं, अब हम आपको सुनवाए रहे हैं ये वार्ता, जाको विषय है कृष्ण और गोपियों के उपालंब। आलेख है नीतीश कुमार जी को और वाचन स्वर है नृत्य गोपाल जी को।
1: सब श्रोतान को नीतीश कुमार की राधे राधे। ब्रज शब्द के आते ही दृष्टि में जो पहलो चित्र उभरे है वह श्री कृष्ण की छवि होए। जहाँ कृष्ण है वहीं ब्रज है, वहाँ गोपी है, ग्वाल है, यमुना पुलिन है, गिरी गोवर्धन है, बालकन को समाज है, सामाजिक सौहार्द है, प्रेम को प्रवाह है। कृष्ण और गोपीन की बात हुए तो वामे हंसी है, ठिठोली है, मान और मनोहार है, एक दूसरे के ताई प्रेम भरे उपालंभ है। उपालंभ संस्कृत को शब्द है, जाकू ब्रज भाषा में उरहानों कहो जाए। प्रेम में ताने और उरहाने को अपनो ही महत्व है। उरहानो मिश्र भाव है, या में ईर्ष्या, विरह और व्यवस्था समाहित हुए हैं। उरहाने में व्यंग के माध्यम से पीड़ा की अभिव्यक्ति हुए है। ब्रज भाषा काव्य में उरहाने के अनेक रूप और स्थल प्राप्त हुए। श्री कृष्ण की बाल लीलान में माँ यशोदा ते कहे गए उरहाने हु मन मोहक है। बड़े भैया दाऊ जी सो खीज उरहाने के रूप में उभरे है। मैया सो कहे मैया मुझ दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मूल को लीनो तू जसमत कब जायो, कहा करो यही ऋष के मारे खेलन हो नहीं जात, पुन पुन कहत कौन है माता को है तेरो तात, गोरी नंद जसोदा गोरी तू कत श्यामल गात, चुटकी दे दे ग्वाल नवावत हसत सवे मुस्कात, तू मोही को मारन सीखी दाऊ ही कबहू न खीजे, मोहन मुख ऋष की ये बातें जसमत सुन सुन रीज है, सुनहु कान बलभद्र चबाई जनमत ही को धूत, सूर श्याम मुह गोधन की सो हो माता तू पूत। ब्रज भाषा में कृष्ण और गोपीन की बात जब हुए है तो गोपीन के उरहाने यामे बड़े श्रेष्ठ हुए। ब्रज गोपीन के उरहाने को स्रोत है श्रीमद् भागवत। यामे उरहाने के दो रूप वर्णित हैं, एक है नटखट कृष्ण की ब्रज लीला। कृष्ण ब्रज गोपीन के माखन को चुरामे, वस्त्र चुरामे, मार्ग रोके, गगरी फोरे, यही प्रकार की अन्य लीला करें, और गोपी उनके इन उत्पाती कार्यंते परेशान है के माँ यशोदा को उड़ानो दे। ब्रज भाषा के अधिकांश कवि इन लीलान को वर्णन अपने ढंग से करे हैं। अब देखो तो सही, सूरदास ने या कि तही बड़ो सुंदर पद लिखो है, अपनो गांव लियो नंद रानी, बड़े बाप की बेटी पूतही भली पढ़ावत बानी, सखा भीर ले पैठत घर में आप खाए तो सहिए, मैं जब चली सामूहे पकरन तब के गुण का कहिए, भाज गए दुर देखत कतहूं मैं घर पौढ़ी आए, हरे हरे बेनी गह पाछे बांधी पाटी लाए, सुन मैया या के गुण मोसो इन मुह लयो बुलाई, दधि में पड़ी सैंत की मोपे चींटी सबे कढ़ाई, टहल करत में या के घर की यह पति संग मिल सोई, सूर बचन सुन हसी जसोदा ग्वाल रही मुख गोई। जब गोपी यशोदा जी के पास जाए उरहानो लेके जाए तो कृष्ण हु गोपीन की शिकायत करें और कहें मैया जब मैं घरते चलू बुलामे ग्वालिन घर में मोए, अचक हाथ को झालो देके मीठी बोले देवर कहके निधरक है जाए साकर देके। यहाँ श्रोताओ, कृष्ण यशोदा और गोपीन के

बीच जो उड़ाने चले हैं कृष्ण के वियोग में चंद्रमा की चांदनी गोपी के हृदय को दग्ध करे और गोपी वास में चंद्रमा को ही उड़ानो देवी लग जाए हैं। गोपीन को लगे है कि चंद्रमा में जो शीतलता रह गई है वह शीतलता आग ते भरी भई है। छूट गई शशि शीतलताई मन मोहि जार भस्म किए चाहत साजत सो कलंक तनु काई। राहु केतु दो जोर एक कर नींद समय जुर आवहि माई ग्रसे ते न पच जात ताप में कहत सूर विरहिन दुखदाई। कृष्ण के वियोग में डूबी गोपी यमुना को वाकी बहवी के ताई ही उड़ानो देवी लग जाए हैं। वे यमुना को उड़ानो देते वही पूछे अरे बाबरी कृष्ण के बिना यह कलकल निनाद तुकु कहा अच्छो लगे है। यमुना तुए बहो क्यों भावे तू में कृष्ण हेलुआ खेले सो सुरत्यो नहीं आवे भर भादो जो रात अष्टमी सो दिन क्यों न जनावे सूरदास को ऐसो ठाकुर कमल फूल ले आवे। गोपिन के ताई प्रकृति को प्रत्येक वह जड़ चेतन तत्व जो कृष्ण के वियोग में जीवित है उड़ाने को पात्र है जाए। ऐसी स्थिति में प्रकृति के सौंदर्य उपादान तो उनको शत्रुवत प्रतीत हुए हैं। लीला स्मरण में परमानंद दास को उड़ानो बहुत महत्वपूर्ण है। वे लिखे हैं मोहन वह क्यों प्रीत बिसारी कहत सुनत समुझत और अंतर दुख लागत है भारी। एक दिवस खेलत वन भीतर बेनी सुहन संवारी बीनत फूल गयो चुभ कंटक ऐसी बिथा बिथारी। हम पर कठिन हृदय अब कीन्हो लीला गोबर धन धारी परमानंद बलबीर बिना हम मरत बिरह की जारी। मथुरा में कृष्ण महाराज है गए गोपीन को याहू में उड़ानो प्रतीत है गयो। नंददास की गोपी कहे को कहे अहो श्याम कहा इतराए गए हो मथुरा को अधिकार पाए महाराज भये हो। और इतनो ही कहवीते गोपीन को हृदय नाय भरो उनने कहो हमको पिए तुम एक हो तुमको हमसी कोट बहुत पाए के राबरे प्रीत न डारो तोरे एक ही बार जी। कृष्ण और कुब्जा के माध्यम ते तो जैसे उड़ाने को एक बड़ो स्वरूप प्रदान कर दियो गयो है। गोपी बहुत उड़ानो दे वे माने कि कृष्ण कुब्जा के स्नेह में ऐसे फंस गए हैं कि वे अब हमको भूल गए हैं। गोपी कृष्ण और कुब्जा दोनों के ताई भले बुरी बात कहें और वे कहें कुब्जासी रानी मिली नृपत त्रिभंगी लाल भली मिली जोरी जुगल लख लख होए निहाल। कवि पद्माकर ने कुब्जा के टेढ़े तन और कृष्ण की त्रिभंगी छवि को आधार बनाए के बहुत सुंदर सी रचना करी है। गोपीन को या बात को दुख नाए कि कृष्ण अब आए ना रहे उनको या बात को दुख ज्यादा है कि वे अब कुब्जा के संग रहवे लग गए हैं। सोच ना हमारे कछु त्याग मनमोहन के तन को न सोच जो पे यो ही जर जाए है कहे पद्माकर न सोच अब एहू यह आई है तो आई है न आए है न आए है जोग को न सोच अरु योग को न सोच कछु यही बड़ो सोच तो सवन सुहाए है कुबरी के कुबर में भेद्यो है त्रिभंगता त्रिभंगी को त्रिभंगी लाल कैसे सुरझाई है। कृष्ण के दूत उद्धव निर्गुण ब्रह्म की उपासना लेके ब्रज आए गोपी या ब्रह्म उपासना को सिरे से नकार दे। कृष्ण की रूप माधुरी के सम्मुख इन गोपीन को निर्गुण ब्रह्म की परिकल्पना निरर्थक प्रतीत भई। याही सो सूरदास की गोपी ने तो प्रश्न कर दियो कि निर्गुण कौन देश को बासी मधुकर कह समझाए सोह दे बूझत सांच नहासी। और नंददास की गोपी तो तर्क दे कि अरे उद्धव मथुरा की रीति ही ऐसी है कि गुण को त्याग के निर्गुण को ग्रहण करें हैं। को कहे अहो मधुप साधु मधुवन के ऐसे और तहां के सिद्ध लोग हैं धो कैसे अगुण गुण गह लेते हैं गुण को डारत मेट मोहन निर्गुण क्यों न होए तुम साधुन को मेट गांठ की खोए के। संत अक्षर अनन्य ने उड़ाने को बड़ो सुंदर सा स्वरूप प्रस्तुत करो है। उनकी गोपी ज्ञान और प्रेम को समन्वित रूप है। वे उद्धव सो कहें जो पे कहो ऊधो तुम निर्गुण को निंदत हो निंदत ना यह तो उपासना की रीति है चंद्र और सूर्य दो नैन विश्व रूप ही के तदप चकोर चित्त चंद्र ही सो प्रीत है। सगुण निर्गुण वासुदेव जू के रूप दो

0: हमारे सगुण रूप ही की प्रतीत है। श्रोताओ, भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के अग्रणी रचनाकार हैं। खड़ी बोली के प्रसिद्ध रचनाकार होते भये हूँ आपने ब्रजभाषा में बड़ी सरस रचना करी है। भ्रमर को लक्ष्य करके उनने बहुत बढ़िया सो ओरहानो दियो है। भोरा रे रस के लोभी तेरो कहा परमान, तू रस मस्त फिरत फूलन पर कर अपने मुख गान। इत सो उत डोलत बोरानो किए मधुर मधुपान, हरिचंद तेरे फंद न भूलूं बात परी पहचान। गोपीन के उड़ाने के मध्य यशोदा के उड़ाने हु ध्यान देवे योग्य हैं। सत्यनारायण कविरत्न ने यशोदा के माध्यम ते कृष्ण को जन्म भूमि की शिक्षा दई। वे लिखे जननी जन्म सुनियत स्वर्गहु सो प्यारी, सोतज सबरो मोह सामरे तुमन बिसारी, का तुमरी गतिमति भई जो ऐसो बरताव, किधो नीत बदली नई ताको पर्यो प्रभाव कुटिल विष को भर्यो। ब्रज गोपीन के उड़ानेन की बात होए और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर की बात नाए चले ऐसो नाए है सके। रत्नाकर की गोपी उद्धव के ब्रह्म ज्ञान को ठेठ अंदाज में नकारते भय कहे, जग सपनों सो सब परत दिखाई तुम्हें, ताते तुम ऊधो हमें सोबत लखात हो। कह रत्नाकर सुने को बात सोबत की, जोई मोह आवत सोई बिवस बयात हो। सोबत में जागत लखत अपनी को निम, त्यों ही तुम आप ही सुज्ञानी समुझात हो। जोग जोग कबहू न जाने कहा जो ही जको, ब्रह्म ब्रह्म कबहू बहक बर रात हो। या प्रकार हम देखें कि ब्रज भाषा साहित्य में और ब्रज लोक में कृष्ण और गोपीन के जो उरहाने हैं विन में बड़ो रस है, आनंद है और एक दूसरे के प्रति प्रेम को भाव दिखाई पड़े है। जय जय श्री राधे।
1: प्यारे भैया बहनाओं, अभी आप ये वार्ता सुन रहे हते, जाको विषय हो कृष्ण और गोपियों के उपालम्ब, आलेख हो नीतीश कुमार जी को और वाचन कर रहे हते नृत्य गोपाल जी। नृत्य गोपाल जी।
0: जी चंपा जी।
1: देखो बिल्कुल आपने तो जो मन मोहे वाली बात है ना कृष्ण और गोपीन के बीच की, उल्हाने इनकी और उनके बतरस की, कि हमारे जितने भी श्रोता भैया बहनान ने ये वार्ता सुनी है उनके मन को ना या वार्ता ने मोह लियो है। देखो जहाँ कृष्ण की चर्चा है, जहाँ गोपीयन की बात है, आनंद की जो धारा है वो तो स्वतः ही प्रवाहित हो गए है। और हम देखे हैं नृत्य गोपाल जी के जो ये जेठ को महीना चल रहे हो या मैं ये अधिक मास पड़ो है, तो भले ही जेठ को महीना ना अपनी गर्मी के काजे जानो जाए, पर हम देखे हैं कि भक्ति रस की जो धारा प्रवाहित हो रही है ना, माने या गर्मी के बेग को भी कम कर दियो है।
0: देखो चंपा जी, ये जो गर्मी है या को अपनो आनंद है और जेठ मास तो या को सिरताज है।
1: हाँ।
0: पर यह जेठ मास की गर्मी में हूँ, हमारी यहाँ पे अपने इष्ट को गर्मी से बचाए के ताई सूती के कपड़ा, मल मल जालीदार वस्त्र और शीतल कुंज में जहाँ मिट्टी के पात्रन में उनके काजे गुलाब जल भरियो जाए, खस को शरबत भरियो जाए, खस के पर्दा लगाए जाए, पंखांते पवन ढुरायो जाए।
1: हाँ नृत्य गोपाल जी, ये हमारे ब्रज धरा की ना बड़ी विलक्षण परंपरा है कि जैसी ऋतु होए वही के अनुसार है ना इष्ट को लाड लड़ायो जाए। और आप ये देखो कि जो ये गर्मी की ऋतु है ना, या में सारंग मल्हार और बिलावल राग में जो पद हैं उनको गायन हो रहे हो, इष्ट को पद राग के द्वारा शीतलता प्रदान करी जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये है नृत्य गोपाल जी के इन पदन के बोलन में ना यमुना जल को भी जिक्र है, फुआरेन को जिक्र है, मोगरा गुलाब के फूलन को जिक्र है, चंदन और शीतल पवन को वर्णन इनमें बड़ी अच्छी तरह से करो गए हो।
0: चंपा जी, ब्रज के देवालयन में भोग राग और श्रृंगार की जो त्रिवेणी बहे वहां में जो गायो जाए वही बनायो जाए, जो बनायो जाए वही वहां पे प्रसाद के रूप में हूँ आरोग्य करा में है।
1: और नृत्य गोपाल जी पुष्टि मार्ग में तो इतनी बढ़िया मान्यता है, जो ये ग्रीष्म ऋतु के पद है ना इनको खस खाने के पद कहो जाए।
0: और चंपा जी आपको याद हो तो ब्रजभाषा के कवि है ना बिहारी लाल, उनने बड़ो सुंदर सो एक छंद लिखो है, एक उनको दोहा है कि बैठ रही अति सघन बन पैठ सदन तन माह, देख दोपहरी जेठ की छाहों चाहत छाह,

0: अभी आप ये लोकगीत सुन रहे हते तो नृत्य गोपाल जी,
1: जी चंपा जी,
0: देखो अधिक मास चल रहो है, जेठ को महीना चल रहो है, तो कितनी सुंदर चर्चा आज हमने अपने श्रोता भैया बहनान के संग करी है कि हमारे श्रोता भैया बहना भी ना इन ब्रज की प्रेम रस की बतियान ने सुन सुन के है ना अपनी गर्मी को भूल गए होंगे।
1: जी हाँ चंपा, देखो आप बड़े प्यार से हमारे ब्रज की संस्कृति को बता रहे हैं तो श्रोता क्यों ना भूलेंगे।
0: पर नृत्य गोपाल जी, हमें भी ये ना भूलना चाहिए कि अब हमारे चलवे को समय है गयो है।
1: जी हाँ श्रोता हो, अब यही के संग हमारो आज को ब्रजमाधुरी कार्यक्रम अब यही संपन्न हुए है। कार्यक्रम प्रस्तुत करता वी के तोमर के संग मो नृत्य गोपाल,
0: मोए अपनी चंपा बहन यानी चंद्रवती शर्मा को अनुमति दो।
1: नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स। दोपहर के 3:30 होने को हैं। प्रस्तुत है नाटक शीर्षक सलोमी कड़ी 2, जिसका प्रथम प्रसारण हो रहा है। निर्देशन व प्रस्तुति काजल सूरी की। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक सलोमी।
1: आइए सुनते हैं नाटक सलोमी। मूल कहानी ऑस्कर वाइल्ड, रेडियो नाट्य रूपांतरकार विक्रम शर्मा, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। आज आप इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी सुनेंगे।
2: ताजा फलों को लाया जाए। सलोमी आओ, ये ताजा फल मेरे साथ खाओ।
3: मुझे भूख नहीं है टेट्रॉक।
2: देखा तुमने, तुम्हारी बेटी को तो बात करने का सलीका भी नहीं आता।
4: मैं और मेरी बेटी शाही खानदान में परवरिश पाई हुई हैं। और तुम सुनो, जहां तक तुम्हारा ताल्लुक है, तुम्हारा बाप ऊंटों का चरवाहा था, और ये भी सुनने को मिला है कि वो एक बहुत खतरनाक लुटेरा था।
2: अच्छा, तुम्हारे झूठ का मुझ पर कोई असर नहीं।
4: तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि जो कुछ मैंने कहा वो बिल्कुल सच है।
2: सलोमी आओ, मेरे करीब आओ, आओ और यहां मेरे साथ बैठो।
3: मैं अभी इतनी थकी नहीं हूं टेट्रॉक।
4: सुना तुमने, सुना वो क्या सोचती है तुम्हारे बारे में?
2: पेश किया जाए वो जिसकी मुझे इच्छा है, मेरे सामने लाया जाए वो। ओह, किसकी इच्छा है मुझे, मैं भूल ही गया मैं क्या चाहता हूं। मुझे याद आ गया।
5: सावधान, वक्त आ चुका है। देवताओं का कहना है कि जो वक्त उन्होंने मुकर्रर किया था वो आ पहुंचा है, और जिस दिन की भविष्यवाणी मैंने की थी वो दिन भी आ पहुंचा है। मेरे प्यारे बाशिंदो, तैयार हो जाओ उस घड़ी के लिए जो एक साथ बहुत मनहूस भी है और बहुत सुखद भी है। देवताओं का फरमान है कि इस घड़ी का आनंद सबको बराबर और पूरा पूरा मिलना चाहिए।
4: उसे खामोश हो जाने का हुक्म दो, मैं उसकी आवाज नहीं सुनना चाहती। ये हमेशा मेरे खिलाफ जहर उगलता रहता है, मेरा तिरस्कार करता रहता है।
2: नहीं प्रिय, इसने तो तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं कहा, और तुम्हें मालूम नहीं ये एक बहुत पहुंचा हुआ इल्हामी है।
4: मैं इल्हामियों पर विश्वास नहीं करती। क्या कोई भी शख्स बता सकता है कि किस समय क्या होने वाला है? कोई नहीं बता सकता। ऐसा करना किसी के बस में है ही नहीं। ये हमेशा मेरा तिरस्कार करता रहता है, और तुम भी तो इससे बहुत डरते हो। इसकी आवाज सुनकर तुम्हें भी तो बहुत डर लगता है ना?
2: नहीं।

0: मुझे इससे कोई डर नहीं लगता। मुझे इस संसार में किसी भी मनुष्य से डर नहीं लगता।
1: तुम झूठ बोल रहे हो, तुम इससे बहुत डरते हो।
2: ये नहीं हो सकता, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि इल्हामी एलियस के दिनों को गुजरे हुए 300 सालों से अधिक हो चुके हैं।
0: लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो यही समझते हैं कि यही शख्स इल्हामी एलियस है।
3: मुझे पूरा यकीन है कि आप ठीक कह रहे हैं, ये शख्स इल्हामी एलियस ही है।
4: तो अब आप लोगों को यकीन हो गया कि देवताओं का दिन आ गया, वो कयामत का दिन आ पहुंचा, जब मजबूत और कमजोर एक साथ टूटेंगे, जब रूहानी ताकतें अपनी असीम प्रचंडता पर होंगी और इंसान चक्की में गेहूं की तरह पिसेंगे। मुझे सुनाई पड़ रही है ऊंचे पहाड़ों पर उसके भारी कदमों की आहट। वो जो इस संसार का रखवाला है, तुम सबका मसीहा है।
0: संसार का रखवाला, इसका क्या मतलब?
5: ये खिताब तो महान सीजर को दिया गया है।
0: लेकिन सीजर तो जूड़िए में नहीं आ रहे। अभी कल ही तो रोम में मुझे कुछ चिट्ठियां मिली, लेकिन उनमें तो इस बारे में कोई जिक्र नहीं। और तुम तिगलनिस, तुम तो सर्दियों में रोम में ही थे, क्या तुमने इस बारे में कुछ नहीं सुना? कुछ सुना क्या?
3: मैं यकीन से कहता हूं कि मैंने इस बारे में नहीं सुना। मैं तो आपसे सिर्फ खिताब के बारे में ही कह रहा था। महान सीजर के कई खिताबों में से ये खिताब संसार का रखवाला भी उसे ही दिया गया है।
0: महान सीजर हम सबके स्वामी हैं। अगर वो इच्छा करें तो कहीं भी जा सकते हैं। मुझे डर है कि वो यहां आने की इच्छा कभी नहीं करेंगे।
6: लेकिन हुजूर, इल्हामी के कहे हुए वाक्यात महान सीजर से बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखते।
0: महान सीजर से ताल्लुक नहीं रखते?
6: बिल्कुल नहीं शहंशाह।
0: तो फिर किसके बारे में बात कर रहा था ये?
2: उस मसीहा के बारे में जो आ चुका है।
3: कोई मसीहा नहीं आया है, ये सब बकवास है।
6: वो सचमुच आ चुका है और हर जगह अपने कारनामे कर रहा है।
1: कारनामे? अजूबे। मैं अजूबों में विश्वास नहीं करती, क्योंकि ऐसे जादुई कारनामे मैं कई बार देख चुकी हूं।
4: ओ विपदाओं की देवी, भूख और प्यास की मल्लिका, भरी पलकों और सुनहरी आंखों वाली बेबीलोन की बेटी, पवित्र देवताओं का कहना है कि नफरत से भरे लोगों के झुंड को अपने खिलाफ आने दे, उनको हाथों में पत्थर उठाने दे, ताकि वो उसे पत्थर मार के मार सके।
1: खामोश, इसे खामोश रहने का हुक्म दो।
4: लड़ाकू कप्तानों को आदेश दो कि मुझे अपनी तलवारों से चीर दें, अपने भालों से मेरे चीछड़े कर दें।
1: नहीं नहीं, ऐसा करना तो बदनामी को आमंत्रित करना होगा।
4: सावधान सावधान ओ बेबीलोन की बेटी, सावधान। आकाश से टूटकर गिरने वाले हर सितारे को तुम्हारे आशियाने की तलाश है, और देखो देखो तुम्हारा चांद कितना असहाय होकर सब कुछ देख रहा है, खामोश और ठंडा।
1: तुम सुन रहे हो ना, तुम सुन रहे हो ना वो मेरे खिलाफ क्या क्या कह रहा है, और तुम उसे अपनी पत्नी के खिलाफ इतना कुछ कहने दे रहे हो। तुम उसे रोकते क्यों नहीं? उसे चुप हो जाने के लिए आदेश क्यों नहीं देते?
0: ओ प्रिय, लेकिन उसने तुम्हारा नाम तो नहीं लिया।
1: उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वो मैं हूं जिसे वो बदनाम करना चाहता है, और मैं तुम्हारी पत्नी हूं ना।
0: बेशक प्यारी और ईमानदार हेरोडियस, तुम मेरी ही पत्नी हो, और मुझसे पहले मेरे बड़े भाई की पत्नी थी ना। लेकिन भूल जाओ, हमें इस बारे में और

0: बात नहीं करनी चाहिए। मुझे इस बारे में बात करने की कोई इच्छा नहीं है। ये बात मुझे उस तथ्य से जुड़ती नजर आती है जो इस इल्हामी के कहे लफ्जों में मैं सुन रहा था और तुम भी सुन रही थी, और हो सकता है यही वजह हो कि भयानक अपशगुन हमें घेर रहे हैं। लेकिन अब चुप हो जाओ, इस बारे में और बात मत करो। मेरी प्यारी हेरोडियस, हम अपने मेहमानों को भूल ही गए। ये बहुत बुरी बात है, हमें अपने मेहमानों का खास ख्याल रखना चाहिए। तुम अपनी बेटी को देख रही हो, कितनी मुरझाई हुई नजर आ रही है।
1: वो मुरझाई हुई है या नहीं, इससे तुम्हें क्या लेना देना।
0: ओ, मैंने उसे इतना मायूस पहले कभी नहीं देखा।
1: और तुम्हें उसकी ओर देखना भी नहीं चाहिए।
2: उस दिन सूरज का रंग कोयले की तरह काला होगा, चांद के चेहरे पर खून की लाली होगी, स्वर्ग के सितारे आग की बूंदे बनकर पृथ्वी पर बरसेंगे, और संसार के सारे शक्तिशाली राजा शोक पत्तों की तरह कांपेंगे। शायद वही कयामत का दिन होगा जिस दिन आग और पानी का मिलन होगा और जन्म होगा एक नए संसार का। वो संसार जिसमें आदम तो होगा लेकिन बेबीलोन की बेटी ना होगी।
1: मैं वो दिन जरूर देखना चाहूंगी जिस दिन की ये बात कर रहा है, जब चांद के चेहरे पर खून की लाली होगी और स्वर्ग के सितारे आग की बूंदे बनकर पृथ्वी पर बरसेंगी। बकवास, ये इल्हामी हमेशा मदहोश शराबी की तरह बोलता रहता है और मुझे इसकी आवाज से सख्त नफरत है। मैं ये आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकती। हेरोड, हेरोड, तुम उसे चुप रहने का आदेश दो ना।
0: नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी समझ में कुछ नहीं आया जो इसने अभी कहा, लेकिन इसका यह कहना कोई अपशगुन भी हो सकता है।
1: ओफो, अपशगुन? लेकिन मैं अपशगुनों में विश्वास नहीं रखती। टेट्रॉक, तुम्हें झूठ बोलने की बहुत आदत है। मैं यहां नहीं रुकना चाहती। अब हमें अंदर चलना चाहिए।
0: रुक जाओ, मेरे लिए नाचो सलोमी।
1: मैं उसे नाचने नहीं दूंगी।
3: मेरी नाचने की कोई इच्छा नहीं है टेट्रॉक।
0: सलोमी, हेरोडियस की बेटी, मेरे लिए नाचो।
1: उससे दूर रहो तुम।
0: मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, सलोमी नाचो।
3: मैं नहीं नाचूंगी टेट्रॉक।
1: देखा तुमने वो किस तरह मेरी आज्ञा का पालन करती है।
0: वो नाचे या नहीं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम मुझे तो नहीं। आज की रात मेरे लिए खुशी की रात है। मैं बेहद खुश हूं। जिंदगी में मैं कभी इतना खुश नहीं हुआ जितना कि आज की रात।
2: वो इसी तख्त पर बैठेगा, वो काले और लाल लिबासों में लिप्त होगा, उसके हाथों में उसी की बर्बादियों का भरा सोने का पैमाना होगा। वो देवताओं के फरिश्तों की लाठी से मरेगा।
1: सुना, सुना तुमने वो तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है?
0: नहीं प्रिय, मेरे खिलाफ इस इल्हामी ने कभी भी कुछ नहीं कहा सिवाय मेरे एक गुनाह के, वो गुनाह जो मैंने तुम्हें बीवी बनाने के लिए किया, अपने भाई की बीवी को छीन कर।
1: मेरे विचार से अब हमें भीतर चलना चाहिए। ये मत भूलो, सुबह हमें शिकार पर भी जाना है। महान सीजर के दूतों को हमें पूरा सम्मान देना चाहिए।
0: रुक जाओ सलोमी, मेरे लिए नाचो सलोमी।
3: नहीं,
0: मैं तुमसे विनती करता हूं, मैं बहुत दुखी हूं। मैं जब यहां आया था तो मेरी नजर उस खून पर पड़ी जो कि बहुत ही अपशगुन की बात है, और हां, मैंने सुनी थी वो आवाजें। मुझे पूरा यकीन है कि मैंने वो आवाजें सुनी थी, उन बड़े बड़े भयानक पंखों के फड़फड़ाने की आवाजें। मैं नहीं जानता कि इसका क्या मतलब हो सकता है,

0: लेकिन आज रात मैं बहुत दुखी हूं, इसलिए इसलिए मेरे लिए नाचो। मैं तुमसे विनती करता हूं सलोमी, मेरे लिए नाचो, और इसके लिए तुम मुझसे जो कुछ भी मांगना चाहती हो मांग लो, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, अपना आधा राज्य भी।
1: क्या क्या तुम मुझे वो सब दोगे टेट्रॉक जो मैं तुमसे मांगूंगी?
2: मत नाचना मेरी बच्ची, मत नाचना।
0: सब कुछ, यहां तक कि अपनी आधी जायदाद भी।
1: तुम कसम खाओ टेट्रॉक।
0: ओ सलोमी, मैं कसम खाता हूं।
2: रुक जाओ सलोमी, मत नाचना।
1: और तुम किसकी कसम खाओगे टेट्रॉक?
0: मैं अपनी जिंदगी की, अपने ताज की, अपने सब देवताओं की। जिस चीज की इच्छा तुम करोगी वो सब कुछ तुम्हारा होगा, यहां तक कि मेरी आधी जायदाद और राज्य भी, अगर तुम मेरे लिए नाचोगी। सलोमी सलोमी, नाचो, जी भर के नाचो।
1: याद रखना टेट्रॉक, तुमने कसम खाई है।
0: मुझे अपनी कसम याद है सलोमी।
1: और बेशक मैं तुमसे तुम्हारा आधा राज्य मांग लूं?
2: रुक जाओ सलोमी, मेरी बच्ची मत नाचना।
0: अपना आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा सलोमी। हाँ, और उसके बाद तुम सब मल्लिकाओं से भी ज्यादा हंसी लगोगी। अगर तुम्हें मेरा आधा राज्य मिल गया तो आप सब मानते हैं ना कि सलोमी बहुत हंसी मल्लिका दिखेगी। यहां तो बहुत सर्दी है, बहुत बर्फीली हवा चल रही है। यहां मुझे कुछ सुनाई पड़ रहा है। सुनो, ये पंखों के फड़फड़ाने की आवाज कहीं से आ रही है। ओ, ये तो कोई बहुत बड़ा काला पक्षी लगता है जो आसमान में बदहवास सा उड़ रहा है। ये पक्षी मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? कहां है ये? इसके पंखों के फड़फड़ाने की आवाज बहुत भयानक है। देखो देखो कितनी तेज आंधियां चलने लगी और हवा कितनी बर्फीली है। नहीं, हवाएं ठंडी नहीं है, बहुत गर्म है। मुझे तो घुटन हो रही है। जल्दी मेरा चोगा लाओ। नहीं रुको, रहने दो, ये मेरे गले में फूलों का हार मुझे जला रहा है। ये फूल आग उगल रहे हैं और मेरा सिर आग से फटता जा रहा है। ओह, अब मैं सांस ले सकता हूं। फूलों की पत्तियां कितनी लाल हो गई, अब उन पर खून की बूंदें नजर आ रही हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे हर चीज में बुराई ढूंढने की आदत नहीं होनी चाहिए, इससे जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। हाँ, ये कहना बहुत ठीक होगा कि खून की बूंदें भी उतनी ही खूबसूरत हैं जितनी ये फूलों की पत्तियां। हाँ, ये कहना ठीक होगा। नहीं, लेकिन अब इस बारे में बात नहीं करेंगे। अब मैं बहुत खुश हूं, सब कुछ बहुत खुशनुमा है यहां। क्या मुझे खुश होने का हक नहीं है? और देखो हेरोडियस, अब तुम्हारी बेटी मेरे लिए नाचेगी। तुम मेरे लिए नाचोगी ना सलोमी? सलोमी, तुमने मेरे लिए नाचने का वादा किया है, बोलो नाचोगी ना?
2: हेरोड, याद रखना, मैं सलोमी को कभी नहीं नाचने दूंगी।
1: मैं तुम्हारे लिए जरूर नाचूंगी टेट्रॉक।
0: सुना, तुमने सुना हेरोडियस, तुम्हारी बेटी ने क्या कहा? वो मेरे लिए नाचने के लिए तैयार है। तुम बहुत अच्छा कर रही हो सलोमी, मेरे लिए नाच कर। तुम जो कुछ मांगोगी मुझसे तुमको देना पड़ेगा, मुझे अपनी आधी जायदाद और राज्य तक भी, क्योंकि ये सब कुछ देने की कसम खाई है मैंने। कसम खाई है ना?
1: तुमने कसम खाई है टेट्रॉक।
0: और मैं अपनी कसम कभी नहीं तोड़ता, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, क्योंकि मेरे अपने कहे हुए शब्द एक शहंशाह की जबां है।
2: अब हमें जल्दी अंदर चले जाना चाहिए, मैं अपनी बेटी को कभी नहीं नाचने दूंगी, और अगर तुम उसे इस तरह घूरते रहोगे तो वो बिल्कुल नहीं नाचेगी, और हकीकत में मैं उसे नाचने भी नहीं
0: दूंगी। अभी मत उठो।

0: मल्लिका, मेरी प्यारी बीवी, तुम्हारे उठ जाने से कुछ नहीं होने वाला, और जब तक वो नाच नहीं लेती मैं भीतर हरगिज नहीं जाऊंगा। नाचो सलोमी, मेरे लिए नाचो।
1: मैं तैयार हूं टेटरॉक।
0: खूब, बहुत खूब। देखा तुमने, वो मेरे लिए नाच रही है, तुम्हारी बेटी सलोमी मेरे लिए। पास आओ सलोमी, करीब आओ मेरे। मांगो, क्या मांगना चाहती हो?
1: मैं वो मांगना चाहती हूं जो मुझे चांदी की तश्तरी में भेंट किया जाए।
0: चांदी की तश्तरी में? हाँ जरूर, बेशक चांदी की ही तश्तरी में। कितनी हसीन लग रही हो तुम सलोमी, जल्दी से कह दो कि उस चांदी की तश्तरी में मैं क्या भेंट करूं।
1: जोकनान का सर।
0: क्या?
2: वाह, बहुत खूब मेरी बच्ची, बहुत खूब।
0: नहीं नहीं, हरगिज नहीं। नहीं सलोमी, तुम मुझसे ये नहीं मांग सकती। अपनी मां के कहने पर मत जाओ, ये हमेशा तुम्हें बुरी सलाह देगी, उसकी बातों पर ध्यान मत दो।
1: मैंने अपनी माँ की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया टेट्रॉक। ये मैं अपनी खुशी के लिए चांदी की तश्तरी में तुमसे जोकनान का सर मांग रही हूँ। देखो, तुमने कसम खाई है, ये मत भूलो कि तुमने अपनी, अपने ताज की, अपने सारे देवताओं की कसम खाई है।
0: हाँ, मैं जानता हूँ, मैंने अपने देवताओं की कसम खाई है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। देखो, मैं तुमसे विनती करता हूँ सलोमी, मुझसे कुछ और मांग लो। मेरा आधा राज्य, आधी जायदाद मांग लो, मैं तुम्हें सब दे दूंगा। लेकिन वो मांगने की जिद ना करो जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता।
1: मैं तुमसे जोकनान का सर मांग रही हूँ टेट्रॉक।
0: नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता।
1: भूलो मत, तुमने कसम खाई है टेट्रॉक।
2: हाँ हैरेड, याद करो, तुमने कसम खाई है। तुम्हें कसम खाते सबने सुना था, तुमने सबके सामने कसम खाई थी।
0: खामोश, तुम्हें बीच में बोलने का कोई हक नहीं, बेहतर होगा तुम अपना मुंह बंद रखो।
2: अब मुझे पूरा हक मिलता है बोलने के लिए हैरेड, मेरी बच्ची ने जोकनान का सर मांगकर तुम्हारी बोलती बंद कर दी है। मेरी बच्ची, तुमने बहुत अच्छा किया मेरी बच्ची। ये हमेशा मुझे इल्जाम देता था, मुझे बेइज्जत करता रहता था। उसने मेरे खिलाफ कितनी खौफनाक बातें की थी। पीछे मत हटना सलोमी, पीछे मत हटना। हेरेड से जोकनान का सर मांगो, उसने कसम खाई हुई है।
0: सलोमी, यहाँ आओ सलोमी, यहाँ आओ, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि मैं कभी भी तुमसे सख्ती से पेश नहीं आया, इसलिए मुझसे ऐसी चीज मत मांगो जो बहुत खौफनाक हो और हम सबके लिए बहुत बेरहम साबित हो। मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात समझ रही हो। जोकनान का सर लेकर तुम कौन सा सुकून पाओगी? कोई नहीं, नहीं, तुम ऐसी इच्छा नहीं कर सकती सलोमी। सलोमी, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, मेरे पास एक अनमोल हीरा है, एक बहुत बड़ा और गोल हीरा, जो महान सीजर ने खुद मुझे भेंट किया था। अगर तुम मुझसे वो हीरा मांगो, मैं वो हीरा देने के लिए भी तैयार हूं।
1: मैं तुमसे जोकनान का सर मांग रही हूँ टेट्रॉक।
0: तुम मेरी बात नहीं मान रही हो, तुम मुझे सुन नहीं रही हो। तुम इससे ज्यादा मुझे बोलने पर मजबूर मत करो सलोमी।
1: जोकनान का सर टेट्रॉक।
0: नहीं, तुम्हें वो हरगिज नहीं मिलेगा। मैं जानता हूं कि तुम मुझे परेशान करने के लिए ऐसी हरकत कर रही हो, क्योंकि आज शाम से मैं तुम्हें बहुत ज्यादा घूर रहा था, पर मैं क्या करूं, मैं क्या करता। तुम्हारी खूबसूरती मुझे बहुत परेशान करती है। तुम मुझे उस कसम से मुक्त कर दो और मुझसे ऐसी चीज मत मांगो जो इस राज्य पर कहर की तरह बरसने के लिए आतुर है।
1: मुझे जोकनान का सर चाहिए टेट्रॉक।
0: सलोमी, क्या तुम चाहोगी कि मेरे साथ कुछ अप्रिय घटना घटे? नहीं, तुम चाहोगी ऐसा हो? मैं जानता हूं कि तुम ऐसा नहीं चाहोगी। है ना सलोमी?

0: बोलो।
1: चांदी की तश्तरी में सिर्फ जोकनान का सर टेट्रॉक।
0: मेरी बात नहीं समझ पा रही हो? अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ। देखो मैं कितना शांत हूं। हाँ देखो, सुनो सलोमी, इस जगह पर मैंने बहुत से जेवरात छुपा रखे हैं, ऐसे जेवरात जिनके बारे में

0: खुदा या खुदा, मैं क्या करूं?
1: इस औरत को जो चाहिए इसे दे दिया जाए।
2: आखिरकार मेरी बेटी ने वो कर ही दिया जो उसे करना चाहिए था।
0: तैयार हो जाओ, मुझे यकीन है कि कोई बहुत अपशगुन घटने वाला है।
3: कोई कोई आवाज नहीं आ रही, मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा? वो शख्स चीख क्यों नहीं रहा? मैं उसकी चीख सुनना चाहती हूं। अगर कोई मुझे मारना चाहे तो मैं चीखूंगी ना, चिल्लाऊंगी, तड़पूंगी, और मेरी चीखों से सारा महल गूंजेगा। लेकिन लेकिन ये तो चीख नहीं रहा और ना ही इसके तड़पने की कोई आवाज आ रही है। सिपाहियों, तुम जाओ और मेरे लिए जोकनान का सर लेकर आओ।
4: जो हुक्म शहजादी।
3: ओ टान, तुम मेरी ओर देख क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारी खौफनाक आंखें जो हमेशा गुस्से से भरी रहती थी, आज बंद क्यों है? किस लिए बंद है तुम्हारी आंखें? अपनी आंखें खोलो, अपने पलकों को ऊपर उठाओ जोकनान, और मेरी तरफ देखो। ओह, तुम मेरी ओर देख क्यों नहीं रहे? क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है जोकनान, जो तुम मेरी ओर देख नहीं पा रहे हो? तुम मेरे खिलाफ, हेरोडियस की बेटी और जूडिया की शहजादी के खिलाफ कितनी भयानक बातें करते रहे। लेकिन तुम हार गए। लेकिन जोकनान, मैं अभी भी जिंदा हूं और तुम खत्म हो चुके हो। तुम्हारा ये सर अब मेरा है। हाँ, ये मेरा है। तुम्हारा सर अब मेरा है जोकनान, मेरा है।

0: पागल है ये, देखो इसने कितना बड़ा गुनाह कर डाला है।
1: मैं अपनी बच्ची के किए हुए पर बहुत खुश हूँ और अब हमें भीतर जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं अब यहीं रुकना पसंद करूंगी।
0: नहीं, मैं यहां नहीं रुकना चाहता, जाओ सब चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, क्योंकि मुझे शक है कि इस जगह पर कुछ बहुत भयानक होने वाला है। इन रोशनियों को बुझा दो, मुझे उजालों से नफरत होने लगी, मैं अंधेरों में रहना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझे देख सके और ना ही मैं किसी को देखना चाहता हूं। बुझा दो रोशनियां, इस खूनी चांद को छुपा दो, इस सितारे बुझा दो, आओ अपने आप को इस महल में कहीं छुपा लें। मुझे बहुत डर लगने लगा है, मुझे डर रहा है। हेरोडियस की बेटी जुड़िया की शहजादी सलोमी को कत्ल कर दो।
2: जो हुक्म टेट्रो।
3: अभी आप सुन रहे थे नाटक सलोमी, मूल लेखक ऑस्कर वाइल्ड, रेडियो नाट्य रूपांतरकार विक्रम शर्मा। आज आप इसकी दूसरी और अंतिम कड़ी सुन रहे थे। भाग लेने वाले कलाकार थे अनुराग अरोरा, लालिमा अनेजा डैंग, गीता वर्मा, राहुल दक्ष, राजीव शर्मा, जयदीप सिंह, जयंत घोष, कपिल, हिम्मत सिंह नेगी, अमर साहा और तरुण भल्ला। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नाटक सलोमी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़।

अब से कुछ ही देर यानी 4 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 4:05 पर आप सुन सकते हैं अंग्रेजी में समाचार, 4:10 पर आप सुन सकते हैं गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में सूचना, 4:20 पर आप सुनेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, 4:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम परिक्रमा, 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 5:05 पर आप सुन सकते हैं अंग्रेजी में समाचार, 5:10 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम लोकरंजनी जिसके सूत्रधार होंगे शशि कपूर और नीलम वर्मा, 5:30 पर आप सुन सकते हैं दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी, 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 6:05 पर आप सुन सकते हैं अंग्रेजी में समाचार, 4 बजने को आपसे कुछ क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

印度队里广播电台听众朋友们，现在我们播送一篇特写，题目是《德里中世纪的水井和包里阶梯井》。

0: खेल खिलाड़ी,
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: नमस्कार। खेल की दुनिया की हर हलचल, हर जीत, हर संघर्ष और हर बड़े मुकाबले के साथ आप सुन रहे हैं खेल खिलाड़ी। मैं हूं प्रेरणा शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी वसीम अहमद। आज की शुरुआत करेंगे क्रिकेट से, जहां एशियाई खेल 2026 सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। साथ ही भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच का हाल भी जानेंगे। इसके अलावा नजर रहेगी नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट, फ्रेंच ओपन, विश्व योगासन चैंपियनशिप, अंडर 18 एशिया कप हॉकी, उलन पटार ओपन कुश्ती प्रतियोगिता और फुटबॉल से जुड़ी अहम खबरों से भी आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए बिना देर करे शुरुआत करते हैं खेल जगत की आज की प्रमुख खबरों के साथ।

0: भारतीय क्रिकेट में एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। आने वाले अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों और प्रमुख प्रतियोगिताओं को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने कई महत्वपूर्ण टीम घोषणाएं की हैं। इस क्रम में श्रेयस अय्यर को भारतीय टी20 टीम की कमान सौंप दी गई है, जबकि तिलक वर्मा को उप कप्तान बनाया गया है। बीसीसीआई ने एशियाई खेल 2026 के लिए भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी है। जापान में होने वाले इस बहु खेल आयोजन में श्रेयस अय्यर की अगुवाई में भारतीय टीम स्वर्ण पदक की चुनौती पेश करेगी। टीम में अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम का भी ऐलान कर दिया गया है। इन दोनों दौरों पर भी टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर संभालेंगे। टीम में अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया गया है। वहीं श्रीलंका दौरे के लिए भारत ए टीम की घोषणा भी कर दी गई है। इस टीम की कप्तानी ध्रुव जुरेल करेंगे, जबकि देवदत्त पडिक्कल उप कप्तान होंगे। टीम में ऋतुराज गायकवाड़, साई सुदर्शन, हर्ष दुबे, अंशुल काम्बोज, गुरनूर बरार, शाइक रशीद, औकिब नबी, यश ठाकुर और एन जगदीशन जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। टीम चयन की सबसे बड़ी चर्चा युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर हो रही है। महज 15 वर्ष और 70 दिन की उम्र में भारतीय टीम में जगह बनाकर वैभव ने इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही वे भारतीय टीम का कॉलअप पाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं और उन्होंने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है, जिन्हें 16 वर्ष और 205 दिन की उम्र में पहली बार भारतीय टीम में शामिल किया गया था। अब सभी की निगाहें श्रेयस अय्यर की कप्तानी और युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी, क्योंकि भारतीय क्रिकेट के लिए आने वाला महीना काफी व्यस्त और महत्वपूर्ण रहने वाला है।
1: आने वाली टी20 श्रृंखलाओं के लिए भारतीय टीम के अनाउंसमेंट के बाद आज भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अपने 2026-27 के घरेलू सीजन का शंखनाद कर दिया है। आज उसका सामना तेजी से उभरती और बेहद खतरनाक अफगानिस्तान की टीम से हो रहा है, मुल्लानपुर नए चंडीगढ़ स्थित महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में। इस स्टेडियम में अभी तक कोई टेस्ट मैच नहीं खेला गया है। यह अपना ऐतिहासिक पहला टेस्ट मैच आयोजित कर रहा है। भारत ने दो तेज गेंदबाजों प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज को टीम में शामिल किया है। दोनों टीमों के दो खिलाड़ियों का टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण हुआ है। भारत की ओर से युवा स्पिनर मानव सुथार ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला है, जबकि अफगानिस्तान के लिए स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर नांग्यालिया खरोटे ने अपनी पहली टेस्ट कैप प्राप्त की। मानव सुथार एक 23 वर्षीय उभरते हुए भारतीय क्रिकेटर हैं, जो एक गेंदबाजी ऑलराउंडर के रूप में खेलते हैं। वे पारंपरिक धीमे बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं और निचले क्रम

में उपयोगी बल्लेबाजी भी करते हैं। सुथार घरेलू क्रिकेट में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा इंडियन प्रीमियर लीग में गुजरात टाइटंस का हिस्सा हैं। आज पहले दिन के खेल में भारत के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर अफगानिस्तान के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने का विकल्प चुना। दिन के पहले सेशन में भारत ने एक विकेट के नुकसान पर 96 रन बनाए, जिस सेशन में यशस्वी जायसवाल ने 24 रन बनाकर अपना विकेट खोया। वहीं दूसरे सेशन में भारत ने एक और विकेट के नुकसान पर 113 रन बनाए। साई सुदर्शन और केएल राहुल ने अपने अर्धशतक पूरे किए। इसी सेशन में साई सुदर्शन 81 रन बनाकर आउट हुए। दिन के तीसरे सेशन में भारत ने 216 रन और जोड़े एक विकेट के नुकसान पर। पहला दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने एक मजबूत स्थिति पकड़ ली है, जहां उसका स्कोर 85 ओवर में 368 रन है। शुभमन गिल 103 रन बनाकर खेल रहे हैं, वहीं ऋषभ पंत 50 रन बनाकर नॉट आउट हैं। केएल राहुल ने भी अपनी सेंचुरी पूरी करी।

0: क्रिकेट में भारतीय जलवे के बाद अब चलते हैं बुद्धि और रणनीति के सबसे बड़े अखाड़े में, बात अब शतरंज की, जहां बिसात पर हर चाल इतिहास बदल सकती है। नॉर्वे के ओस्लो में संपन्न हुए नॉर्वे चेस 2026 टूर्नामेंट में इस बार भारतीय शतरंज खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। यह टूर्नामेंट ओपन और महिला दोनों वर्गों में बेहद रोमांचक रहा, जहाँ हर राउंड के बाद अंक तालिका में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिला। ओपन सेक्शन में भारत के युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने असाधारण फॉर्म दिखाया। छठे राउंड के बाद आर प्रज्ञानंदा छठे यानी अंतिम पायदान पर थे। सातवें राउंड में उन्होंने फ्रांस के अलीरजा फिरोजा को, आठवें राउंड में विश्व नंबर एक मैग्नस कार्लसन को और नवें राउंड में विश्व चैंपियन हमवतन डी गुकेश को और दसवें राउंड में जर्मनी के विंसेंट कीमर को क्लासिकल गेम्स में मात देकर अंतिम चार राउंड में 12 अंक अर्जित करके नॉर्वे चेस का खिताब अपने नाम किया। वहीं विश्व चैंपियन डी गुकेश के लिए टूर्नामेंट उतार चढ़ाव भरा रहा। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण जीत दर्ज की, लेकिन लगातार स्थिरता बनाए रखने में संघर्ष किया और अंतिम चरण तक उनका प्रदर्शन मिला जुला रहा। अन्य शीर्ष खिलाड़ियों कार्लसन, फिरोजा और वेस्ली सो के बीच भी कड़ी टक्कर देखने को मिली, जिससे अंतिम राउंड तक खिताबी मुकाबला खुला रहा, खिताब अपने नाम कर लिया। भारत की कुनेरू हम्पी और युवा खिलाड़ी दिव्या देशमुख ने भी मजबूत मुकाबले खेले, हालांकि वे शीर्ष स्थानों तक नहीं पहुंच सकी। दिव्या ने कई राउंड में अच्छे खेल से अपनी क्षमता का परिचय दिया, जबकि हम्पी को कड़े मुकाबलों में अनुभव का लाभ उठाने का प्रयास करते देखा गया। कुल मिलाकर नॉर्वे चेस 2026 भारतीय शतरंज के लिए एक यादगार टूर्नामेंट साबित हुआ, जहां प्रज्ञानंदा का प्रदर्शन सबसे बड़ा आकर्षण रहा और भारतीय खिलाड़ियों ने विश्व स्तर पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। फाइनल रैंकिंग में नॉर्वे चेस 2026 ओपन में भारत के आर प्रज्ञानंदा चैंपियन रहे। रनर अप थे यूएसए के वेस्ली सो और तीसरे स्थान पर रहे फ्रांस के अलीरजा फिरोजा। वहीं नॉर्वे चेस महिला 2026 की फाइनल रैंकिंग में कजाकिस्तान की बिबिसारा असाउबेवा चैंपियन रहीं, वहीं चाइना की जू जाइनर रनर रहीं और यूक्रेन की एना मुजीचुक तीसरे स्थान पर रहीं। अपनी चैंपियनशिप जीत के बाद आर प्रज्ञानंदा ने अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त किया, आइए सुनते हैं।
1: Yeah, I still don't feel like I just won. Yeah, I mean, once I started feeling like I'm winning, I started to feel a lot of tension. I do feel like some sort of I'm still in that same zone, I think. Yeah, it's much more important that I win the tournament, winning for classical games.
0: Norway Open महिला 2026 की चैंपियन बीबी सारा असाउबाएवा ने अपनी जीत के बाद अपने विचार साझा किए।
2: I'm feeling very good and very happy. I think this tournament going very well for me. And yeah, I'm happy to finish the tournament before the round.
3: खेल के मैदान से लेकर दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम तक, एक ऐसी दीवानगी जो दिलों की धड़कनें बढ़ा देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फुटबॉल की। 90 मिनट का रोमांच, 22 जाबाज खिलाड़ी और सिर्फ एक लक्ष्य, विपक्षी खेमे के गोल में बॉल डालना और अपने खेमे में गोल ना होने देना। अब समय है उस महाकुंभ की बात करने का, जहां सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। मैदान तैयार है, सितारे सच

0: विश्व कप की शुरुआत से पहले आकाशवाणी हर दिन एक समूह की टीम से जुड़ी जानकारी लेकर आता है। इस श्रृंखला की छठी कड़ी में आज हम ग्रुप एफ के बारे में बात करेंगे। ग्रुप एफ बेहद संतुलित और प्रतिस्पर्धी माना जा रहा है, जिसमें शामिल हैं नीदरलैंड्स, जापान, स्वीडन और ट्यूनिशिया। चारों टीमें अलग अलग महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं और अपने साथ समृद्ध फुटबॉल इतिहास लेकर आई हैं। सबसे पहले बात करेंगे नीदरलैंड्स की। विश्व फुटबॉल की सबसे जानी मानी टीमों में गिने जाने वाली नीदरलैंड्स ने भले ही अभी तक कोई विश्व कप ना जीता हो, लेकिन उसका रिकॉर्ड शानदार रहा है। डच टीम 1974, 1978 और 2010 में फाइनल तक पहुंची और उपविजेता रही। टोटल फुटबॉल की अपनी अनोखी शैली के कारण यह टीम दुनिया भर में मशहूर है। विश्व कप 2026 के क्वालिफिकेशन अभियान में भी नीदरलैंड्स ने दमदार प्रदर्शन किया। टीम अपने ग्रुप में अपराजित रही और प्रभावशाली गोल अंतर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। अनुभवी खिलाड़ियों और मजबूत सामूहिक खेल के दम पर वह इस बार खिताब की प्रबल दावेदारों में से एक है। बात जापान की करें तो एशियाई फुटबॉल की सबसे सफल टीमों में से एक जापान लगातार 8वें विश्व कप में हिस्सा लेने जा रहा है। 1998 के बाद से जापान ने कभी विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में असफलता नहीं देखी है। टीम 4 बार अंतिम 16 में पहुंच चुकी है और हाल के वर्षों में उसने कई बड़ी टीमों को हराकर अपनी क्षमता साबित की है। जापान विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली शुरुआती टीमों में शामिल रहा। तेज पासिंग, तकनीकी कौशल और अनुशासित खेल इसकी सबसे बड़ी ताकत हैं। इस बार जापान का लक्ष्य पहली बार क्वार्टर फाइनल तक पहुंचना होगा।
1: अब चर्चा स्वीडन की। स्वीडन का विश्व कप इतिहास भी काफी गौरवशाली रहा है। 1958 में उसने अपने घरेलू मैदान पर विश्व कप फाइनल खेला था। इसके अलावा 1950 और 1994 में टीमें तीसरे स्थान पर रहीं। हाल के वर्षों में भी स्वीडन ने लगातार बड़े टूर्नामेंटों में प्रतिस्पर्धी प्रदर्शन किया है। कठिन क्वालिफिकेशन अभियान के बाद स्वीडन ने प्लेऑफ के जरिए विश्व कप का टिकट हासिल किया। टीम की पहचान उसके अनुशासित खेल, मजबूत रक्षा पंक्ति और सामूहिक प्रयास से होती है। स्वीडन को इस समूह का संभावित डार्क हॉर्स माना जा रहा है। अब बात करते हैं ट्यूनिशिया की। अफ्रीका की अनुभवी टीमों में शामिल ट्यूनिशिया 7वीं बार विश्व कप में भाग लेगी। हालांकि वह अब तक कभी नॉकआउट चरण में नहीं पहुंच सकी है, लेकिन उसके नाम एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज है। 1978 में ट्यूनिशिया विश्व कप मैच जीतने वाला पहला अफ्रीकी देश बना था। विश्व कप 2026 के क्वालिफिकेशन में ट्यूनिशिया ने शानदार रक्षात्मक प्रदर्शन किया और अपने समूह में शीर्ष स्थान हासिल किया। टीम की सबसे बड़ी ताकत उसका संगठित खेल और मजबूत डिफेंस है। इस बार उसका लक्ष्य इतिहास रचते हुए पहली बार नॉकआउट दौर में पहुंचना होगा। अगर पूरे ग्रुप एफ की तस्वीरें देखें तो कागजों पर नीदरलैंड सबसे मजबूत टीम दिखाई देती है, लेकिन जापान की निरंतरता, स्वीडन का अनुभव और ट्यूनिशिया की जुझारू शैली इस समूह को बेहद रोचक बनाती है।
0: आइए ग्रुप एफ में शामिल टीमों की मौजूदा विश्व रैंकिंग पर एक नजर डालते हैं। इस ग्रुप में नीदरलैंड्स विश्व रैंकिंग में 8वें स्थान के साथ सबसे मजबूत स्थिति में है। जापान 18वें तो स्वीडन 38वें और ट्यूनिशिया 46वें स्थान पर है। यही वजह है कि फुटबॉल विशेषज्ञ ग्रुप एफ को विश्व कप 2026 के सबसे रोमांचक समूहों में से एक मान रहे हैं। यहां हर मैच महत्वपूर्ण होगा और छोटी सी गलती भी टीमों को आगे की राह मुश्किल बना सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या नीदरलैंड्स अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप प्रदर्शन कर पाएगा, जापान इतिहास रचेगा, स्वीडन फिर कोई बड़ा उलटफेर करेगा या ट्यूनिशिया पहली बार नॉकआउट चरण में जगह बनाएगा। इन सवालों के जवाब मिलेंगे फीफा विश्व कप 2026 में। ग्रुप एफ के मुकाबले 14 जून से शुरू होंगे। पहले दिन आर्लिंगटन के AT&T स्टेडियम टेक्सास में नीदरलैंड्स का सामना जापान से होगा, जबकि मेक्सिको के मोंटेरेरे में स्वीडन और ट्यूनिशिया आमने सामने होंगे। 20 जून को नीदरलैंड्स और स्वीडन ह्यूस्टन में भिड़ेंगे, जबकि जापान और ट्यूनिशिया मोंटेरेरे में खेलेंगे। ग्रुप चरण के अंतिम मुकाबले 25 जून को होंगे, जहां जापान का सामना स्वीडन से टेक्सास में और ट्यूनिशिया का मुकाबला नीदरलैंड से कैंसस सिटी में होगा।

है प्यार तू गोरे भैया।

0: हेलो ग्राम संसार।
1: हेलो, नमस्ते सर।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
1: सत्यदेव सागर, ग्राम सरवन्ना, थाना छतारी, जनपद बुलंदशहर से बोल रहा हूँ सर।
0: सागर साहब, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: तेजवीर बिदूरी जी की आवाज में कोई रागिनी भजन सुनवाओ।
0: जरूर सुनवाएंगे।
1: दो नाम लेना चाहूंगा, पत्नी संतोष देवी, बेटा शिवदत्त सागर, सुधीर सागर, अंकित सागर।
0: हेलो ग्राम संसार
2: जी। भाई जी, राम राम।
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: गणगंगा नई बात से बोल रहा हूँ, घनश्याम।
0: घनश्याम भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: आज सुनवाइए तेजवीर को।
0: जरूर सुनवाएंगे।
2: दो एक नाम ले लूं?
0: हाँ बोल दीजिए।
2: मेरी बहन है ज्ञानवती है, और आनंदी है, प्रधान जी है गेंदा, और आकाश पानी को सबको राम राम।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
3: राम राम जी।
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
3: मोहल्ला दौजवाला, शिकारपुर बुलंदशहर से बबली कुमार प्रजापति बात कर रहा हूँ जी।
0: बबली जी, बताइए आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: आज हमें तेजवीर बिदूरी जी की आवाज में अच्छी तरह से सुनवा दो।
0: जरूर सुनवाएंगे।
3: और हमारे परिवार के नाम नोट कर लो जी।
0: जी कराएं।
3: पत्नी है पुष्पा देवी, लड़की डॉली कुमारी, लड़का मोनू कुमार, लड़की है पूजा रानी, एक लड़का छोटा भीम।
0: चलिए, कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
4: हेलो ग्राम संसार, नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
4: मैं जी डोंगरा हेर जिला महेंद्रगढ़ से पंडित यादराम पटवारी बोल रहा हूँ जी।
0: यादराम जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: सुनाओ जी, तेजवीर बिदूरी जी के।
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार।
5: नमस्कार शशि भाई जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
5: जयपाल सिंह, ग्राम से रामपुर मनिहारा, जिला सहारनपुर, यूपी से बोल रहा।
0: जयपाल जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: तेजवीर बिदूरी की बोल सुनेंगे जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
5: और जी चारक नाम है।
0: हाँ बोल दीजिए।
5: एक मेरा पुत्ता है दुष्यंत पवार, पुत्री है श्रद्धा पवार, मिट्टू पवार, मेरी पत्नी है संतोष। नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
6: ग्राम संसार,
0: कौन भाई बोल रहे हैं?
6: बसंत कुमार ठाकुर, ग्राम भिरई, नयापारा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से।
0: बसंत भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
6: तेजवीर।
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार।
7: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
7: मैं जगदीश चिंडालिया बोल रहा हूँ जी, डाने जिला भिवानी जी।
0: जगदीश भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
7: तेजवीर को सुना देना जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
7: बच्चों के भी नाम है जी।
0: हाँ बोल दीजिए।
7: राजवीर चिंडालिया, सतीश चिंडालिया, ऋतिक चिंडालिया, केड़ा देवी जी। नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर तेजवीर बिदूरी से ये रागनी। किस्सा रहेगा सेठ ताराचंद का।

0: तो बहन भाइयों, ये था आज का फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक फोन कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, फोन करने के लिए नंबर है 0112346731 और दूसरा नंबर है 0112346732। इन दोनों नंबरों पर आप फोन करके अपने पसंद के कलाकार को सुनने के लिए फरमाइश रिकॉर्ड करवा सकते हैं।
0: और बहन भाइयों, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इसी के साथ कार्यक्रम ग्राम संसार के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी बहन भाइयों को राम।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, शाम के 7 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकाल विकास प्राथमिकताओं से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया। युवा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने

0: कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को यह मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नवन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली है और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में आर्थिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो और 15 और 20 किलो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड़ तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 2 शतकीय पारी खेली। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानी पूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी। मौसम विभाग ने केरलम और माही में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम। तो नीलम बहन, हम हाजिर हैं अपने किसान बहन भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम कृषि जगत लेकर के। नीलम बहन, हमारे किसान बहन भाई अपने खेतों से अधिक उत्पादन लेने के लिए

0: अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। अब इससे देखिए फायदा तो कम हो रहा है लेकिन नुकसान ज्यादा हमारे किसान भाइयों को हो रहा है। वो कैसे? क्योंकि एक तो खेती में इससे लागत बढ़ रही है और साथ ही साथ जो खेत की मिट्टी है, मृदा है, उसका स्वास्थ्य बेकार हो रहा है। जल, वायु और वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है और जो भी उत्पाद मिलता है हमें रासायनिक खादों और कीटनाशकों के उपयोग से, वो स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक हो सकता है ये हम जानते ही हैं। इसीलिए इस प्रकार की सभी समस्याओं से निपटने के लिए जैविक खेती करने की सलाह जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं, विशेषज्ञ हैं, वो किसान भाइयों को दे रहे हैं। हमारे किसान भाई रासायनिक खेती की जगह जैविक खेती करें ताकि अच्छा उत्पाद सबको मिल सके।
1: बिल्कुल शशि भाई, और भारत सरकार भी इस खेती को अपनाने के लिए प्रचार प्रसार कर रही है और साथ ही राष्ट्रीय जैविक खेती मिशन भी चला रही है, जिसके अंतर्गत जैविक खेती करने वाले किसान भाइयों को वित्तीय सहायता भी दी जाती है और जैविक खेती करने के नए नए तौर तरीके भी सिखाए जाते हैं। रासायनिक उर्वरकों के बेतहाशा प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति दिन प्रतिदिन नष्ट होती जा रही है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बचाने में जैविक उर्वरक काफी कारगर हैं। तो किसान भाई जैविक खेती करके कम लागत में अधिक उत्पादन कर सकते हैं। इसके लिए बस जरूरत है तो किसानों को जागरूक होकर जैविक खेती करने के तौर तरीकों से भली भांति परिचित होने की।
0: बिल्कुल, जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत तो कम होती ही है, इसके साथ ही आप किसान भाइयों को आय अधिक प्राप्त होती है और अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में जैविक उत्पाद अधिक खरे उतरते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सामान्य उत्पादन की अपेक्षा में आप किसान भाइयों को अधिक लाभ होता है क्योंकि जैविक उत्पाद अधिक मूल्य पर बिकते हैं। और किसान भाइयों, आधुनिक समय में निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि की उर्वरा शक्ति का संरक्षण और मानव स्वास्थ्य के लिए जैविक खेती करना बहुत ही जरूरी है। अब किसान भाइयों, जैविक खेती तभी होगी जब आपके पास जैविक खाद होगा, बर्मी कंपोस्ट होगा। अब जैविक खाद कैसे तैयार करें, किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और फिर खेती में इसको कैसे इस्तेमाल करें ताकि हमारे जो खेत की उर्वरा शक्ति है वो अच्छी बनी रहे और खेती में लागत कम आए, तो इन्हीं सब बातों की जानकारी के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सीमा सागवान जी। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में, और आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे जैविक खाद एवं वर्मी कंपोस्ट निर्माण के बारे में। तो डॉक्टर सीमा सागवान जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि जैविक जो खाद है वो क्या है और इसका महत्व क्या है।
2: जैविक खाद वह खाद है जो पौधों एवं पशुओं के अवशेषों, गोबर, फसल अवशेषों तथा अन्य जैविक पदार्थों के अपघटन से तैयार होती है। यह जैविक खाद मिट्टी की उर्वर शक्ति को बढ़ाती है, मिट्टी की जो जल धारण की क्षमता है उसमें बहुत सुधार करती है, जो मिट्टी में लाभकारी सूक्ष्म जीव हैं उनकी संख्या को बढ़ाती है और फसलों को एक संतुलित पोषण प्रदान करती है। इसके नियमित प्रयोग के कारण रासायनिक उर्वरकों पर हमारी निर्भरता कम होती है, जिससे आपकी लागत भी कम होगी और टिकाऊ कृषि को एक बढ़ावा मिलता है।
0: बिल्कुल, अब बात करें जैसे कि कौन कौन से प्रकार के जैविक खाद उपलब्ध हैं, और जैसा कि आप जानते हैं खरीफ फसलों की बिजाई का समय चल रहा है, तो हमारे किसान भाई किन किन खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
2: सबसे पहले हमें यही जानने की जरूरत है कि कौन कौन सी जैविक खाद हमारे पास हैं, उपलब्ध होती हैं। अगर बाजार में जाके देखें या घरों में भी आप इसमें से बहुत सारी खाद है जो बना सकते हैं। सबसे पहले आती है गोबर की खाद। जो हमारे किसान भाई हैं, सबके घरों में पशु होते हैं जो गोबर निकालते हैं, उस गोबर को इकट्ठा करके आप उस गोबर से खाद बना सकते हैं, जो कि बहुत ही लाभकारी होती है फसलों के लिए और पौधों के लिए। उसके बाद कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है केंचुओं को इस्तेमाल करके। इसी तरह से हरी खाद बनाई जा सकती है और जैव उर्वरक, जिसका आप सभी ने नाम कहीं ना कहीं सुना होगा कि जैव उर्वरक, जैसे कि हम अपने पूसा संस्थान में भी माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में जैव उर्वरक बनाते हैं, वहां एक सेल काउंटर भी है जहां पे ये सब उपलब्ध है। तो ये जितने भी हमारी रासायनिक खाद है उसको हम कहीं ना कहीं उसका बहुत सारा परसेंटेज इससे प्लेस कर सकते हैं, इससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि अगर हम ये जैविक खादें इस्तेमाल करें तो। और अगर खरीफ फसलों की बात करें, ये समय है खरीफ फसलों की बिजाई चल रही है, तो इन खरीफ फसलों में जैसे कि धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंग, उड़द आदि में बुआई से 2-3 सप्ताह पहले अगर उस खेत में आप 5-10 टन प्रति हेक्टेयर अच्छे से ये खाद मिला दें तो इससे फसल की जो प्रारंभिक वृद्धि होगी वही इतनी बेहतर होने लगती है और वो पोषक तत्व जिसकी उसको जरूरत है, जिसकी वजह से हम रासायनिक अपनी खादें डालते हैं, वो बहुत आसानी

0: से हम इनको इस्तेमाल करके पूरा कर सकते हैं।
1: जैसे कि जैव उर्वरकों की हम बात करें तो क्या है ये जैव उर्वरक और जैविक खाद की तरह इनका इस्तेमाल होता है?
0: हाँ, जैव उर्वरक भी इसी तरह से हैं, जैसे कि हमारे पास जैव उर्वरक अब हमने स्पेसिफिक बना दिया, जैसे गोबर खाद है उसमें तो एक बहुत सारे तरह के आपको सूक्ष्म जीव मिल जाएंगे जो वो काम करेंगे, चाहे संतुलित पोषक तत्व देने हैं, कुछ भी देना है उसका काम करेंगे। लेकिन जैव उर्वरक स्पेसिफिक बनाए जाते हैं, जैसे कि हमारे पास राइजोबियम का कल्चर है जो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। अगर नाइट्रोजन चाहिए पौधे में तो वो राइजोबियम डाल के आप पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे हमारे पास कल्चर होते हैं, राइजोबियम का है, एजोटोबैक्टर है, एजोस्पायरलम है। इसी तरह से फॉस्फेट का सोल्युबलाइजर उपलब्ध है जो फॉस्फेट को घुलनशील बनाता है और वो पौधा आराम से ले लेता है। इसी तरीके से पोटाश के भी घुलनशील जीवाणुओं का एक जैव उर्वरक बनाया गया है। और इन्हीं के साथ साथ माइकोराइजा, शायद हमारे किसान भाइयों ने बहुत नाम सुना होगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में उसकी डिमांड कह लीजिए और उसकी जो जागरूकता है वो इतनी बढ़ चुकी है, क्योंकि माइकोराइजा एक ऐसा बायोफर्टिलाइजर है जो एक किसान को आंखों देखी वो फर्क दिखाता है 30 से 35 दिन के अंदर, क्योंकि ये जड़ों में विकास करता है, जड़ों में अपने आप को स्थापित करता है। उसके बाद वो जड़ें इतनी मजबूत हो जाती हैं, वो नींव इतनी मजबूत हो जाती है उस फसल की या उस पौधे की जिसमें वो माइकोराइजा डलता है, कि उसके बाद उसमें वो न्यूट्रिशन जो है, जितना भी पोषक तत्व है जो जमीन में है, जो पौधा वैसे नहीं ले पा रहा था, लेकिन माइकोराइजा डालने के बाद और वो अच्छी जड़ स्थापित होने की वजह से वो बहुत अच्छे से उन पोषक तत्वों को और पानी को भी बहुत आसानी से वो पौधा अपने आप अंदर ले लेता है और उसके पूरे उसमें वृद्धि होती है।
1: बिल्कुल, तो जो हमारे किसान भाई मान लीजिए रासायनिक खादों की जगह जैव उर्वरकों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनको कितना लाभ होता है, लागत में कितनी कमी आती है?
0: अगर देखिए हमारे पास जितने भी जैव उर्वरक हैं वो आपको 25 से लेकर 30% तक भी वो फायदा देते हैं। कि अगर फॉस्फोरस की बात करें, अगर आप माइकोराइजा डालेंगे तो आप 15 से 25% तक फॉस्फोरस जो डीएपी के थ्रू डाल रहे थे उसको कम कर सकते हो। तो इसी तरह से लागत नाइट्रोजन के केस में भी है कि वो भी यूरिया आप कम कर सकते हो इसी तरह से 25 से 30% अगर आप ये राइजोबियम और ये सब इस्तेमाल करेंगे, कल्चर इस्तेमाल करेंगे, एजोटोबैक्टर, एजोस्पायरलम। इसी तरीके से पोटाश और जिंक सोल्युबलाइजर भी है। और सबसे बड़ी बात कि रासायनिक खाद जो है वो बहुत महंगी है और ये बहुत ही सस्ते है और बहुत ही अच्छा विकल्प है, क्योंकि ना तो प्रदूषण होगा इसकी वजह से, ना पर्यावरण में कोई और दिक्कत आएगी, ना जल का प्रदूषण होगा, ना वायु का प्रदूषण होगा। और कहीं ना कहीं ये सूक्ष्म जीव जब हम दोबारा इनको डालेंगे तो ये और सूक्ष्म जीवों की भी वृद्धि करेंगे और उस जो हमारी मृदा है उसकी उपजाऊ शक्ति को भी बढ़ाएंगे।
1: आपने बात की थी गोबर की खाद की, तो पशुपालन हमारे किसान भाई करते ही करते हैं खेती के साथ साथ में, तो जो किसान भाई जैविक खाद के रूप में गोबर को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जैविक खाद कितने साल में बन जाता है? किसान भाई अपना इकट्ठा करते रहते हैं गोबर।
0: जैविक खाद सालों में नहीं बनता, इसके लिए दिनों की ही जरूरत होती है। अगर आप वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट की बात करेंगे तो ये गोबर की खाद जो है उसका इस्तेमाल करके और इसमें जो अवशेष हैं, जैसे पौधे लगे होते हैं उसकी पत्तियां गिरती हैं, उन पत्तियों का इस्तेमाल करके या जो हमारे किचन में जो वेस्ट आता है उन सबको इकट्ठा करके अगर हम ये खाद बनाना चाहें तो 45 से 60 दिन के अंदर ये बहुत अच्छी खादें तैयार की जा सकती हैं। और इनका थोड़ा सा तरीका अलग अलग है, लेकिन आप उस तरीके को फॉलो करें जो कि बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा कोई ऐसा तरीका नहीं, बहुत सिंपल तरीके हैं। कोई भी किसान भाई या जो युवा हैं वो कोई भी इसको पढ़ के आसानी से अपने घरों में तैयार कर सकते हैं।
1: तो जैसे आपने बताया वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, तो इसके लिए कुछ यंत्र की आवश्यकता होती है?
0: यंत्र की आवश्यकता नहीं है, इसमें सिर्फ आपको एक केंचुआ होता है जो एक स्पेसिफिक स्पीशीज होती है जिसे एसिना फाइटेडा के नाम से जाना जाता है। और केंचुआ खाद बनाने के लिए जो ये केंचुआ इस्तेमाल होता है, और इसमें क्या करते हैं ना, सबसे पहले अगर वर्मी कंपोस्ट किसी को बनाना है घर पे तो वो सबसे पहले क्या करे कि छायादार स्थान पर ईंटों या सीमेंट की सहायता से एक बेड बनाएं पहले, और उस बेड के अंदर सूखी पत्तियां, फसल अवशेष या घरों में जो हमारी रसोई का अवशेष है और आंशिक रूप से सड़ा हुआ जो गोबर है उनकी परतें बनाई जाती हैं, परत उसको भरा जाता है, और नमी बनाने के लिए थोड़ा सा पानी का छिड़काव भी किया जाता है और फिर उसमें केंचुओं को छोड़ दिया जाता है और फिर उस बेड को हम बोरी से या किसी घास के उससे परत से ढक देते हैं। और उसके बाद जब बीच बीच में उसको ऊपर नीचे उसको घुमाते हैं ताकि वो जो वायु है वो उसमें ऑक्सीजन अच्छे से चली जाए और वो जो बन रहा है वो अच्छे से बनता रहे, और 45 से 60 दिनों के अंतर वो वर्मी कंपोस्ट की तरह तैयार होता है। इस तैयार खाद को छानकर अलग किया जाता है और केचुओं को पुनः दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं हम अगली खाद बनाने के लिए। तो ये भूरे रंग की दानेदार खाद की तरह तैयार होती है जो कि बहुत ही लाभकारी है हमारी फसलों के लिए और पौधों के लिए।
1: तो जो भी हमारे किसान भाई वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं या बनाना चाह रहे हैं, तो खासकर बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है?
0: देखिए, सबसे पहले तो इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से अगर सोचेंगे तो इसमें एक जीवित चीज है केंचुआ। अगर वो केंचुआ बहुत ही ज्यादा गर्मी अगर वहां हो

0: जाए तो भी वो मर जाते हैं, ज्यादा पानी भर जाए तो भी मर जाते हैं। तो सबसे पहले गर्मी और पानी का आपको एक संतुलन रखना होगा, और हमेशा ये इकाई हमेशा एक छायादार जगह पे बनानी चाहिए आपको, वहां पे ही रखना चाहिए। बेड में 60-70% नमी बनाए रखें, ऐसा ना हो कि पानी ऊपर तक भर जाए या ऐसा जमा होने लगे। और उसके बाद ताजा गोबर, प्लास्टिक, कांच, धातु या रासायनिक पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसमें गोबर भी जो है थोड़ा सा सड़ा हुआ इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव ज्यादा होते हैं। तो ये प्लास्टिक और ये कांच वगैरह उसमें ना हो, और बहुत अत्यधिक गर्मी, धूप और अन्य कीटनाशक जो है वो ना इस पे छिड़के जाएं, क्योंकि केंचुओं को बचाना बहुत आवश्यक होता है। और समय समय पर नमी और तापमान, जो कि दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनकी आपको जांच करनी चाहिए।
1: बिल्कुल, तो बर्मी कंपोस्ट की बात हम कर रहे हैं, तो जो हमारे खासकर युवा साथी हैं और युवा किसान भी हैं, वो चाहते हैं तो अपने खेतों के लिए बर्मी कंपोस्ट का निर्माण करें, अपने खेतों में उसको इस्तेमाल करें। और दूसरी बात आती है कि निर्माण कर रहे हैं तो क्यों ना व्यापारिक स्तर पर निर्माण किया जाए, ताकि हमारे अन्य किसान भाइयों के लिए भी इसका उपयोग लाया जा सके। तो किस तरह से आप रोजगार की दृष्टि से हमारे युवा साथियों को इस क्षेत्र में आने के लिए क्या कहना चाहेंगे?
0: जी, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन की अगर दृष्टि से देखेंगे तो व्यवसाय के रूप में आसानी से अपनाया जा सकता है, क्योंकि एक लाभकारी ग्रामीण उद्यम है। किसान कम लागत में उपलब्ध जो गोबर होता है, कृषि अवशिष्ट होते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बाहर से कुछ खरीदना पड़ेगा। एक रॉ मटेरियल हर चीज को, बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए होता है। ये रॉ मटेरियल आपके पास सब कुछ है, आपके पास गोबर खाद है, आपके पास कृषि के अवशिष्ट है, उनका उपयोग करके। सिर्फ आपको केंचुआ जरूर एक बार खरीदना होगा, वो भी आप एक बार खाद बनने के बाद उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसका उपयोग करके गुणवत्तापूर्ण वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। वर्तमान जैविक खेती में वैसे भी प्रचलन बहुत बढ़ रहा है, वर्मी कंपोस्ट की कहें या और जैव उर्वरकों की मांग कहें, ये बहुत बढ़ रही है। हमारी सरकार भी इसी दिशा में चल रही है। तो इसके साथ साथ वर्मी वॉश और केंचुओं की बिक्री से भी अधिक आय की जा सकती है, कि जैसे आपके पास केंचुए हैं, वो भी अपने आप को हर बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बढ़ेंगे, तो उनको भी बेचा जा सकता है जो वर्मी कंपोस्ट में काम आएंगे। तो इस तरह यह रोजगार सृजन के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो हमारे किसान भाइयों के लिए ये बहुत ही लाभकारी एक उपाय हो सकता है आय कमाने का।
1: बिल्कुल, क्षेत्र कोई भी हो, कुछ भी हमारे किसान भाई शुरू करना चाहते हैं, बात हम बर्मी कंपोस्ट निर्माण की कर रहे हैं, तो कोई प्रशिक्षण ट्रेनिंग भी इसकी चलती है, ताकि वो सीख करके अपना जो खुद का प्लांट लगा सके और बर्मी कंपोस्ट का निर्माण कर सके।
0: जी हाँ, कंपोस्ट की ट्रेनिंग, फार्मयार्ड मैन्योर की ट्रेनिंग और वर्मी कंपोस्ट की ट्रेनिंग है, ये आप ICR के इंस्टीट्यूट्स में कहीं पे भी देखेंगे, वो बहुत आसानी से आपको कहीं ना कहीं वो विकल्प मिल जाएंगे। नई दिल्ली में भी ये सारी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, तो हमारे किसान भाई आकर देख भी सकते हैं और पता भी कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं कि किस तरह से ये सब तैयार किया जाता है। उनको वो पिट्स दिखाई जाएंगी, किस तरह से बेड तैयार होते हैं, किस तरह से वो जब खाद बन जाती है तो उसकी क्वालिटी को कैसे टेस्ट कर पाएंगे, थोड़ा सा देख के कैसी वो खाद आपकी अच्छी बनी है कि नहीं बनी है, तो वो सारे मापदंड उनको वो सब सिखाया जाता है, सब दिखाया जाता है।
1: डॉक्टर सीमा सांगवान जी, इन दिनों भारत सरकार का खेती बचाओ अभियान चल रहा है, जिसके अंतर्गत संतुलित उर्वरक प्रबंधन की बात की जा रही है, तो इसमें जैविक खाद और बर्मी कंपोस्ट की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है?
0: जी, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये जो हमारा अभियान है, हमारे मिनिस्टर साहब ने चलाया है, ये इसी पर डिपेंडेंट है कि किस तरह से जो हमारी रासायनिक खादें हैं उनको छोड़कर हमें ये जो जितनी भी जैविक खादें हैं, जैसे कि कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, और अगर हम जैव उर्वरक की बात करें तो जैसे कि पूसा माइकोराइजा, पूसा डीकम्पोजर, पूसा संपूर्ण, पूसा बायोपोटाश, बायोफॉस, बायोजिंक, एजोटोबैक्टर, हम इस अभियान के जरिए ये सब हमारे किसान भाइयों को अलग अलग गाँव में जाकर हर रोज यही अलग अलग टीम्स में हम जाते हैं और यही अवेयरनेस, हम जागरूकता फैला रहे हैं कि किस तरह से रासायनिक खादों के उपयोग की बजाय वो इनका इस्तेमाल शुरू करें और फिर देखें कि किस तरह से बीमारियां भी कम होंगी और प्रदूषण भी कम होगा। सबसे पहले उसमें अगर मेन बात करें तो सबसे पहले हम सॉयल टेस्टिंग की बात उनको समझाते हैं कि जिस तरह से एक शरीर को चेक किया जाता है कि उसमें किस चीज की कमी है, उसके हिसाब से उसको वो पोषक तत्व दिया जाए, इसी तरह से हमारे किसान भाइयों को भी हम इस अभियान के जरिए यही समझा रहे हैं कि सबसे पहले तो अपनी मृदा का चेकअप कराएं, समझें कि उसमें किस चीज की जरूरत है। बहुत बार ऐसा होता है कि उसमें पहले से पूर्ति है, लेकिन हम ऊपर से बिना जानकारी के उसको डाले जा रहे हैं, जो कि जमीन में नीचे जा रहा है या फिर वो पानी में घुल के हमारी नदियों में मिक्स हो रहा है, जो कि हमारी पशु भी पीते हैं और हम लोग भी शायद पीते हैं, तो वो रसायन जो है वो हमारे शरीर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आता है। तो उसकी बजाय सबसे पहले हमें एक सॉइल टेस्ट कराना चाहिए, अपनी मृदा का टेस्ट कराओ, उसमें ये समझो कि किस चीज की पूर्ति करनी है और उसके हिसाब से जैव उर्वरकों का इस्तेमाल करो, उनका चयन करो और उनको डालो, क्योंकि जितना जैव उर्वरक इस्तेमाल करेंगे

0: उतनी ही जो पोषक तत्व है और मृदा की शक्ति है वो उतनी ही बढ़ती रहेगी।
1: बिल्कुल डॉक्टर सीमा सांगवान जी, हमारे किसान भाई ज़रूर आपकी बातों का ध्यान रखेंगे और रासायनिक खादों की जगह जैविक खाद वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करेंगे ताकि उनके खेत की मृदा स्वस्थ रहे और स्वस्थ अच्छा उत्पादन मिल सके, ताकि हमारे जो उपभोक्ता हैं उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, अपने देश का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। डॉक्टर सीमा सांगवान जी, कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब किसान बहन भाइयों, आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं मूलचंद शर्मा।
2: अरे मोहन

0: किसान बहन भाइयों, आप सुन रहे थे उपदेश, और कलाकार थे मूलचंद शर्मा।
1: नीलम बहन, एकीकृत बागवानी विकास मिशन यानी कि MIDH भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य फलों, सब्जियों, फूलों, मसालों और औषधीय पौधों की खेती में तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके बागवानी क्षेत्र का समग्र विकास करना है।
0: बिल्कुल, और इस मिशन का उद्देश्य बागवानी फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाकर किसानों की आय में वृद्धि करना है, और फसल कटाई के बाद नुकसान को कम करने के लिए कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं विकसित करना है, और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर युवाओं के लिए बागवानी और प्रसंस्करण के क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करना है।
1: बिल्कुल नीलम बहन, इस मिशन में केंद्र सरकार की 5 प्रमुख योजनाओं को एकीकृत किया गया है, जिसमें पहली योजना है राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जो पूरे देश में बागवानी के विकास के लिए काम करती है। दूसरी योजना है पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन, जो दुर्गम और पहाड़ी इलाकों के लिए काम करती है। तीसरी है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, जो व्यावसायिक बागवानी और कोल्ड स्टोरेज के लिए काम करती है। चौथी है नारियल विकास बोर्ड, जो नारियल की खेती और उत्पाद के लिए काम करती है। और पांचवी है केंद्रीय बागवानी संस्थान, जो नागालैंड में स्थित संस्थान द्वारा क्षमता निर्माण के लिए काम करती है।
0: बिल्कुल, और इस मिशन के तहत वित्तीय सहायता की अगर बात करें तो सामान्य राज्यों में कुल लागत का 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्यों में 90% हिस्सा केंद्र सरकार देती है।
1: बिल्कुल, और इसके अलावा स्टोरेज और कोल्ड चेन स्थापित करने के लिए सामान्य क्षेत्रों में 35% और उत्तर पूर्वी हिमालयी राज्यों में 50% तक की सब्सिडी का प्रावधान है। तो किसान बहन भाइयों, ये तो आपने जाना एकीकृत बागवानी विकास मिशन यानी कि MIDH के बारे में। और अब नीलम बहन, समय हो चला है कि अपने किसान बहन भाइयों से अनुमति ली जाए, कार्यक्रम को यहीं पर संपन्न किया जाए। लेकिन कार्यक्रम को संपन्न करने से पहले अपने किसान बहन भाइयों से कहना चाहेंगे कि आपको आज का ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 610, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, नई दिल्ली। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि जगत के प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी किसान बहन भाइयों को
0: राम
1: राम,
0: राम।
1: राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:30 और ठीक 10 सेकंड्स हुए हैं और हमारे श्रोता जानते हैं कि ये समय होता है आपको चुनिंदा गजलें सुनवाने का। तो आइए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं पंकज उधास साहब की इस गज़ल के साथ।

0: श्रोताओं, इसी के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा, देश का युवा विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने पिंक स्मार्ट कार्ड रजिस्ट्रेशन कैंप का शुभारंभ किया। और भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीता। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

0: ने बधाई दी। अब समाचार विस्तार से। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति है और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति है। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ए देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह सम्मेलन देश की युवाओं की आकांक्षाओं, रचनात्मकता और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि युवा कड़ी मेहनत, इनोवेशन और समर्पण के जरिए देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।
2: आज का ये प्रोग्राम शानदार है और ये कह रहा है कि देश का युवा देश की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है और ये भारत को आगे बढ़ाने की, नई ऊंचाइयों को छूने की ये जिम्मेदारी आज हमारा युवा ले रहा है। भारत का युवा मेहनती भी है, विजनरी भी है, क्रिएटिव भी है और साहसी भी है। देश के हर मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई में देश के खड़ा है।
0: कार्यक्रम में बिहार विधानसभा के सदस्य मैथिली ठाकुर, उद्यमी अमन गुप्ता, अभिनेता विक्रांत मैसी के साथ साथ कई कंटेंट क्रिएटर्स और खिलाड़ी उपस्थित थे। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि संशोधित नियमों के अंतर्गत स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम और 20 किलोग्राम है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष और रोहिणी विधानसभा से विधायक विजेंद्र गुप्ता ने आज अपने विधानसभा के सेक्टर 18 और सेक्टर 9 में पिंक स्मार्ट कार्ड रजिस्ट्रेशन कैंप का शुभारंभ किया। श्री गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस कैंप के माध्यम से महिलाओं को निशुल्क बस यात्रा के लिए पिंक स्मार्ट कार्ड वितरित किए जाएंगे। श्री गुप्ता ने विनोबा कुंज कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनके जल्द समाधान के निर्देश भी दिए। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि भगवान श्री बिरसा मुंडा का भारत के इतिहास में एक विशिष्ट और प्रेरणादायी स्थान है। श्री गुप्ता ने कहा कि धरती आबा के रूप में पूजनीय बिरसा मुंडा केवल एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, बल्कि स्वाभिमान, सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक जागरण के प्रतीक थे। उन्होंने यह बात आज इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी भगवान श्री बिरसा मुंडा जनजातीय भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण और संग्रहालयों में उनके प्रतिनिधित्व के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कही। एक रिपोर्ट।
3: अपने संबोधन में श्री गुप्ता ने कहा कि बिरसा मुंडा का आंदोलन केवल औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक पहचान, पारंपरिक संस्थाओं और स्वदेशी जीवन पद्धति की रक्षा का एक सशक्त प्रयास भी था। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब जनजाति समुदाय आर्थिक शोषण, सामाजिक विघटन और परंपराओं के शरण का सामना कर रहे थे, बिरसा मुंडा ने उनमें आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और सांस्कृतिक चेतना का नया संचार किया। जनजाति स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने, जनजाति गौरव दिवस मनाने और जनजातीय धरोहर के दस्तावेजी एकीकरण के प्रयासों का स्वागत करते हुए श्री गुप्ता ने इन्हें भारत के इतिहास की अधिक समावेशी समझ विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। संग्रहालयों की भूमिका पर बल देते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि संग्रहालय जिन कथाओं को प्रस्तुत करते हैं वे यह निर्धारित करते हैं कि आने वाली पीढ़ियां अपने राष्ट्र, अपने इतिहास और स्वयं को किस प्रकार समझेंगी। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि संग्रहालयों में जनजातीय समुदायों के अनुभवों

0: आकांक्षाओं, ज्ञान परंपराओं, सृजनात्मकता और राष्ट्रीय जीवन में योगदान को भी सार्थक रूप से प्रतिबिंब करना चाहिए। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने चंडीगढ़ में पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में युवाओं की रोजगार के अवसर बढ़ाने और उन्हें कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ने संबंधी विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने युवा सशक्तिकरण और कौशल विकास को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति का प्रमुख आधार बताया तथा युवाओं के लिए अवसर सृजित करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर भी बल दिया। इससे पहले श्री संधू ने मोहाली स्थित इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में आयोजित एक कार्यक्रम में व्यवसायियों से बातचीत की। दिल्ली के मंत्री और राजौरी गार्डन से विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज रघुवीर नगर क्षेत्र का जायजा लिया और स्थानीय निवासियों से बातचीत की। श्री सिरसा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने लोगों से विभिन्न मुद्दों तथा उनकी समस्याओं पर बात की। इस दौरान स्थानीय लोगों ने श्री सिरसा से सड़कों की स्थिति, नालियों की सफाई, पानी की लाइनों और सीवेज से जुड़े समस्याओं की जानकारी दी। वहीं श्री सिरसा ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को इन समस्याओं के समाधान में किसी भी तरह की देरी न किए जाने का भी निर्देश दिया। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज गुरु गोविंद सिंह सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया और वहां आयोजित चिकित्सकों के कार्यक्रम में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने कहा कि इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों से मुलाकात कर स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमारे डॉक्टर दिन रात समर्पण और सेवा भाव के साथ लोगों की देखभाल करते हैं, साथ ही उनका योगदान केवल इलाज तक सीमित नहीं है बल्कि समाज को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज ने आज नरेला बवाना रोड स्थित दृष्टि बाधित लोगों के लिए स्थापित NAB व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र का शिलान्यास किया। श्री इंद्राज ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दृष्टि बाधित जनों के सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता तथा जीवन की सुख सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में यह केंद्र एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से कौशल विकास, व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। श्री इंद्राज ने कहा कि दिव्यांगजन कल्याण और उनके सर्वांगीण विकास के लिए दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है। दिल्ली सरकार कल प्रकाश विहार शाहबाद एक्सटेंशन में लगभग 18 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों और नालियों के विकास कार्यों का शिलान्यास करेगी। बवाना विधानसभा से विधायक रविंद्र इंद्राज सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। इस अवसर पर श्री इंद्राज ने कहा कि बवाना विधानसभा में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने और क्षेत्र के समग्र विकास को गति देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज स्वामी दयानंद अस्पताल में नवनिर्मित उन्नत ऑपरेशन थिएटर ब्लॉक का उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट।
2: श्री प्रवेश वाही ने अस्पताल में लगभग 1,70,00,000 रुपए की लागत से स्थापित दो अत्याधुनिक 4K लेप्रोस्कोपिक सर्जरी सिस्टम और आर्थोपेडिक तथा 35,00,000 रुपए की लागत वाली ट्रॉमा सर्जरी के लिए आवश्यक सी आर्म मशीन का भी लोकार्पण किया। इन आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से अस्पताल में मरीजों को उच्च गुणवत्ता की सुरक्षित और सटीक सर्जिकल सुविधाएं मिल सकेंगी। इस अवसर पर महापौर श्री वाही ने कहा कि दिल्ली नगर निगम का लक्ष्य नागरिकों को बेहतर, सुलभ और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। वहीं स्थायी समिति के अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का समावेश समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इन अत्याधुनिक उपकरणों के माध्यम से मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध होगा और अस्पताल की कार्यक्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
1: दिल्ली के उप महापौर डॉक्टर मोनिका पंत ने विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के उपलक्ष्य में गाजीपुर लैंडफिल साइट का निरीक्षण किया। यह निरीक्षण दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे विशेष स्वच्छता और पर्यावरण जागरूकता अभियान के अंतर्गत किया गया। निरीक्षण के दौरान अन्य जनप्रतिनिधियों ने लैंडफिल साइट पर चल रहे बायो माइनिंग, कचरा निस्तारण, पर्यावरणीय सुधार तथा स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के अंतर्गत किए जा रहे विभिन्न कार्यों का जायजा लिया।

अधिकारियों ने उन्हें साइट पर संचालित गतिविधियों, कचरा प्रसंस्करण की वर्तमान स्थिति और भविष्य के कार्य योजना की जानकारी दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे।

किया। मंत्रालय ने कहा कि यह पहल अधिक समावेशी और काम के लिए जन केंद्रित माहौल को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लगभग 600 वर्ग मीटर में यह केंद्र बच्चों को एक अनुकूल, सुरक्षित और पोषक वातावरण प्रदान करेगा। यहां बच्चों को सीखने, खेलने, आराम करने के साथ साथ उनके विकास की भी सभी सुविधाएं मिलेंगी। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में प्रज्ञाना नंदा ने वीसेंट कीमर को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। वह इस चैंपियनशिप को जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस जीत पर उन्हें बधाई दी। राजधानी में आज पूरे दिन धूप रहने के साथ साथ हल्के बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा, देश का युवा विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति है। केंद्र सरकार ने कानून माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने पिंक स्मार्ट कार्ड रजिस्ट्रेशन कैंप का शुभारंभ किया। और भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीता, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बधाई दी। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का हिंदी प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, वक्त रात्रि के 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम मुशायरा।
1: सामईन की खिदमत में मोहम्मद अली कमाल का पुरखलूस आदाब। सामईन, यूँ तो हिंदुस्तान में रेडियो नशरियात की शुरुआत 1936 से पहले हो चुकी थी, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो का बाज़ाब्ता क़याम 8 जून 1936 में अमल में आया, जिसके 90 साल मुकम्मल हो रहे हैं। ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी की शानदार रिवायात रही हैं। मुसीकी का प्रोग्राम हो या नौजवानों का प्रोग्राम, या बराह रास्त कमेंट्री हो या फिर किसी हिंदुस्तानी जबान का अदब हो, सब ने अपनी एक अलग पहचान कायम की है। इन्हीं रिवायात में एक रिवायत आकाशवाणी से नशर होने वाले मुशायरों की भी रही है। हिंदुस्तान के बड़े बड़े शायरों का कलाम यहाँ से नशर किया जाता रहा है। इसी रिवायत को आगे बढ़ाते हुए आकाशवाणी के स्टूडियो में एक मुशायरे का अहतमाम किया गया, जिसमें शायरी के शायकीन ने भी शिरकत की। ये मुशायरा ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी के 90 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनाकिद किया गया। आइए सुनते हैं उसी मुशायरे का पहला हिस्सा। निज़ामत के फ़राइज जनाब मुइन शादाब अंजाम दे रहे हैं।
2: आज का ये जश्न जो आकाशवाणी के 90 बरस मुकम्मल होने के मौके पर मुनाकिद किया जा रहा है, किसी इदारे का जश्न नहीं है, बल्कि हिंदुस्तानी का, बल्कि पूरी दुनिया का जो मास मीडिया है और जिस तरह से सकाफत को बचाने की जो कोशिशें दुनिया भर में हो सकती हैं या कौमी यकजहती का जो पैगाम हो सकता है, आज का ये प्रोग्राम उन तमाम चीज़ों का जश्न है। तो आइए हम गुजारिश करें कि जहां आकर हमें ये लगता है कि तंजो मिजाह का वो सफ़र, अगर हम मुशायरों के हवाले से और उसके वक़ार के हवाले से बात करें जो दिलावर फिगार और नाजिद खयामी और सागर खयामी से होता हुआ हम तक पहुँचा था, कि वो सफ़र ठहर गया है पॉपुलर मेरठी पे आके।

0: खैर करे।
1: मन के वो उतने ही काले हैं, खुदा खैर करे, हर वरक पर है छपी गैर मोहज्जब तस्वीर। कितने बेहुदा रिसाले हैं,
0: खुदा खैर करे।
1: हर वरक पर है छपी गैर मोहज्जब तस्वीर, कितने बेहुदा रिसाले हैं, खुदा खैर करे। कितने बेहुदा रिसाले हैं, खुदा खैर करे। आइए फिर कुछ खतात। फनकार हम हैं, जहन की ऊंची उड़ान है, दुनिया ये जानती है हमारी जो शान है। और बेगम कहोगे हमको कहाँ तक बुरा भला, बस चुप रहो हमारे भी मुंह में जबान है। बस चुप रहो हमारे भी मुंह में जबान है, और फूलते जख्मों का मरहम ढूंढती रह जाओगी। अपना हमदर्द और हमदम ढूंढती रह जाओगी, जब कभी सूरज की किरणें तुम पे डालेंगी नजर, तुम मुझे मेरी शबनम ढूंढती रह जाओगी। तुम मुझे मेरी शबनम, फूलते जख्मों का मरहम ढूंढती रह जाओगी। अपना हमदर्द और हमदम ढूंढती रह जाओगी, जब कभी सूरज की किरणें तुम पे डालेंगी नजर, तुम मुझे मेरी शबनम ढूंढती रह जाओगी। और ये है सच के नेक नीयत कभी थी ना है ना होगी। ये है सच के नेक नीयत कभी थी ना है ना होगी। मेरे काम में शराफत कभी थी ना है ना होगी। मुझे नाद अपने फन पर कि मैं जेब काटता हूँ, मुझे मांगने की आदत कभी थी ना है ना होगी। मुझे नाद अपने फन पर कि मैं जेब काटता हूँ, मुझे मांगने की आदत कभी थी ना है ना होगी। सच है कि आदमी की है इज्जत खुदा के हाथ, पछताए मेरे घर में जरा सा बड़ा के हाथ। चार ईंटें उनके कांधे पे एक साथ गिर पड़ी, अंगड़ाई भी वो लेने ना पाए उठा के हाथ।
0: बहुत शुक्रिया जनाब पॉपुलर मेरठी साहब। आइए हजरात, एक और बड़ा अहम नाम उर्दू शायरी के जो चंद मुनफरिद लहजे हो सकते हैं उसमें, उन साहब का नाम शामिल है हमारे मोहतरम शायर, जिनको मैं आवाज़ देता हूँ। पहले उनके कुछ शेर सुनाता हूँ। हर घर में कोई तहखाना होता है, हर घर में कोई तहखाना होता है, तहखाने में एक अफसाना होता है। नाखून की बेचैनी बढ़ती जाती है जैसे जैसे जख्म पुराना होता है। और क्या शेर कहा है कि आसानी से राह नहीं बनती कोई, दीवारों से सर टकराना होता है। तो दीवारों से सर टकराने वाला शायर और तहों में उतरने वाला शायर तहखानों की, जिसे हम आलम खुर्शीद के नाम से जानते हैं, अलीगढ़ से तशरीफ लाए हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं। आलम खुर्शीद साहब,
2: बहुत शुक्रिया। गजल का मतलब समाप्त फरमाएं कि रास्ते में तेरे फूल बिछाने थे बिछाए।
0: वाह वाह वाह वाह।
2: रास्ते में तेरे फूल बिछाने थे बिछाए, आंखों में हंसी ख्वाब सजाने थे। रास्ते में तेरे फूल बिछाने थे बिछाए, आंखों में हंसी ख्वाब सजाने थे सजाए। और 100 काम जरूरी थे ना आना था ना आया, 100 काम जरूरी थे ना आना था ना आया, उसको तो बहाने ही बनाने थे। कि 100 काम जरूरी थे ना आना था ना आया, उसको तो बहाने ही बनाने थे बनाए। और वादे पे हमें उसके भरोसा ही कहाँ था,
0: वादे पे हमें उसके भरोसा ही कहाँ था। वाह वाह वाह।
2: वादे पे हमें उसके भरोसा ही कहाँ था, हमको भी कहीं रंग जमाने थे
0: जमाए।
2: वादे पे हमें उसके भरोसा ही कहाँ था,
0: वाह वाह वाह,
2: हमको भी कहीं रंग जमाने थे जमाए। होना था पशेमा ही पशेमान हुआ वो,
0: वाह।
2: होना था पशेमा ही
0: पशेमान हुआ वो,
2: पशेमान हुआ वो, हमको भी जरा अश्क बहाने थे बहाए। होना था पशेमा पशेमान हुआ वो, और हमको भी जरा अश्क बहाने थे बहाए। और हमको भी गजल झूठी सुनानी थी सुनाई।
0: भाई वाह वाह वाह वाह। हमको भी गजल झूठी सुनानी थी सुनाई,
2: हमको भी गजल झूठी सुनानी थी सुनाई, उसको भी फसाने ही सुनाने थे।
0: वाह वाह वाह।
2: हमको भी गजल झूठी सुनानी थी सुनाई, اور اس کو بھی فسانے ہی سنانے تھے۔

0: सुनाए।
1: वाह।
0: और फिर उसकी गली में ही भटकना था सो भटके, फिर उसकी गली में ही भटकना था सो भटके, गुजरे हुए लम्हे हमें याद आने थे। फिर उसकी गली में ही भटकना था सो भटके, गुजरे हुए लम्हे हमें याद आने थे। आए और जो अहले मोहब्बत थे रहे दिल में हमेशा।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: जो अहले मोहब्बत थे रहे दिल में हमेशा, जो गैर जरूरी थे बुलाने थे बुलाए। जो अहले मोहब्बत थे रहे दिल में हमेशा, जो गैर जरूरी थे बुलाने थे बुलाए, रास्ते में तेरे फूल बिछाने थे बिछाए, आंखों में हंसी ख्वाब सजाने थे सजाए। एक दूसरी गजल देखें कि कहा कि मिलने आई थी सलाम करने आई थी।
1: क्या अच्छा मिसरा भाई, वाह वाह वाह वाह।
0: कहा कि मिलने आई थी
1: सलाम करने आई थी,
0: सलाम करने आई थी, जो एक रात शहर में कयाम करने आई थी।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
0: कहा कि मिलने आई थी सलाम करने आई थी, जो एक रात शहर में
1: कयाम करने आई थी,
0: कयाम करने आई थी, और जो ना तमाम रह गया था बाब एक किताब का।
1: वाह।
0: जो ना तमाम रह गया था बाब एक किताब का, उसे किसी तरह भी वो तमाम करने आई थी।
1: वाह।
0: जो ना तमाम रह गया था बाब एक किताब का, उसे किसी तरह भी वो तमाम करने आई थी, और खुला के बीच राह में, खुला के बीच राह में कहीं पे रुक गए थे हम।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
0: खुला के बीच राह में कहीं पर रुक गए थे हम, उसी जगह सफर को इख्तिताम करने आई थी।
1: वाह।
0: और वो फड़फड़ा के उड़ गई मोहब्बतों की कैद से। वो फड़फड़ा के उड़ गई मोहब्बतों की कैद से, किसी नए परिंद को गुलाम करने आई थी। और खुशी तो सब समेट कर वो अपने साथ ले गई।
1: खुशी तो सब समेट कर वो अपने साथ ले गई।
0: खुशी तो सब समेट कर वो अपने साथ ले गई, बचे हुए गमों को मेरे नाम करने आई थी। खुशी तो सब समेट कर वो अपने साथ ले गई, बचे हुए गमों को मेरे नाम करने आई थी, और सलाम और कलाम से भला उसे गरज थी क्या।
1: वाह। सलाम और कलाम से भला उसे गरज,
0: सलाम और कलाम से भला उसे गरज थी क्या, उसे बहुत से काम थे वो काम करने आई थी।
1: वाह।
0: सलाम और कलाम से उसे भला गरज थी क्या,
1: वाह,
0: उसे बहुत से काम थे वो काम करने आई थी।
1: वाह वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया जनाब आलम खुर्शीद साहब। और गज़ल जो जिसमें उन्होंने ज़िक्र किया आई थी, हम लड़की समझते रहे लेकिन वो कभी ज़िंदगी थी, कभी खुशी थी, कभी तन्हाई थी। ये शायर का फ़न होता है। उससे भी किसी ने पूछा था बशीर बदर के बाद किसको देख रहे हैं आप, तो मैंने दो चार नाम लिए थे उसमें, नुमान शौक साहब का नाम भी लिया और आलम खुर्शीद साहब का जिक्र किया और भी बहुत से लोगों का। तो आइए अभी कहानी सुनी जाए, और इस कहानी का नाम है नुमान शौक। और एक जुमला कहने की और इजाज़त चाहूँगा कि नुमान शौक साहब सिर्फ शख्स नहीं बल्कि एक जज्बे का नाम है।
2: बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ दो गज़लें सुनाऊँगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। एक दूसरी गज़ल जो होगी वो सिर्फ रेडियो के 40 साल पे होगी। पहली गज़ल के कुछ अशार मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ। अर्ज़ किया है कि रौनक लाएं अपने अपने चेहरों पर।
1: वाह।
2: रौनक लाएं
1: अपने अपने,
2: अपने, चेहरों अपने चेहरों पर, रंगत जाने कब आएगी फूलों पर।
1: वाह वाह वाह।
2: रौनक लाएं अपने अपने चेहरों पर, रंगत जाने कब आएगी फूलों पर, मेरी बेशर्मी को दावत देते हो।
1: मेरी बेशर्मी को दावत देते,
2: मेरी बेशर्मी को दावत देते हो, सोच लो अपने हाथ न रखना आंखों पर।

0: वाह वाह,
1: मेरी बेशर्मी को दावत देते हो, सोच लो अपने हाथ न रखना आंखों पर, यूं तो तुम भी कल मेरे घर आए थे, यूं तो तुम भी कल मेरे घर आए थे, ओस ज्यादा देर रुकी थी पत्तों पर।
0: क्या कहने हैं,
1: यूं तो नवाजिश, यूं तो तुम भी कल मेरे घर आए थे।
0: भाई क्या कहने, किस सलीके से कहा भाई, वाह वाह वाह वाह वाह।
1: यूं तो तुम भी कल मेरे घर आए थे,
0: वाह वाह वाह,
1: ओस ज्यादा देर रुकी थी पत्तों पर,
0: वाह वाह वाह वाह।
1: मैं तेरी तस्वीर बनाता रहता हूँ, मैं तेरी तस्वीर बनाता रहता हूँ, जब तक फूल नहीं आ जाते शाखों पर। मैं तेरी तस्वीर बनाता रहता हूँ
0: भाई, क्या कहने हैं,
1: मैं तेरी तस्वीर बनाता रहता हूँ, जब तक फूल नहीं आ जाते शाखों पर। अच्छा कोई ख्वाब लगे तो बतलाना,
0: अच्छा कोई ख्वाब लगे तो बतलाना,
1: अच्छा कोई ख्वाब लगे तो बतलाना, इतने बोसे रखाया हूँ पलकों पर।
0: वाह,
1: अच्छा कोई ख्वाब लगे, अच्छा कोई ख्वाब लगे तो बतलाना, इतने बोसे रखाया हूँ पलकों पर। अच्छा कोई ख्वाब लगे तो बतलाना,
0: क्या कहने,
1: इतने बोसे रखाया हूँ पलकों पर, और मेरी कश्ती में है तेरे पाँव की रेत, मेरी कश्ती में है तेरे पाँव की रेत, मौज में उड़ती होगी पागल लहरों पर। मेरी कश्ती में है तेरे पाँव की रेत, मौज में उड़ती होगी पागल लहरों पर। और इस गजल का आखिरी शेर है कि ताजमहल पर सिर्फ मोहब्बत लिखा है।
0: अच्छा,
1: ताजमहल पर
0: सिर्फ मोहब्बत लिखा,
1: सिर्फ मोहब्बत लिखा है, नाम खुदे हैं जाने क्या क्या महलों पर।
0: भाई वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
1: ताजमहल पर नवाजिश,
0: वाह वाह वाह वाह वाह,
1: ताजमहल पर सिर्फ मोहब्बत लिखा है,
0: नाम लिखे हैं जाने क्या,
1: नाम खुदे हैं जाने क्या क्या महलों पर, रौनक लाएं अपने अपने चेहरों पर,
0: वाह वाह वाह,
1: रंगत जाने कब आएगी फूलों पर, मेरी बेशर्मी को दावत देते हो,
0: वाह
1: सोच लो अपने हाथ न रखना आंखों पर।
0: क्या कहने, क्या कहने।
1: और अब जो गजल मैं सुना रहा हूँ वो खासतौर से रेडियो के लिए है, उस रेडियो के लिए जिसमें तकरीबन 40-42 साल अलग अलग हैसियतों से मैंने दिए। है वही गहरी उदासी आपकी आवाज में, है वही गहरी उदासी आपकी आवाज में, कह के सहगल की गजल सुन ली मेरी आवाज में, है वही गहरी उदासी आपकी आवाज में, कह के सहगल की गजल सुन ली मेरी आवाज में। एक पुल पर हम मिले थे होली दिवाली के बीच,
0: एक पुल पर हम मिले थे होली
1: एक पुल पर हम मिले थे होली दिवाली के बीच, रंग था चेहरे पे उसके रोशनी आवाज में।
0: वाह,
1: एक पुल पर हम मिले थे होली दिवाली के बीच, एक पुल पर हम मिले थे होली दिवाली के बीच, रंग था चेहरे पे उसके रोशनी आवाज में। धूप और मैं दोनों में है एक आदत मुश्तरक, धूप और मैं
0: दोनों
1: में है एक आदत मुश्तरक,
0: आदत मुश्तरक,
1: धूप और मैं दोनों में है एक आदत मुश्तरक, सुबह के रागों को सुनना शबनमी आवाज में, और सुनने वाले देखने वाले सभी थे दम बखुद, सुनने वाले देखने वाले सभी थे दम बखुद, हुस्न में नशा था और जादूगरी आवाज में, सुनने वाले देखने वाले सभी थे दम बखुद, हुस्न में नशा था और जादूगरी आवाज में, और खुदकुशी का सोचकर निकले थे घर से और वो, खुदकुशी का सोचकर निकले थे घर से और वो, छेड़ता जाता था अपनी मनचली आवाज में, खुदकुशी का सोचकर निकले थे घर से और वो, छेड़ता जाता था अपनी मनचली आवाज में।
0: बहुत खूब।
1: इतनी सी पहचान लेकर
0: उम्र भर ढूंढा,
1: उम्र भर ढूंढा उसे, चंद तावीजें गले में दिलबरी आवाज में।
0: वाह,
1: इतनी सी पहचान लेकर उम्र भर ढूंढा उसे।

0: चंद तावीज़ें गले में, दिलबरी आवाज़ में, और जो है उसके साथ वो उसका नहीं बतलाऊं क्या। जो है उसके साथ वो उसका नहीं बतलाऊं क्या, सिर्फ मैं पहचानता हूं बेरुखी आवाज़ में। जो है उसके साथ वो उसका नहीं बतलाऊं क्या, सिर्फ मैं पहचानता हूं बेरुखी आवाज़ में। ये नया जंगल नई आबो हवा कोयल की कूक, ये नया जंगल नई आबो हवा कोयल की कूक, जहर की तासीर है रस घोलती आवाज में। ये नया जंगल नई आबो हवा कोयल की कूक, जहर की तासीर है रस घोलती आवाज में, और इतनी आवाजों से छलनी है समात का बदन, इतनी आवाजों से छलनी है समात का बदन, मेरी दिलचस्पी नहीं है अब किसी आवाज में।
1: वाह।
0: इतनी आवाजों से छलनी है समात का बदन, मेरी दिलचस्पी नहीं है अब किसी आवाज में, और मिल रहे हो आखिरी बार उसको अंदाजा न हो।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: मिल रहे हो आखिरी बार उसको अंदाजा न हो, हाँ छलकनी चाहिए इतनी खुशी आवाज में।
1: वाह।
0: साथ रो सकते नहीं
1: महसूस
0: ही कर लीजिए दर्द लहजे में हमारे बेबसी आवाज में। साथ रो सकते नहीं महसूस ही कर लीजिए
1: क्या कहने हैं
0: दर्द लहजे में हमारे बेबसी आवाज में। आखिरी शेर है गजल का कि शायरी है दिल की दीवारों पे सीलन का असर। शायरी है दिल की दीवारों पे सीलन का असर, लाख चाहें छुप नहीं पाती नमी आवाज में।
1: क्या कहने भाई, वाह वाह वाह वाह वाह।
2: तारीख बयान कर दी उन्होंने गजल की जबान में जनाब नौमान शौक साहब। आइए अलीगढ़ से एक ऐसे हम शायर को जहमत सुखन देते हैं, इनका ताल्लुक तो रांची झारखंड से है, वहाँ वो प्रोफेसर थे, अब शोबे उर्दू में उनका ट्रांसफर हुआ है अलीगढ़ के। इस्तकबाल कीजिए सरवर साजिद साहब का, प्रोफेसर सरवर साजिद साहब।
3: गजल का मतलब मुलाहजा करें।
2: इरशाद।
3: शौक से आप नई समत सफर में रहिए।
2: आहा, क्या बात है, क्या बात है।
3: शौक से आप
2: नई समत
3: सफर में रहिए, इल्तिजा इतनी है बस हद नजर में रहिए। शौक से आप नई समत सफर में रहिए, इल्तिजा इतनी है बस हद नजर में रहिए। शेर देखिए कि दिल में मंजिल की तमन्ना है तो आगे बढ़िए।
2: आहा, क्या अच्छा मिसरा है, वाह वाह वाह वाह।
3: दिल में मंजिल की तमन्ना है तो आगे बढ़िए
2: बढ़िए,
3: उम्र भर वरना यूं ही राह गुजर में रहिए।
2: मंजिल
3: की तमन्ना है तो आगे बढ़िए, उम्र भर वरना यूं ही राह गुजर में रहिए। शेर देखिए कि देखिए उनकी ये शोखी के कहे जाते। देखिए उनकी ये शोखी
2: के कहे जाते हैं,
3: के कहे जाते हैं हम है साहिल पे खड़े आप भंवर में। देखिए उनकी ये शोखी के कहे जाते हैं हम है साहिल पे खड़े आप भंवर में रहिए।
2: वाह।
3: शब गुजर जाएगी झूठी ही कहानी कहिए।
2: क्या बात है, क्या बात।
3: शब गुजर जाएगी झूठी ही कहानी कहिए, ऐसे चुपचाप ना उम्मीदे शहर में रहिए। ऐसे चुपचाप ना उम्मीदे
2: क्या कहने बाबा,
3: शहर में रहिए। और इश्क के दर्द की मेराज यही है साजिद।
2: इश्क के दर्द की मेराज यही है साजिद,
3: मोम का जिस्म लिए आग के घर में रहिए। मोम का जिस्म लिए आग के घर में रहिए। मोम का जिस्म लिए
2: आग
3: के घर में रहिए। शौक से आप नई समते सफर में रहिए, इल्तिजा इतनी है बस हद नजर में। दूसरी गजल का मतलब मुलाहजा करें कि बिछड़े हुओं की फिर से तमन्ना न कीजिए।
2: वाह। बिछड़े हुओं की फिर से तमन्ना न कीजिए,
3: बिछड़े हुओं की फिर से
2: तमन्ना न कीजिए,
3: बेकार है अब बैठ के रोया न कीजिए। बेकार है اب بیٹھ کے رویا. شعر دیکھیے کہ موجوں سے کیجیے جنگ تو کچھ بات بھی بنے, موجوں سے کیجیے جنگ تو کچھ بات بھی بنے, صحرا میں غرق اپنا سفینہ نہ کیجیے. موجوں سے کیجیے جنگ تو کچھ بات بھی بنے,
2: بہت خوب,
3: صحرا میں غرق اپنا سفینہ نہ کیجیے. شعر دیکھیے کہ
2: ارشاد,
3: دو چار دن کے بعد چلا جائے گا کہیں,
2: دو چار دن کے بعد چلا جائے گا کہیں,
3: دو چار دن کے بعد چلا جائے گا کہیں, ہر اجنبی پرند کو چاہا نہ کیجیے. دو چار دن کے بعد چلا جائے گا کہیں, ہر اجنبی پرند کو چاہا نہ کیجیے. منزل کی جستجو ہے تو یکسوئی چاہیے, منزل کی جستجو ہے تو یکسوئی چاہیے, ہر دو قدم پہ راستے بدلا نہ کیجیے. ہر دو قدم پہ راستے بدلا نہ کیجیے. شعر دیکھیے کہ وابستہ کتنی یادیں ہیں ماضی کی آنکھ سے,
2: وابستہ
3: کتنی یادیں ہیں ماضی کی آنکھ سے, ایک مشورہ ہے آئینہ دیکھا نہ
2: کیجیے.
3: ایک مشورہ ہے
2: آئینہ دیکھا,
3: آئینہ دیکھا.
2: بہت خوب محترم سرور ساجد صاحب, آپ کی اس شاعری کے لیے میں عرض کر دوں کہ مشاعرہ اے آئی آر ایٹ 90 یعنی 90 برس مکمل ہونے پر یہ مشاعرہ منعقد کیا گیا. بہت شکریہ.
4: سامعین, ابھی آپ آل انڈیا ریڈیو کے 90 سال مکمل ہونے کے موقع پر منعقد مشاعرہ سن رہے تھے. نظامت کر رہے تھے جناب معین شاداب. سامعین, اس مشاعرے کا بقیہ حصہ ہم 16 تاریخ یعنی ہفتے کے روز سنوائیں گے. اسی کے ساتھ اپنے دوست محمد علی کمال کو اب اجازت دیجیے. خدا حافظ.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, वक्त रात्रि के 8:30 हो चुके हैं और ये समय है कार्यक्रम फिल्म संगीत का।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत, और अभी आपने गीत सुना चांदनी चौक टू चाइना फिल्म से शंकर महादेवन और श्रेया घोषाल की आवाज़ में। इस गीत को लिखा रजत अरोरा ने और संगीत दिया शंकर एहसान लॉय ने। आप जुड़े हुए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से और कार्यक्रम है फिल्म संगीत।

जी हाँ श्रोताओं, अभी आपने गीत सुना फिल्म फिजा से सुनिधि चौहान की आवाज़ में। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से और कार्यक्रम है फिल्म संगीत का। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त रात्रि के 8:40 होने को है। फिलहाल हमें इस आखिरी गीत के साथ आपको छोड़ना होगा यहीं पर, लेकिन मिलेंगे आपसे 11:10 पर लेकर कार्यक्रम फिल्म संगीत का।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। वक्त स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की, देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किए, इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की, कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता, भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत

0: का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: श्री खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और व्यापार से कहीं आगे तक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
2: मेट्रो के लिए 60 न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
1: संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नारकोदुरु गांव में समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया। ये गांव को डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारकोदुरु एकीकृत ग्रामीण विकास मॉडल अपनाने वाला भारत का तीसरा और तेलुगु भाषी राज्यों का पहला गांव बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू

0: कश्मीर के डोडा जिले में चौथे लैवेंडर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव की थीम है लैवेंडर गोज ग्लोबल। दो दिन के इस महोत्सव में बैगनी क्रांति की उपलब्धियों और क्षेत्र में बढ़ते लैवेंडर उद्योग को प्रदर्शित किया गया है। इससे लैवेंडर की खेती और उद्यमिता की बढ़ती सफलता का पता चलता है। राज्य के किसानों और युवा उद्यमियों के लिए लैवेंडर की खेती ने आजीविका के नए अवसर सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र भोपाल में भरा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उधर आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश ने अमरावती में नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के दो दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
2: खाड़ी देशों और अमरीका के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी ड्रोन की गतिविधियों की खबरों के बाद अमरीकी सेना ने केशम द्वीप और गोरुक में ईरान के राडार और निगरानी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ये हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लगातार जारी अभियानों से ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कम हो गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। संघर्ष विराम पर बातचीत रुकी हुई है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
3: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि मादक पदार्थ मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान एक सशक्त जन आंदोलन के रूप में उभरा है। किश्तवाड़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 19 जिलों में 56 दिनों से जारी इस अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपनी आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा

निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ गया है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपुटी ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया।

0: प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी है। गोवा में भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। भारत ने छठी बार ये खिताब अपने नाम किया है। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में रोहन ताइडे ने सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। पदक तालिका में भारत शीर्ष पर बरकरार है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने 100 रन और साई सुदर्शन ने 81 रन की पारी खेली। ये टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किया। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा, दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds meeting with the Economic Advisory Council, reviews country's economic transformation and long-term development priorities. Centre introduces standard edible oil pack sizes to enhance transparency and promote uniform packaging practices. External Affairs Minister S. Jayashankar holds talks with his Nepalese counterpart Shishir Khanal in New Delhi, says India and Nepal collaborate closely to maintain security along their open border. Tensions across West Asia escalate as Iran launches ballistic missiles towards U.S. military facilities in Kuwait and Bahrain. And in hockey, Indian men's team lifts under 18 Asia Cup, beating hosts Japan in Kakamigahara. Indian women's team also clinches bronze. Prime Minister Narendra Modi chaired a meeting today with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The Economic Advisory Council is an independent body that gives advice to the Government of India, specifically to the Prime Minister on economic and related issues. Besides the EAC members, two principal secretaries to the Prime Minister, Dr. P.K. Mishra and Shaktikanta Das, also attended the meeting. The centre has introduced standard pack sizes for edible oils under the legal metrology framework, bringing greater transparency and uniformity to the marketplace. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said, under the revised rules, standard pack sizes have been prescribed for major edible oils including palm oil, palmoline, soybean oil, sunflower, mustard, groundnut, sesame and rice bran oil. The approved pack sizes are 200 grams, 500 grams, 1 to 5 kilograms, 15 kilograms and 20 kilograms. The ministry said this will also help consumers make more informed and transparent purchasing decisions. It added that the initiative will also benefit the edible oil industry by bringing greater

0: gold in this world-class yoga competition. In chess, 19-year-old Savita Srivastava has won the 2026 Women's Asian Individual Chess Championship in Ulaanbaatar, Mongolia. With this win, she also secured qualification for the 2027 FIDE Women's World Cup. In the one-off cricket test against Afghanistan, India ended day one with a score of 368 for 3 in their first innings at stumps in New Chandigarh. Centuries from KL Rahul and captain Shubman Gill put the hosts in a strong position. In tennis, 8-seeded Mira Andreeva of Russia won her maiden Grand Slam title after getting the better of Maya Szwalinska of Poland in straight sets in the women's singles final of the French Open. It was a dominant display by the 19-year-old, defeating Szwalinska 6-3, 6-3 to secure a memorable victory. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall over coastal Karnataka, Kerala and Mahe tomorrow. Heavy rainfall conditions are expected over most parts of northeast India, interior Karnataka, Goa, Tamil Nadu, Puducherry and the Andaman and Nicobar Islands for the next 2 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds meeting with Economic Advisory Council, reviews country's economic transformation and long-term development priorities. Center introduces standard edible oil pack sizes to enhance transparency and promote uniform packaging practices. External Affairs Minister S. Jaishankar holds talks with his Nepalese counterpart Shishir Karnal in New Delhi, says India and Nepal collaborate closely to maintain security along their open border. Tensions across West Asia escalate as Iran launches ballistic missiles towards U.S. military facilities in Kuwait and Bahrain. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है. खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल के साथ मीटिंग की और मुल्क के मौशी कायापलट और तवील मुद्दती तरक्याती तरजीहात का जायजा लिया. मरकज ने खुर्दनी तेल के पैकेट के मियारी साइज का सिलसिला शुरू किया है ताकि शफाफियत बढ़ाई जा सके और पैक करने के तौर तरीकों में यकसानियत को फरोग दिया जा सके. वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में नेपाल के अपने हमनसब शिशिर खनाल के साथ बातचीत की और कहा कि भारत और नेपाल अपनी खुली सरहद पर सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए करीबी इश्तराक से काम करते हैं. कुवैत और बहरीन में अमरीका के फौजी ठिकानों पर ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो गया है. और हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम ने जापान को हराकर 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का एशिया कप जीत लिया है, जबकि भारतीय खवातीन टीम ने कांसे का तमगा हासिल किया. अब खबरें तफसील से. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल के अरकान के साथ मीटिंग की सदारत की. वज़ीर-ए-आज़म और इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल ने आलमी उथल पुथल के दौर में भारत की मुआशी तरक्की को मजीद फरोग देने की खातिर मुख्तलिफ इकदामात और तजवीज़ों पर तबादला ख्याल किया. इस मीटिंग में रहन सहन में सहूलत और कारोबार करने में सहूलत को और ज्यादा बेहतर बनाने की खातिर मुख्तलिफ असलाहत पर भी गौर किया गया. अरकान ने भारत और दुनिया पर मगरबी एशिया मुहाजराई के असरात के ताल्लुक से अपनी अपनी राय का भी इजहार किया. एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज की इस मीटिंग में भारत की इक्तिसादी कायापलट और तवील मुद्दती तरक्याती तरजीहात से मुतालिक मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल किया गया. इसके अलावा मीटिंग के शुरका ने इस्लाहात के सफर में और तेजी लाने, नीज रहन सहन और कारोबार करने में सहूलत को यकीनी बनाने के बारे में भी अपने अपने नुक्ते नजर पेश किए. इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल एक आजादाना इदारा है जो इक्तिसादी और मुतालिका मामलात पर भारत सरकार खास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म को सलाह देता है. आज की मीटिंग में इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल के अरकान के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म के दो प्रिंसिपल सेक्रेटरियों डॉक्टर पी के मिश्रा और शक्तिकांत दास ने भी शिरकत की. मरकज ने वजन से मुताल्लिक कानूनी फ्रेमवर्क के तहत खुर्दनी तेल के लिए पैकेट के मयारी साइज का सिलसिला शुरू किया है, जिससे मार्केट में और ज्यादा शफाफियत और यकसानियत आ सकेगी.

0: ईरान ने आज कुवैत और बहरीन में अमरीका के फौजी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे, जिसके बाद खलीज के मुल्कों और अमरीकी फोर्सेज ने तालमेल के साथ फिजाई दिफाई कार्रवाई की। इस तरह मगरबी एशिया के खित्ते में कशीदगी फिर तेजी के साथ बढ़ गई है। अमरीका की मरकजी कमान के मुताबिक आबनाए हुरमुज के नजदीक ईरान की साहली निगरानी और रडार तनसीबात पर अमरीका के हमलों के बाद ईरान ने 7 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। इब्तदाई जायजे से यह इशारा मिलता है कि 6 मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया गया, जबकि 7वां मिसाइल अपने निशाने पर नहीं पहुंच सका। अमरीकी फौजी एहलकारों के जानी नुकसान के ताल्लुक से कोई फौरी इत्तला नहीं मिली है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: मगरबी एशिया का तनाज़ा उस वक्त एक नए खतरनाक मरहले में दाखिल हो गया जब ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी तनसीबात की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे। ताहम खलीजी और अमरीकी फजाई दिफाई निज़ाम ने बेशतर ईरानी मिसाइलों को नाकाम बना दिया, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी ड्रोन सरगर्मियों की इतलात मौसूल होने के बाद अमरीका की जानिब से आबनाए हुरमुस के करीब कैशम जजीरे और गोरख में ईरानी राडार और निगरानी के मरकज को निशाना बनाए जाने के चंद घंटे बाद ये हमले हुए। इन वाकयात ने नाजुक सिफारती कोशिशों को मुतासिर किया है और दुनिया के अहम तरीन तवानाई की गुजरगाहों में से में बहरी हिफाजत के हवाले से खदशात में इजाफा हुआ है। इस दौरान लबनान में अमरीका की हिमायत से होने वाली जंगबंदी को एक और धचका उस वक्त लगा जब इसराइली फजाई हमले में जनूबी लबनान में एक लबनानी फौजी गाड़ी को निशाना बनाया गया। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शबाना बेगम।
0: हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम ने 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का एशिया कप तीसरी बार जीत लिया है। ककामी गहारा में खेले गए फाइनल में भारत ने जापान को 1-4 गोल से शिकस्त दी। भारत की तरफ से आशीष पूर्ति ने 3 गोल किए, जबकि 1 गोल कप्तान केतन कुशवाहा ने किया। इधर भारत की खवातीन टीम ने जनूबी कोरिया को 3-0 से हराकर कांसे का तमगा जीता। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का एशिया कप जीतने पर भारतीय मर्दों की टीम को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में गैर मामूली महारत और टीम वर्क का मुजाहरा किया और इसके नतीजे में फाइनल में यादगार जीत हासिल हुई। सदर जमहूरिया, नायब सदर और वजीर आजम ने कांसे का तमगा जीतने पर 18 साल तक की उम्र की खिलाड़ियों की भारतीय खवातीन टीम को भी मुबारकबाद दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे शतरंज टाइटल जीतने पर आर प्रगनंदा को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि इस शानदार संगे मील से उनकी लगातार उम्दा कारकर्दगी की अक्कासी होती है। वजीर आजम ने उनके मुस्तकबिल के खेल मुकाबलों के तई नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। इधर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी परगनंदा को मुबारकबाद दी है। 19 साल श्वेता श्री भास्कर ने मंगोलिया के शहर उलानबातर में खवातीन की एशियाई इन्फिरादी शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। इस कामयाबी के साथ ही श्वेता ने 2027 के फिडे खवातीन वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। फुटबॉल में भारत ने खवातीन की सैफ चैंपियनशिप 2026 का टाइटल जीत लिया है। गोवा के शहर मडगांव में खेले गए फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 1-3 गोल से हरा दिया। इस तरह भारत ने छठी मर्तबा ये चैंपियनशिप जीती है। आज अहमदाबाद में आलमी योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में भारत के रोहन त्याडे ने सोने का तमगा जीता। उन्होंने लड़कों के सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल मुकाबले में यह कामयाबी हासिल की। आलमी दर्जे के इस योग मुकाबले में भारत अब तक सोने के 6 तमगों समेत मजमुई तौर पर 7 तमगे जीत चुका है। न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के खिलाफ वाहिद क्रिकेट टेस्ट के आज पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी पहली इनिंग्स में 3 विकेट पर 368 रन बना लिए थे। आज जब खेल खत्म हुआ तो कप्तान शुभमन गिल 103 रन पर और ऋषभ पंत 50 रन पर खेल रहे थे। केएल राहुल 100 रन बनाकर आउट हुए। साई सुदर्शन ने 81 रन स्कोर किए। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय मौसमियात महकमे ने कल साहली कर्नाटक, केरलम और माही में शदीद से बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। उधर शुमाल मशरकी भारत के बेशतर हिस्सों, कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों, گوا، تمل ناڈو، پدوچیری اور انڈمان نکوبار جزائر میں بھی اگلے دو دن کے دوران تیز بارش ہونے کا امکان ہے۔ موسمیات محکمہ نے کل مشرقی راجستھان اور جنوبی کرناٹک کے اندرونی علاقوں میں کہیں کہیں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہونے کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ دوسری طرف ساحلی آندھر پردیش اور اڈیشہ میں کل شدید گرمی

गर्मी के हालात रहने का इम्कान है। सिंगापुर सरकार ने सोशल मीडिया के 3 प्लेटफॉर्म्स को हुक्म दिया है कि वो उन 14 पोस्ट्स को ब्लॉक कर दें जिनके बारे में यह ख्याल है कि ये चीन से शुरू हुई हैं। इन पोस्ट में मुबैना तौर पर भारतीय बिरादरी के लोगों को निशाना बनाया गया है और कसीर सकाफती निज़ाम के सिंगापुर के मॉडल को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। पुलिस ने यूट्यूब, फेसबुक और एक्स को हिदायत जारी की है कि वो सिंगापुर के लोगों को इस तरह के मवाद तक रसाई हासिल करने से रोकने के लिए तमाम ज़रूरी इकदाम करें। यूक्रेन के बड़े पैमाने के ड्रोन हमलों में आज सुबह रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर को निशाना बनाया गया। इसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग के बाशिंदों से घरों के अंदर रहने को कहा गया। इस हमले से ये बात उजागर हुई है कि रूस के अंदरूनी इलाके तक हमला करने की यूक्रेन की सलाहियत में इजाफा हो रहा है। इस हमले से एक दिन कबल रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के अपने हम मनसब से मुलाकात की पेशकश नामंजूर कर दी थी। यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद सेंट पीटर्सबर्ग के गवर्नर ने मोबाइल इंटरनेट खदमात में मुमकिन रुकावट के सिलसिले में तंबीह भी की थी। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इकतसादी सलाहकार कौंसिल के साथ मीटिंग की और मुल्की मुआशी कायापलट और तवील मुद्दती तरक्याती तरजीहात का जायजा लिया। मरकज ने खुर्दनी तेल के पैकेट के मयारी साइज का सिलसिला शुरू किया है ताकि शफाफियत बढ़ाई जा सके और पैक करने के तौर तरीकों में यकसानियत को फरोग दिया जा सके। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में नेपाल के अपने हम मनसब शिशिर खनाल के साथ बातचीत की और कहा कि भारत और नेपाल अपनी खुली सरहद पर सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए करीबी इश्तराक से काम करते हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीका के फौजी ठिकानों पर ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो गया है। और हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम ने जापान को हराकर 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का एशिया कप जीत लिया है जबकि भारतीय खवातीन टीम ने कांसे का तमगा हासिल किया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: पूर जे बंगाला और मुल्तानो बनारस जे गुजरातो सरुंजो अस्कलारस मुअल्लिफ तारीख बंगाला महाबत जंगी शिकार राज नजर सियासत मुल्की जरूरी मैदानत ता दर जंगल हा मा बर्दुमान दूर उफ्ताद तमास पैदा गर्दत शहनरा जरूरस्त मशके शिकार की आयत पाए सैद दिलहा बकार आकाए गुलचीन मानी दर कारवान हिंद शोराए बेशुमार ला जिक्र नमूदैन की दर जमान पाशाहान सफवी बहिंद आमदैन अजुना शोराए की बंगाल रसीदन गजाली मशदी इब्राहिम फारसी अहमद इस्फहानी अशरफ खुरासानी अफसर इस्फहानी इल्हाम इमामी इस्फहानी जाफर कजवीनी हासिल मशदी हुसैनी मशदी साकित तबरीजी सत्तार तबरीजी सराजी सरमदी इस्फहानी शरीफ तालिकानी गनी फराहानी फसूनी कुम्मी कुदसी गिलानी करारी गिलानी कुदसी मशदी कलीम काशानी तालिब आमली साले तबरीजी ज़ियाई तबरीजी कैफी सब्जवारी तबी कंदू सुल्कानी अब्बासी इस्फहानी अब्दुर्रहीम फराहानी मासूम काशानी मुनीरी तालिकानी मलिकी कजवीनी मुंशी खलखाली मुनिम मतीन इस्फहानी नादिम गिलानी वाले हरवी मोहसिन शिराजी मुहक्किक शुस्तरी वफाई हरवी व दीगरान मी भाषण अलावा बन तस्कर नवीसान व हुनरमंदान व फजलाए बंगाल राम जिक्र नमूदान अब्दुल गफूर नसाख मी सरायत बातो गम हकायत हिजरन गुराह मन बामन बयान वसल रकीबन गुनाह किस्त मौलवी नसीरुद्दीन हैदर सानी दर पिशे नाम मिगुए चादरी या सोजनो फरशी जखारा दादान खाब गहिम शमियान पिश जारम दादान व नजीर मोहम्मद अब्दुल्ला शुफ्तर दर सिफत चाय मिगोयद तुफा बरगीस बरगीस तनूर चश्मे बहार साया परवरदे रयाहिंदार इन बुते चिन बाब ताब तमाम जाय दारत की चाय दारत नाम बिसियारी इस किताब है तारीखी दर जमीना बंगाल इंतशार याफ्ते हनूज बाजी अज मनाबे मुहिम अज अंजार मरदुम मख्फी मंदे अस्त ब्रिज लाल हातिफी देहलवी दर साल हजार और दो सौ चहलो हश्त हिजरी हजार हशद सी ओ दो ईस्वी सवानह नाजमीन बंग नविश्ते कि नुस्खा मुनसिब ब फर्द अन बखत मौलिफ दर मुजे मिली देहली नौ मजबूत अस्त मौलिफ दर उम्र पूंजद सालगी तहत सरपरस्ती राजा प्यारे लाल उल्फती देहलवी व पीशे मीर वजीर अली इब्रती दर्स खुंदे अस्त दरवायल दौर इंग्लिस उलमा व फजला अज गोशा व किनार हिंद व बंगाल मी रफ्तन राय साहब राम खामोश देहलवी की कारमंद इंग्लिस बूदे अज देहली ब बनारस व जुंजा ब बंगाल रफ्त अम्मा हमवारे अज वतन खुद याद मी कुनत पसमी गोयत जुदा अस्तुस दर बंगाल खामोश न दिल सूजी न गमखारी न यारश तिप गुफ्ते मौलाना मुनाजिर हसन गुलानी मर्दम बंगाल नस्बत ब आसार शेक्सपियर व मिल्टन व वर्सवर्थ कुलियात दवावीन फारसीरा ज़ियाद दूश दाश्तन वक्ती बूत के हत्ता बाजीगरान बंगाल बा दवावीन फारसी बाजी में करदन मसलन उन्हा दीवान सादीरा दर यक्की से मी गुजाश्तन मगर वक्त की बेरून आम मी आवर्दन उन दीवान हाफिज में बूत व दीवान हाफिज रा दोबारे दर हम उनको से गुजाश्ते बेरून में आवर्दन कि दीवान सलमान सायजी में बूत व दीवान सावजी रा दर किसे गुजाश्ते दीवान अनवरी रा बेरून आवर्दन दर आखिर बाजी अजबियात मुंतखब इन गुना शोरा दर इंजा नकल में शवद दानिश मशदी ताकरा सर सब्ज कुना अब्र नीसन दर बहार कतरई गर्मी तवाना शुचरा गौहर शवत साकित मशदी तू ओ जल वहा के हरगिज नरसत बयादत अजमन मनो चश्म खुन फेशानी की न करद ख्वाब बे तू वाले हरवी मजहब वाला ओ मजनू बजुज नीस के हस्त आशिकी कार अजम जलव गरी कार अरब गिरामी दाग बर दिल जगमे लाला उजारी दारम पीछे ताबस कशिश जुल्फ निगारी दारम अब्बासी इस्फहानी जुज हुक्म कत्ल उन बदखून अमी कुनद बामन सुखन बजुज खम अबरून अमी कुनद मुंतही बरखीज की साकियो शराबत आमद वंदर शब तीरा आफताबत आमद तू किर में शब अफरूज तलब मी कर दी खुर्शीद बखाने खराबत आमद
1: شنوندگان عزیز اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی

वक्त बदलता है तो माहौल भी बदलता है, पहनावे और जेवरात के डिजाइन भी बदलते हैं, गजल के सिंगार में भी तब्दीली आई। गायकी ने नया लिबास पहना, ऑर्केस्ट्रा बदला, नई साउंड्स उसके साज और अंदाज में दाखिल हुए। गजल को यह नया मिजाज देने में जगजीत सिंह की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। जगजीत सिंह ने हिंदुस्तान में वो दौर शुरू किया जहां गजल को अपनी एक्सक्लूसिव शामें मुयस्सर हुई।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शेशेर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
1: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर चर्चा की। एनसीपी प्रतिनिधिमंडल में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, दिलीप वलसे पाटिल, छगन भुजबल और पार्थ पवार शामिल थे। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद नेताओं ने भुजबल के आवास पर एक और दौर की चर्चा की। पार्टी के उम्मीदवार के संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के संबंध में सोशल मीडिया और समाचारों में चल रही खबरों का खंडन किया है। पुलिस ने एक बयान में स्पष्ट किया है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पुलिस ने नागरिकों से अफवाहों पर विश्वास न करने का आग्रह किया है। गाजा में इसराइल के हमले में दो महिलाओं सहित लगभग 7 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि काहिरा में हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू हुई। इसराइल की सेना के एक प्रवक्ता ने मीडिया को बताया कि सेना ने आतंकवादियों को निशाना बनाकर हमला किया था, लेकिन उन्होंने इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं दी। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गाजा के आधे से अधिक हिस्से पर अपना नियंत्रण बनाए रखा है। गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारतीय महिला टीम 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को वापस लेकर आई है। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और फाइनल में भी उन्होंने अपना दमखम बरकरार रखा। ब्लू टाइग्रेस ने एक यादगार जीत के साथ अपने अभियान का अंत किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर।

0: चलो चलो घंटी बज गई, चलो चलो।
1: क्यों बिल्लू, कैसे लगा?
2: बहुत अच्छा है,
1: अच्छा लगा ना?
0: चल चल जाओ जाओ जाओ।
1: अच्छा जी, ओ टायर पंचर हो गया।
2: पैसे निकाल।
1: पहले मेरे काले से हाथ हटा, नहीं तो मैं गांव वालों को बोल दूंगा कि बुतिया खेत में चुड़ैल बन के तू ही डराती। तो मैं अब जाऊं?
2: जा।
1: थैंक यू।
2: ए, उधार रख के जा तो रहा है, लेकिन अपना नाम तो बताता जा।
1: सुना नहीं बच्चे ने क्या कहा? दुश्मन चाचा। चाचा सिर्फ बच्चे का, तेरा नहीं।

0: आ गया? क्या हुआ?
1: हुआ मेरा सर। अरे ऐसे कमीनों के घर में कौन लड़की देगा? देखना साली, कमला के लिए मैं ऐसा लड़का लेके आऊंगा कि तू भी देखती रह जाएगी।
0: ए, रहा ना आखिर ड्राइवर का ड्राइवर ही। तू क्या लड़की के दिल को भी गाड़ी का पहिया समझता है? जब एक पिंचर हो गया दूसरा लगा दिया। अरे वो दोनों एक दूसरे को बचपन से प्यार करते हैं, लेकिन तू क्या समझेगा प्यार क्या होता है?

0: कचरोने तो पहले ही वो
1: रहने दो काका, रहने दो,
2: मैं बोलता हूँ। उलमती, काका ये कहना चाहते हैं कि आज तमाशा शुरू करने से पहले ही तूने खत्म कर दिया।
3: नहीं काका जी, आज का तमाशा तो अब शुरू होने वाला है।

ही पड़ा ये माना मेरी जान, मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान, मोहब्बत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों

0: मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
1: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर चर्चा की। एनसीपी प्रतिनिधिमंडल में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, दिलीप वलसे पाटिल, छगन भुजबल और पार्थ पवार शामिल थे। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद नेताओं ने भुजबल के आवास पर एक और दौर की चर्चा की। पार्टी के उम्मीदवार के संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के संबंध में सोशल मीडिया और समाचारों में चल रही खबरों का खंडन किया है। पुलिस ने एक बयान में स्पष्ट किया है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पुलिस ने नागरिकों से अफवाहों पर विश्वास न करने का आग्रह किया है। गाजा में इसराइल के हमले में 2 महिलाओं सहित लगभग 7 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि काहिरा में हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू हुई। इसराइल की सेना के एक प्रवक्ता ने मीडिया को बताया कि सेना ने आतंकवादियों को निशाना बनाकर हमला किया था, लेकिन उन्होंने इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं दी। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गाजा के आधे से अधिक हिस्से पर अपना नियंत्रण बनाए रखा है। गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारतीय महिला टीम 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को वापस लेकर आई है। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और फाइनल में भी उन्होंने अपना दमखम बरकरार रखा। ब्लू टाइग्रेस ने एक यादगार जीत के साथ अपने अभियान का अंत किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi yesterday chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The Economic Advisory Council is an independent body that gives advice to the

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार, नॉन स्टॉप फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर। रात के 3 बजने को हैं, अब समाचार होंगे। पहले हिंदी में, उसके बाद आप अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से

संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
1: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR दर्ज होने के संबंध में सोशल मीडिया और समाचारों में चल रही खबरों का खंडन किया है। पुलिस ने एक बयान में स्पष्ट किया है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। पुलिस ने नागरिकों से अफवाहों पर विश्वास न करने का आग्रह किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के वरिष्ठ नेताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर चर्चा की। NCP प्रतिनिधिमंडल में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, दिलीप वलसे पाटिल, छगन भुजबल और पार्थ पवार शामिल थे। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने भुजबल के आसपास पर एक और दौर की चर्चा की। पार्टी के उम्मीदवार के संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड छठी बार खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारतीय महिला टीम 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को वापस लेकर आई है। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और फाइनल में भी उन्होंने अपना दमखम बरकरार रखा। ब्लू टाइग्रेस ने एक यादगार जीत के साथ अपने अभियान का अंत किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Mehbash Fatima. Prime Minister Narendra Modi yesterday chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The Economic Advisory Council is an independent body that gives advice to the Government of India, specifically to the Prime Minister, on economic and related issues. Besides the EAC members, 2 principal secretaries to the Prime Minister, Dr. P.K. Mishra and Shakti Kant Das, also attended the meeting. Manipur Chief Minister Yumnam Khemchand Singh attended the inaugural ceremony of 2-day State Krishi Mela 2026 at the City Convention Centre in Imphal yesterday. Speaking on the occasion, the Chief Minister said, in line with the vision of Prime Minister Narendra Modi, greater emphasis should be placed

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात्रि के 3:10 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गजलें। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं बेगम अख्तर की आवाज़ में ये गजल, ऐ मोहब्बत।

जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल आपने सुनी, और लीजिए अब पेश है राधिका चोपड़ा की आवाज़ में ये गज़ल दर्द-ए-उल्फ़त।

ओले जेब्स ने श्री घनश्याम वैश्वानी की आवाज में गजल मोहब्बत में दिखावे।

0: इसके साथ ही आज की गजलों का ये कार्यक्रम यही होता है संपन्न। आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के ठीक 4 बजे है। लीजिए अब प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 4:20 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है कर्नाटक संगीत पर आधारित कार्यक्रम नाद ब्रह्म। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे बांसुरी वादन। कलाकार हैं जी रघुरमन। आपने प्रस्तुत किया है रागम मध्यमवती। संगीतकार हैं श्री श्यामा शास्त्री। आपके साथ मृदंगम पर संगत किया है MV चंद्रशेखर ने और वायलिन पर साथ दिया है VS आनंद ने। तो लीजिए, प्रस्तुत है जी रघुरमन का बांसुरी पर बजाया रागम मध्यमवती।

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म में अभी आप सुन रहे थे बांसुरी वादन। कलाकार थे जी रघुरमन। आपने प्रस्तुत किया राग मध्यमवती। संगीत दिया था श्री श्यामा शास्त्री ने। मृदंगम प्रसाद दिया था MV चंद्रशेखर ने और वायलिन प्रसाद दिया था VS आनंद ने।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है। आज रविवार है। शिक्षक संवत 1948 की ज्येष्ठ मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 7 जून 2026। सुबह की 4:58 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। सुबह के 5 बजने वाले हैं। लीजिए अब सुनिए समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माय भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध, जीवंत जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
2: कोलैबोरेट क्लोजली टू

0: maintain security, our long and uniquely open border.
1: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा. दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं. पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है. दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है.

बन्ना में कल श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा भी की। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के संबंध में सोशल मीडिया और समाचारों में चल रही खबरों का खंडन किया है। पुलिस ने एक बयान में स्पष्ट किया कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। पुलिस ने नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने का आग्रह किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से कल मुलाकात की और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर चर्चा की। एनसीपी प्रतिनिधिमंडल में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, दिलीप वलसे पाटिल, छगन भुजबल और पार्थ पवार शामिल थे। पार्टी के उम्मीदवार के संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके सागर जगलान और किशोर काजल धोचक ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर मंगोलिया में आयोजित उलान बतोर ओपन 2026 कुश्ती टूर्नामेंट में भारत को 6 और पदक दिलाए। 21 वर्षीय सागर जगलान ने फाइनल में तामिर एशिनिमायेव को 3-2 से हराकर पुरुषों के फ्रीस्टाइल 74 किलो वर्ग में शीर्ष स्थान हासिल किया। भारतीय पहलवान ने क्वार्टर फाइनल में अपने ही देश के जयदीप को 7-2 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की। इसके बाद सागर ने सेमीफाइनल में मंगोलिया के तोलुई मुखबंत को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर 10-0 से मात दी। मौसम विभाग ने आज केरल, कर्नाटक के तटीय इलाकों केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 5:10 में हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आओ योग करें।
1: आओ योग करें। आज हम जिस आसन को ले रहे हैं उसका नाम है गौमुख आसन। संस्कृत में गौमुख का अर्थ होता है गाय का चेहरा या गाय का मुख। इस आसन में पांव की स्थिति बहुत हद तक गौमुख की आकृति जैसी होती है, इसलिए इस आसन को गौमुख आसन कहा जाता है। यदि इसका अंग्रेजी में अनुवाद करें तो इसे काउ फेस पोज भी कहा जाता है। गौमुख आसन महिलाओं के लिए अत्यंत लाभदायक आसन है। यह गठिया, शाइटिका, अपचन, कब्ज, धातु रोग, मधुमेह, कमर में दर्द होने पर यह आसन बहुत अधिक लाभप्रद है। चलिए गौमुख आसन की विधि को जान लें और अगर हो सके तो साथ में कर भी सकते हैं। सबसे पहले अपने आसन पर दंडासन अर्थात दोनों पैरों को सामने सीधे एड़ी और पंजों को मिलाकर बैठें, यानी आसन पर आप सीधे बैठें और अपने पैरों को सीधे ले जाएं अपने सामने, एड़ी और पंजों को आपस में मिलाकर बैठें। हाथ कमर से सटे हुए और हथेलियां भूमि पर टिकी हुई, नजरें एकदम सामने। अब अपने बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को दाएं नितंब के पास रखें, दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। इस स्थिति में दोनों झंगाएं एक दूसरे के ऊपर रखी जाएंगी जो त्रिकोण आकार में नजर आएंगी।

आप समझ रहे हैं ना, सबसे पहले अपने बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को दाएं नितंब के पास रखें। अब दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। इस स्थिति में दोनों झंगाएं एक दूसरे के ऊपर रखी जाएंगी और दिखने में ये त्रिकोणाकार नजर आती हैं। फिर श्वास भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर दाहिने कंधे को ऊपर खींचते हुए हाथ को पीछे पीठ की ओर ले जाएं। इसके बाद बाएं हाथ को पेट के पास से पीठ के पीछे लेकर दाहिने हाथ के पंजे को पकड़ें, गर्दन व कमर सीधी रखें। फिर श्वास भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर दाहिने कंधे को ऊपर खींचते हुए अब एक ओर से लगभग एक मिनट तक करने के पश्चात दूसरी ओर इसी प्रकार करें, यानी वापस अपने हाथों को नीचे ले जाएं, वापस दंधासन में जाएं और अब बाएं पैर की जगह दाएं पैर को मोड़कर एड़ी को बाएं नितंब के ऊपर रखें। बाएं पैर को मोड़कर दाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। फिर श्वास भरते हुए बाएं हाथ को उठाकर बाएं कंधे को ऊपर खींचते हुए हाथ को पीछे पीठ की ओर ले जाएं। आपकी कोहनी आपके

印度的李光普电台，听众朋友们，现在我们播送一首新交歌曲。这首新交歌曲是阿努拉塔·波德瓦勒唱的，请收听。